747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 37 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्ते। लखनऊ के शानदार और खूबसूरत सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं एक नई सुबह हमारे द्वार पर दस्तक दे चुकी है। रात की खामोशी अब धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाट और जीवन की नई हलचलों में बदल रही है। हर सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और कुछ नया करने का अवसर साथ लाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम भी दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। तो अपनी सोच और जीवन को दीजिए एक नई दिशा और बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं सुबह के 6 बजने की ओर और अब समय हो चला है देश और दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डाली जाए। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हुए हैं और समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज सुनिए भेंट वार्ता, अगेती अरहर की उन्नत खेती। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह, भेंटकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: खरीफ में जहां दलहन उत्पादन की आपकी योजना है, तो अगेती अरहर की उन्नत खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां अगेती अरहर की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या कुछ संभावना है अपने प्रदेश में?
2: अपने प्रदेश में अगेती अरहर की काफ़ी संभावनाएं हैं। हमारे पास तमाम ऐसे क्षेत्र हैं प्रदेश के अंतर्गत जहां पर गेहूं जो है विलंब से भी बोया जाता है। ऐसी स्थितियों में किसान भाई अगेती अरहर की खेती बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
1: प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो कम समय में अच्छी पैदावार देंगी डॉक्टर साहब?
2: देखिए, प्रजातियां बहुत पॉपुलर प्रजाति है जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, उपास 120 के नाम से, उपास 120 के नाम से जानी जाती है। और यह प्रजात जून के प्रथम सप्ताह में बुआई के लिए बहुत अच्छी है और इस प्रजात की उपज भी लगभग 6 क्विंटल 7 क्विंटल प्रति एकड़ आती है। दूसरी प्रजाति है पारस, यह पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है और इसकी भी उपज क्षमता 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की है और 130 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद पूसा 992 जून के प्रथम सप्ताह में बोने के लिए ये भी प्रजात बहुत अच्छी है और इसकी भी उपज करीब 6 क्विंटल प्रति एकड़ आ जाती है। और इसके बाद टाइप 21 के नाम से भी एक प्रजाति है जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई है।
1: डॉक्टर साहब, अगेती अरहर की बुआई की बात चल रही है तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी महत्वपूर्ण है।
2: इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो है इसमें कृषक के पास अपना सिंचाई का साधन होना जरूरी है। उनको सबसे पहले अपना पलेवा करना चाहिए। पलेवा करने के बाद जब उसमें ओट आ जाए तो प्रथम सप्ताह तक कोशिश करके इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अगर प्रथम सप्ताह तक बुआई नहीं कर पाते हैं तो फिर उधर विलंब होने से गेहूं की बुआई में विलंब होने लगता है। अतः किसान भाइयों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध होगा कि वो जो है अभी जैसे समय चल रहा है तो तुरंत जो है पलेवा करें और फसल की बुआई जून के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें।
1: डॉक्टर साहब, खेत का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है क्योंकि जल निकास की अच्छी व्यवस्था होगी।
2: हाँ, इसके लिए जो है अच्छे जल निकास वाली जो है जमीन को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी लगेगा तो पानी लगने से अरहर की फसल जो है शुरुआत में ही गल जाती है और खराब हो जाती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने लगता है। तो किसान भाइयों को अच्छे जल निकास की दोमट भूमि अगर मिले तो सबसे बढ़िया होती है। और खास तरह से जो हमारा छारी क्षेत्र है, लौड़ी क्षेत्र है, वहां पर अरहर की फसल नहीं लेना है।
1: डॉक्टर साहब, जो भी अगेती अरहर की बुआई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो बीज की मात्रा कितनी लगेगी और बुआई के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन करना होगा?
2: जी जी, देखिए इसमें ऐसा है कि बीज की मात्रा करीब 6 किलो एकड़ लगती है। ये जो हमारा टाइप 21 है या उपास है, पारस है, पूसा 992 है, इन सब में लगभग 5 किलो से 6 किलो के बीच में किसान भाई प्रति एकड़ की दर से बीज का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बीज का प्रयोग करने के पहले बीज उपचार बड़ा आवश्यक है
1: जी।
2: बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों को 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम थिरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का मिश्रण तैयार करके और उसको ठीक से उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने का तरीका यह है कि जैसे किसान भाई अगर 5 किलो बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो करीब 10 ग्राम जो है उनका थिरम और 5 ग्राम कार्बेंडाजिम को एक साथ मिला करके और फिर उनके ऊपर छिड़क करके हल्के हाथ से उसको रगड़ दें तो ये बीज उपचार हो जाता है। या तो उसको किसी जो है बर्तन में रख करके उसको हिला लें और हिला करके अच्छी तरह से मिला लें तो ये बीज शोधन

0: का कार्य हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अगेती अरहर की उन्नत खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9415183364 94-15-18-33-64।
1: डॉक्टर प्रभाकर सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अगेती अरहर की उन्नत खेती कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अगेती अरहर की उन्नत खेती। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभाकर सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंट वार्ता। इसी के साथ अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने आज का सुविचार, आत्म परीक्षण।
3: यदि गहराई में उतरकर इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड बदल रहा है, दुनिया एक जैसी कभी नहीं रहती, समाज गतिशील है, वृक्ष वनस्पतियां भी समय के साथ साथ पनपते बढ़ते, फलते फूलते और आयु पूरी करके सूख जाते हैं। जीवधारियों की भी ऐसी ही गति है, स्वयं मनुष्य शरीर भी बदलता रहता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था और मरण, ये अवस्थाएं यहाँ भी देखी जाती हैं। एक व्यक्तित्व की मूल सत्ता ही अपरिवर्तनशील भला क्यों है? जीवन से मृत्यु तक आखिर मनुष्य का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? उसकी चिंतन शैली और क्रियाकलाप स्थिर क्यों बने रहते हैं? उसमें उदात्तता का समावेश क्यों नहीं हो पाता? प्रकृति के साथ ये विरोधाभास कैसा? आज से पूर्व कई क्रांतियां हुई, भगवान महावीर ने इसके लिए अहिंसा का दर्शन दिया, भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जैसी महाक्रांति की, पर दोनों ही क्रांतियां समाज और संसार के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकीं और साम्यक बनी रहीं। जब तक आदमी की मूल सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक बदलाव स्थायी नहीं होगा। मनुष्य के समग्र परिवर्तन के लिए मानवीय अंतराल का संपूर्ण बदलाव जरूरी है। चाहे जिस भी काल में ये पूर्ण बदलाव आए, वहां मानवीय अंतःकरण में क्रांति अवश्य घटित होगी। इससे कम में बदलाव एक खिलवाड़ बनकर रह जाएगा। अब प्रश्न ये है कि बदलाव आए कैसे? क्या ये स्वयमेव घटित होगा? कोई पराशक्ति इसे कर गुजरेगी या परमेश्वर की अनुकंपा से संपन्न हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन जहां कहीं जिस स्तर पर भी होता है, वहां उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। इसलिए जब मानवीय अंतराल के परिवर्तन की बात आती है और उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़ाने का सवाल आता है, तो यहाँ भी प्रयास और पुरुषार्थ को सदैव स्मरण रखना होगा। निजी पराक्रम के बिना ये शक्य ना हो सकेगा। जो इसके लिए प्रकृति प्रभाव पर आश्रित रहना चाहते हैं और अपने पूर्णत्व की कल्पना करते हैं, उनकी बात और है। वे कितने जन्मों में और कितने लंबे काल में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इस संबंध में सही सही कुछ भी कह पाना मुश्किल है। विवेकवान लोग इतने लंबे काल तक इंतजार नहीं कर सकते और ना ही ये खतरा मोल ले सकते हैं। तो विकल्प यही है कि हम अपने को बदलने के लिए स्वयं संघर्ष करें। आत्म परिष्कार की साधना किसी महाभारत से कम नहीं। उसमें क्षण प्रतिक्षण में मनुभूमि में आने वाली बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेना और उन्हें परास्त करना पड़ता है। इसके लिए स्वयं को एक सतर्क सैनिक की भूमिका निभानी पड़ती है और कुविचारों के दुर्भावनाओं के आते ही उन्हें धर दबोचना पड़ता है, ताकि उनकी मलिनता मानस पटल पर हावी न होने पाए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि लोटे की चमक को बनाए रखने के लिए उसे बार बार मांजना पड़ता है, इससे कम में चमक बनी नहीं रह सकती। हाँ, यदि वे सोने का हो तो बात दूसरी है। मनुष्यों के साथ विडंबना ये है कि स्वर्ण मनोभूमि वाले देव पुरुष करोड़ों में इक्के दुक्के होते हैं, शेष सभी को जागरूक रहकर अंतकरण की धुलाई सफाई करनी पड़ती है, तभी ईश्वरीय आलोक की वास्तविक झांकी व्यक्ति में प्रकट होती है। इससे पूर्व उसकी आभा कल्मशों के कारण दृश्यमान नहीं हो पाती। क्योंकि मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संस्कार उस पर छाए रहते हैं।

0: मानवीय गरिमा इस दिव्यता को धारण करने में है। मानवीय चेतना का सहज स्वभाव अपनी मूल सत्ता से एकाकार होना है, पर इसके लिए प्रबल पराक्रम करना पड़ेगा और वे सारे उपाय उपचार बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़े। आदमी के लिए असंभव कुछ भी नहीं, वे जिस भी कार्य के लिए ठान ले वहाँ सफलता अवश्यंभावी है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी आप अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए उत्कृष्टता की दिशा में एक कदम बढ़ाएं, परमात्मा हमें अनेक कदम आगे बढ़ने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित है।
1: डॉक्टर शीबा राकेश के स्वर में अभी आपने सुना आज का सुविचार आत्म परीक्षण। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज मंगलवार है, हनुमान जी का प्रिय दिन। आज बड़ा मंगल भी है, तो आप सभी को बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। संकट मोचन अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से उनका स्मरण करने पर भय, चिंता और बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित हम भी ये भक्ति भजन सुनें।

हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि वे संकट मोचन है और हम सभी के जीवन में आने वाले संकट वे दूर करें। श्रोताओं, प्रभु श्री राम का नाम इतना पावन और प्रभावशाली माना गया है कि उनके नाम के स्मरण मात्र से ही असंभव भी संभव हो जाता है। आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करता ये पावन भजन और सुबह सवेरे खो जाते हैं श्री राम जी की भक्ति में।

जब जीवन की राह कठिन लगे तब राम का नाम संबल बनकर साथ चलता है। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है, जो भक्त के मन में विश्वास और आशा का दीप जला देती है। तो आइए हम भी सुबह सवेरे सुनते हैं श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत ये पावन भजन।

जी हाँ श्रोताओं, राम जी के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं और हमारी भी उनसे यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन की नैया भी भव सागर से पार लगाए। श्रोताओं, वास्तव में भक्ति का संबंध केवल आराधना से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से भी है। भगवान और भक्त का रिश्ता इतना अनमोल होता है कि स्वयं ईश्वर भी अपने सच्चे भक्तों का मान बढ़ाते हैं। इसी भाव को सुंदरता से व्यक्त करता आइए सुने ये पावन भजन।

हृदय से बोलिए जय श्री राम। हम सब इसी मिट्टी से बने हैं और अंततः इसी में विलीन भी हो जाएंगे। आइए सुने एक ऐसा भजन जो जीवन के इसी गूढ़ सत्य को बड़े सरल और प्रभावशाली ढंग से हमें सुनाता है, बताता है, समझाता भी है।

भक्ति और श्रद्धा के इन मधुर स्वरों के साथ ही आराधना कार्यक्रम को अब यही विराम देते हैं। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। भक्तिमय इस पावन बेला में आइए नमस्ते लखनऊ के सफर में अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 197। आज का प्रसंग है भरत के प्रति निषाद राज का प्रेम और वन में रात्रि विश्राम का वर्णन।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए।

और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले, अपने कुल और धाम बताते हुए

लोगों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: ये बजकर 55 मिनट होने को है, लीजिए अब सुनिए
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मन्त्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे

0: बुनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पत्ते की जिसकी महक भर से ही दक्षिण भारत की यादें ताजा हो जाती हैं और जो साधारण दिखने के बावजूद हमारी रसोई, हमारी थाली और हमारी सेहत तीनों के लिए अनमोल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कड़ी पत्ते की, या जिसे कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर मीठी नीम भी कहा जाता है। जब किसी गर्म कढ़ी या सांभर में कड़ी पत्ता तड़कता है तो उसकी सुगंध पूरे घर को सोंधी सी खुशबू से भर देती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए भी एक तरह की प्राकृतिक औषधि है। कड़ी पत्ता हमारे देश की परंपराओं से जुड़ा है। रसोई से लेकर आयुर्वेद तक ये न केवल भोजन में स्वाद और रंगत लाता है बल्कि पाचन, बालों, आँखों और लीवर जैसे कई अंगों के लिए लाभकारी भी होता है। कड़ी पत्ता में विटामिन ए, बी, सी और ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और संतुलन प्रदान करते हैं। ये पत्तियाँ शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, यानी ये उन हानिकारक तत्वों से लड़ती हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए ये छोटी दिखने वाली पत्तियाँ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी सहायक मानी जाती हैं। पाचन संबंधी समस्याओं में कड़ी पत्ता बहुत लाभदायक होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये पत्ता अग्नि को संतुलित करता है, यानी पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। जिन लोगों को बार बार गैस, अपच या कब्ज की समस्या होती है उनके लिए कड़ी पत्ता रामबाण साबित हो सकता है। कुछ लोग तो इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लेते हैं और रोजाना एक चुटकी गर्म पानी के साथ लेते हैं। ये पेट को शांत और हल्का रखने में मदद करता है। कड़ी पत्ते का सबसे प्रसिद्ध उपयोग होता है बालों के स्वास्थ्य के लिए। पुराने समय से दादी नानी कड़ी पत्ते को तेल में गर्म करके बालों में लगाने की सलाह देती थीं। ये न केवल बालों को झड़ने से रोकता है बल्कि उन्हें घना, चमकदार और मजबूत भी बनाता है। आज भी कई आयुर्वेदिक हेयर ऑयल और शैम्पू में कड़ी पत्ते का अर्क डाला जाता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और समय से पहले सफेद होने से भी बचाते हैं। अब हम बात करेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज की। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया गया है कि कड़ी पत्ता शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार होता है और शरीर शर्करा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता है। इसलिए जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए कड़ी पत्ते का सेवन, चाहे तड़के के रूप में हो, चटनी में या फिर खाली पेट कुछ पत्तियाँ चबाकर फायदेमंद हो सकता है। कड़ी पत्ते का प्रभाव जिगर यानी लीवर पर भी सकारात्मक होता है। ये लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर माना गया है। अगर आपका भोजन अनियमित हो, अधिक तेल युक्त हो या कभी कभी वजन बढ़ने लगे तो ऐसे में कड़ी पत्ते का सेवन धीरे धीरे शरीर को फिर से संतुलन में लाने का काम करता है। इन पत्तियों की उपयोगिता केवल भोजन तक सीमित नहीं है, इसकी चाय भी बनाई जाती है। जी हाँ, कड़ी पत्ते की चाय। कुछ पत्तियाँ पानी में उबालिए, उसमें थोड़ी सी सौंठ या अदरक मिलाइए और सुबह खाली पेट पीजिए। ये शरीर की सफाई करता है, थकान को दूर करता है और मूड को भी बेहतर बनाता है। आज जब हम बाजार में महंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स और विदेशी सुपर फूड्स की तरफ भागते हैं, तब कड़ी पत्ता हमें याद दिलाता है कि सेहत का खजाना हमारे अपने आंगन में ही छिपा है। ये एक ऐसा देसी सुपर फूड है जिसे हम रोजाना के भोजन में भी आसानी से शामिल कर सकते हैं, बिना किसी खर्च के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्वाद, सेहत और परंपरा तीनों को जोड़ता है। तो श्रोताओं, क्यों ना आज से ही कड़ी पत्ते को सिर्फ एक गार्निशिंग का सामान न माने बल्कि इसे एक औषधीय पत्ते की तरह अपनाएं, इसे आजमाएं। इसकी पत्तियाँ हमें सिखाती हैं कि छोटा आकार, साधारण दिखावट और सादगी में भी कितना सामर्थ्य छिपा होता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए पौधे, मसाले या आयुर्वेदिक तत्व के साथ जो हमारी रसोई से जुड़ा हो और सेहत को गहराई से छूता हो। तब तक स्वाद के साथ सेहत को भी अपनी थाली में दे जगह और याद रखें, कड़ी पत्ता सिर्फ तड़के का हिस्सा नहीं आपकी सेहत का भी साथी है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: करी पत्ता स्वाद का साथी, सेहत का रक्षक। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 11:10 से भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे। आज का विषय होगा आर्थिक विकास। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाप्त फरमाइएगा अफसाना यतीमों का संगम। अफसाना निगार होंगे मोहम्मद यामीन बराकती। साथ ही कलाम शायर के तहत अब्दुल नईम खान से सुनिएगा उनका कलाम। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे दिन में 2:45 से। प्रातः 7:31 पर कार्यक्रम सुनिएगा आज सुबह। 7:10 पर सुनिएगा विविधा। बहनें सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी काव्य कथा गोष्ठी के अंतर्गत शालिनी राय निगम की कथा मोबाइल पाश। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता धान उत्पादन की उन्नत तकनीक। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य तंत्र। वार्ताकार होंगी पुष्पावती। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज यतेंद्र कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग। रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी की वार्ता सुनिएगा। विषय होगा राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की गाए गजलें। रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। रात्रि 10:00 आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। और रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में सोमा घोष का ख्याल गायन आप सुन सकेंगे। इसके साथ ही समय समय पर फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी श्रोता सुन पाएंगे। यह थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विविधा के आज के सफर में। मैं हूँ आज आपके साथ इस सफर में आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई युवा जिसकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष हो, इतना बड़ा जननायक कैसे बन सकता है कि उसके जाने के बाद भी पीढ़ियां उसे श्रद्धा से याद करती रहें? क्या कारण है कि जंगलों और पहाड़ों के बीच जन्मा एक साधारण युवक लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया? और आखिर क्यों उसे आज भी धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है? इन सवालों के जवाब छिपे हैं भारत के एक ऐसे वीर सपूत के जीवन में, जिसने अपने लोगों के सम्मान, अधिकार और अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आज के इस सफर में हम बात करेंगे महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा की, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और जन जागरण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। श्रोताओं, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। ये वो समय था जब आदिवासी समाज अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। बचपन से ही बिरसा प्रकृति के बहुत निकट रहे। जंगल, पहाड़, नदियां और खेत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा और यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। युवा अवस्था में ही उन्होंने समझ लिया कि समाज को केवल सहानुभूति नहीं बल्कि जागरूकता और नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया। वे आत्मसम्मान, एकता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश देते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। बिरसा मुंडा केवल संघर्ष के प्रतीक नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने, स्वच्छता अपनाने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास से होती है।

श्रोताओं, बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा योगदान था लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगाना। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसे इतिहास में उल गुलान यानी महान जन क्रांति कहा जाता है। यह आंदोलन केवल किसी शासन के विरोध का नहीं था बल्कि अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा का आंदोलन था। बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी ताकत ही यही थी कि लोग उन पर विश्वास करते थे। वे जहां भी जाते लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हो जाते। उनकी वाणी में प्रेरणा थी और उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व की शक्ति। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यदि वे संगठित रहें तो किसी भी अन्याय का सामना कर सकते हैं। आप जानते हैं, अंग्रेजी शासन उनके बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो गया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया लेकिन फिर भी उनके विचारों को रोका नहीं जा सका। उनका नाम जन जन की जुबान पर था और उनका संदेश लोगों के दिलों में बस चुका था। दुर्भाग्य से 9 जून 1900 को रांची जेल में केवल 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

इतनी कम उम्र में उनका जाना पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति था। बिरसा मुंडा इसका श्रेष्ठ उदाहरण है कि अपने जीवन, अपने महान व्यक्तित्व और जीवन काल से कहीं अधिक लंबे समय तक आप अपने विचारों के माध्यम से जीवित रहते हैं। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका संघर्ष केवल अपने समय तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने, समाज के कमजोर वर्गों का सम्मान करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोकर रखने का संदेश भी दिया। उनकी स्मृति हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें। श्रोताओं, बिरसा मुंडा का जीवन हमें ये विश्वास देता है कि एक जागरूक और साहसी व्यक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब भी हम प्रकृति के संरक्षण, सामाजिक न्याय और मानवीय सम्मान की बात करेंगे, तब भगवान बिरसा मुंडा का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। वे केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और जन सेवा की एक जीवंत प्रेरणा है। महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा को विनम्र श्रद्धांजलि और शत शत नमन। इसी के साथ आज के विविधा के सफर से मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित, कहा देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय

0: मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र,
2: गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
5: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
6: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
7: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने

0: वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 हजार तक पहुंचेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी 2 पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह। नई सुबह की सुनहरी किरणें आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी लेकर आए। चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवाओं का स्पर्श और मुस्कुराती हुई सुबह के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और आज के सौ खूबसूरत शानदार सफर में मेरे साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। कीजिए स्वीकार हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। रिंकी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है ना, तो कहते ना कि हमने ध्यान दिया ना कि सुबह के समय कितना खास होता है।
3: बहुत खास होता है और देखिए आज का तो खूबसूरत समय भी था क्योंकि जब हम लोग सुबह निकले तो आसमान बादलों से ढका हुआ था, ठंडी हवा भी चल रही थी।
2: हाँ, तेज हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था।
3: कुछ जगह तो बारिश भी हुई।
2: जी भाई, तो और भी अच्छी बात है
3: भाई, सुकून मिला। जो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी ना, तो आज सुबह का जो मौसम था उससे राहत तो हुई। और देखिए ये जो खूबसूरत सी सुबह थी इसने एक संदेश दिया, पता है क्या?
2: हाँ,
3: इसने संदेश दिया कि चाहे जितनी भी समस्या जीवन में हो, एक नई सुबह जब आती है तो वो सब कुछ बदल कर रख देती है।
2: जी हाँ, जैसे मन में नए विचार आते हैं।
3: जी हाँ,
2: और यही कारण है कि ना कई बड़े विचार अच्छे जो होते हैं ना उनकी शुरुआत सुबह ही होती है, तो क्यों ना हम भी अपने श्रोताओं को आज का सुविचार बता दें।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और देखिए आज का जो सफर है इसमें हम ढेर सारी जानकारियां अपने श्रोताओं को देंगे, गीत संगीत भी सुनाएंगे और हम दोनों ढेर सारी बातें भी करेंगे क्योंकि यही तो मौका होता है जब हम अपने श्रोताओं से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं और इसी के साथ हम दोनों भी बातें कर लेते हैं,
2: खूब सारी बातें।
3: लेकिन जैसे आपने कहा कि सुविचार के साथ शुरुआत की जाए, तो भाई ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और आपकी कोई भी बात हम कभी नहीं टालते हैं। तो चलिए अपने श्रोताओं को आज का सुविचार बता देते हैं। तो दोस्तों आज का सुविचार कहता है कि सफल वही होता है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है।
2: बिल्कुल रिंकी, बहुत ही सुंदर विचार। अक्सर हम सोचते हैं कि सही समय आएगा तब कुछ नया करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि सही समय का निर्माण हमें स्वयं करना पड़ता है।
3: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि समय तो चलता रहता है लेकिन इनको हम अपने हिसाब से, अपनी जो परिस्थितियाँ हैं, जो माहौल है, उसमें ढालते हुए अपनी तरफ इनका रुख मोड़ते हैं ताकि जो हम चाहते हैं वैसा हो सके।
2: हाँ, तो क्यों नहीं इस अवसर का स्वागत मुस्कुराकर किया जाए। अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे रोचक जानकारियों और प्रेरक विचारों के साथ। लेकिन भाई अब एक गीत भी सुना दिया जाए ना रिंकी।
3: बिल्कुल, देखे ना अभी कहा ना सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि समय को अपने हिसाब से बना लेना चाहिए। तो खूबसूरत सा मौसम था आज, खूबसूरत सी बातें भी हो गई, खूबसूरत सा नगमा भी हो जाए, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, है ना?
2: जी हाँ, और आप भी अपने चाय के कप के साथ तैयार इस गीत के लिए।

0: जी हाँ, दीवाना हुआ बादल। आज आसमान में बादलों को देखकर कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था। खूबसूरत सा नगमा भी आपने सुना, कश्मीर की कली फिल्म से इसे हमने लिया था। और इस गीत में आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
1: भाई रिंकी, गीत तो हमने सुनवा दिया अपने श्रोताओं को, मनोरंजन तो हमने कर ही दिया ना, लेकिन अब कुछ ना जानकारियां भी दे दी जाए।
0: बिल्कुल,
1: आज का दिन क्यों खास है, क्यों मनाया जाता है, आज कौन कौन से दिवस हम मनाते हैं?
0: जी बिल्कुल, और हमारे श्रोता इंतजार करते हैं कि भाई आज सुबह कार्यक्रम में हमें मनोरंजन तो मिलेगा ही, जानकारियां भी मिलेंगी। तो चलिए अब रुख करते हैं इतिहास की ओर और दिवस की ओर कि आज कौन कौन सा दिन है ना।
1: जी हाँ,

0: आज मनाया जाता है विश्व प्रत्यापन दिवस। ये दिन उत्पादों और सेवाओं में सुरक्षा और गुणवत्ता को प्रमाणित करने के महत्व पर जोर देता है।
1: जी हाँ दोस्तों, और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रत्यायन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना।
0: और आज मनाया जाता है कोरल ट्रायंगल दिवस। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से मूंगा चट्टानों के संरक्षण के लिए ये दिवस आज मनाया जाता है।
1: और श्रद्धा, अपने श्रोताओं को बता दे, आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ आम आदमी की जिंदगी में दस्तावेज यानी कि जो अभिलेख है उनका महत्व बढ़ गया। देखिए हर जगह हमारा पहचान भी कागज एक अभिलेख है वो, है ना। और हर आदमी अपने दैनिक जीवन में अभिलेखों को सहेजता और संवारता है। ये अभिलेख हमारे राशन कार्ड हो सकते हैं, बैंक पासबुक या डायरी, कुछ भी हो सकता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है।
0: भाई ये दिवस तो हमने बता दिया, और पता है आज बच्चों का भी पसंदीदा एक दिवस है। आज मनाया जाता है डोनाल्ड डक दिवस।
1: अच्छा
0: जी हाँ, डिज्नी के मशहूर कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक के जन्मदिन की याद में।
1: और मैं आपको बताऊं श्रद्धा, डोनाल्ड डक जो ये कार्टून है ना, ये मेरा भी बहुत फेवरेट है।
0: जी हाँ
1: हमेशा से रहा है। और एक और आज देखिए, बिरसा मुंडा स्मृति दिवस भी आज मनाया जाता है। भारत में महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज होती है, यानी 9 जून को मनाई जाती है और इसे बिरसा मुंडा स्मृति दिवस के नाम से जाना जाता है।
0: जी हाँ, और आज मनाया भी जाता है राष्ट्रीय फोर्क लिफ्ट सुरक्षा दिवस। हर साल इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि गोदामों, कारखानों और निर्माण स्थलों में फोर्क लिफ्ट में सुरक्षित संचालन और ऑपरेटरों की ट्रेनिंग के महत्व को बढ़ाना है।
1: जी बहुत खूब, बहुत सारी जानकारियाँ आज श्रद्धा समेट के लाई है अपने साथ, है ना।
0: जी हाँ, और रिंकी कहते हैं ना कि आज ही के दिन सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था।
1: जी हाँ, बहुत ही खास दिन है भारत के इतिहास में आज का। और 9 जून 1964 का वो दिन था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई थी।
0: जी हाँ,
1: तो ये तो थी इतिहास की बातें, है ना। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये जो जानकारियां हैं ये बहुत अच्छी भी लगी होंगी, क्योंकि हम खोज कर ढूंढ कर लाते हैं उनके लिए ऐसी जानकारियां जो
0: ज्ञान में भी वृद्धि हो। और कहते हैं ना, चलते फिरते आप जब सुनते हैं ना तो वो चीजें दिमाग में बस भी जाती हैं।
1: जी हाँ, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम हमारे जो उद्देश्य है इन्फोटेनमेंट उसको आप तक पहुंचाए, यानी कि जो मनोरंजन है उसके साथ साथ जानकारियां, इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचे। तो जानकारियां पहुंच चुकी हैं श्रद्धा।
0: जी हाँ, अब तो बस गीत की बारी है,
1: एंटरटेनमेंट का समय है। तो एक खूबसूरत सा नगमा पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए सुबह सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ और बने रहिए हमारे साथ।

0: रिंकी, इतने से प्यारे से गीत के बाद ना कितना अच्छा लग रहा है ना कि मौसम की बात भी करनी है हमें, और मौसम के ऊपर ही हमने गाना भी सुनवा दिया।
1: बिल्कुल, लेकिन अपने श्रोताओं को बता दें, खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे फिल्म अनोखी अदा से, और इस गीत में आवाज थी
0: किशोर
1: कुमार
0: कुमार की।
1: की। तो देखिए, आज जो भी गाने श्रद्धा ढूंढ के आप लाई है ना, जो सुना रही है ना, इसमें मौसम की बात बहुत शिद्दत से शामिल की गई है कि मौसम सुहाना है ना, बादल और बारिश, इन सब चीजों की लग रहा है आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि बारिश का मौसम शुरू हो
0: जी
1: जाए,
0: हाँ भाई,
1: आपकी चाय
0: गर्मी की
1: पकौड़े
0: जो
1: शुरू हो जाए।
0: तपन है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, असल में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए।
1: अभी अभी मैंने कहा था ना कि जब जीवन में कोई समस्याएं होती है तो हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए कि सुबह होगी और समय बदलेगा। तो
0: बिल्कुल
1: देखिए, इस तपन से आराम मिलेगा, लेकिन मौसम के बारे में जानकारी तो हमें अपने श्रोताओं को देनी होती है
0: जी
1: ना।
0: हाँ, क्योंकि मौसम की जानकारी के बिना दिन थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी से। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
1: मौसम कैसा रहेगा
2: जी, मौसम की बात करें तो मौसम आज साफ रहेगा, थोड़ा
1: जी?
2: तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी आने वाले अगले 3-4 दिनों के लिए,
1: जी सर,
2: 3 दिनों के लिए। उसके बाद लखनऊ में बात करें तो 12 तारीख को छींटाकशी, थोड़ा बादलों की आवाज आए के साथ थोड़ा बारिश की संभावना बनेगी, बाकी उससे पहले तक थोड़ा तापमान 1-2 डिग्री अभी यहाँ से बढ़ेगा,
1: यानी भी गर्मी और परेशान करेगी
2: थोड़ी
1: सर।
2: गर्मी और परेशान करेगी तो 3 दिन, उसके बाद थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगा, हालांकि उमस थोड़ी बढ़ गई जिससे उमस वाली गर्मी अभी
1: जी
2: लगेगी। और बात करें तो प्रदेश में तो 11 तारीख से प्रदेश में जो तराई बेल्ट है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बारिश का सिलसिला शुरू होगा,
1: जी सर,
2: और सदर्न पोर्शन है जो बुंदेलखंड रीजन है प्रयागराज डिविजन में, वहां पर कल से लू की चेतावनी है अगले 3 दिनों के लिए।
1: यानी कि श्रोताओं को गर्मी से भी बचना है और लू से भी बचना है, अभी थोड़ा इंतजार करना है कि मौसम में थोड़ी ठंडक आएगी, रुक कर।
2: जी
1: सर, सर आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर।
2: ओके, धन्यवाद।
0: तो भाई रिंकी, मौसम का हाल भी हमारे श्रोताओं को पता चल गया है ना।
1: जी, और देखिए, मौसम जो है वो पल पल बदल रहा है, भले ही अभी कुछ और इंतजार हमें करना पड़े कि बारिश आने का, लेकिन जो उसकी सुगबुगाहट है बारिश आने की वो शुरू हो चुकी है, और ऐसे में बहुत जरूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का तो ध्यान रखें ही,
0: बिल्कुल
1: नियमित जो हल्के योग है, व्यायाम है, वो भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है,
0: हाँ,
1: तो भी करते
0: कुछ
1: रहे।
0: नहीं तो हम सुबह शाम टहलने तो जरूर जा सकते हैं।
1: जी हाँ, इससे शरीर ऊर्जावान रहता है और दिन भर काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, फ्रेश फील करते हैं जिस दिन आप जल्दी उठ जाए, काम तो आपके जल्दी खत्म ही हो जाते हैं
0: जी हाँ, और खुद में भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी हाँ, लेकिन एक और चीज देखिए, कहना चाहेंगे कि मौसम चाहे जैसा हो, अगर मन सकारात्मक हो तो हर दिन सुहाना लगता है।
0: बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात की, जब मन अच्छा होता है तो दिन अपने आप अच्छा हो जाता है।
1: और ऐसे में एक और चीज आपसे कहेंगे कि अपने मन में कोई बात मत रखिए, अगर आपके मन में कोई बात है तो उससे सामने वाले को कह दीजिए, उसे बता दीजिए, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, आपका मन हल्का हो जाता है और जो सच्चाई होती है उस बात के पीछे की, वो कहीं ना कहीं

0: निकल के सामने आ जाती है ना श्रद्धा।
1: जी हाँ, और इस तरह से मेल मिलाप भी बढ़ता है, मन की बातें कह लेने से मन हल्का भी हो जाता
0: जी,
1: है।
0: तो इसलिए ये नगमा सुनिए और अगर दिल में किसी के लिए जरा भी कोई बात है तो आज उसे साझा कर लीजिए और देखिए आप अच्छा महसूस करेंगे और
1: तो
0: चीजें
1: फिर रिंकी
0: सकारात्मक हो
1: कह दूं
0: जाएंगी।
1: तुम्हें? बिल्कुल,
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं,
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है?

0: रिंकी कह देना चाहिए ना, कितना अच्छा लग रहा नहीं गाना सुनकर भी।
1: बिल्कुल, जो दिल में हो वो बात हमेशा कह देनी चाहिए। मैं तो हमेशा इसी बात का फेवर करती हूँ कि मन में कुछ ना दबा के रखे ना छुपा के रखे,
0: जी
1: सामने वाले को पता तो चले कि आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हो और वो आपको सही कर दे और रिश्ते मधुर हो जाए।
0: जी हाँ
1: जैसे कि किशोर कुमार और आशा भोसले एक दूसरे से कह रहे थे फिल्म दीवार में।
0: जी बिल्कुल। और पता है रिंकी, मौसम कैसा भी हो अच्छा हो, इस समय जो छुट्टियां चल रही है ना, तो उसमें हम सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, और बड़े लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते
1: जी,
0: हैं।
1: लगता है आपने कुछ बड़े लंबे लंबे प्लान बना लिए बाहर
0: जी
1: जाने के।
0: हाँ, लेकिन पता है क्या होता है कि बच्चे जो है ना बाहर की चीजें बहुत खाते हैं, जो उन्हें नुकसान भी कर जाती हैं। तो जब आप बच्चों को लेकर घूमने जाएं तो उनके खाने पीने का ध्यान रखें, ताकि बच्चे इंजॉय कर सकें और बीमार ना हों।
1: देखो, खाने पीने की बात की तो मैं आपको बता दूं, देखो जून चल रहा है ना,
0: जी
1: जून की
0: हाँ
1: शुरुआत से ही बाजार में आम आ चुके हैं और अब विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम भी मार्केट में आ चुका है। मुझे
0: जी
1: लगता
0: भाई,
1: है
0: पानी आ जाता है
1: वो
0: ना मुंह
1: मेरी तरह हमारे जो
0: में
1: श्रोता है उन्हें भी दशहरी आम का इंतजार रहता है।
0: बिल्कुल
1: और देखिए, खाने पीने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, है ना,
0: हाँ, और स्वस्थ
1: और
0: रहिए।
1: हाँ साफ सुथरा खाइए। तो देखिए

0: मौसम जो है दशहरी आमों का वो आ चुका है और मार्केट में खूब सारे आम है, तो बेहतर है कि आप मौसमी जो फल हैं उनका सेवन करें, उसमें आम खाएं, बच्चों को खिलाएं, बजाय इसके कि जो फास्ट फूड बच्चे
1: जी
0: खाते
1: हाँ,
0: हैं और
1: उनसे
0: उन्हें
1: दूर
0: नुकसान करता
1: रहे।
0: है, उन्हें उन तक ना पहुंचाए, है ना?
1: और पते रिंग की आम खाने से तो मुंह मीठा होता है, आम देने से भी मुंह मीठा होता है ना, और रिश्ते भी
0: अच्छा
1: हमारे मधुर होते हैं।
0: बिल्कुल, तो मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर आप मुझे एक पेटी आम
1: बिल्कुल
0: भिजवा रही
1: बिल्कुल
0: हैं, है ना,
1: बिल्कुल
0: आम
1: भिजवा
0: लेने
1: रहे
0: के
1: हैं।
0: जी। तो भाई देखिए, श्रोताओं के सामने कह रही हैं आप, तो मैं इंतजार
1: हाँ
0: करूंगी। और इसके साथ ही एक और बात अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आप अपने चेहरे पर मुस्कान जरूर बनाए रखें, क्योंकि इससे नई ऊर्जा आती है।
1: जी हाँ, और एक बात और कह रही ना कि हमें पेड़ पौधे इस मौसम जरूर लगाने हैं, ताकि जब बारिश का मौसम आए तो वो पेड़ पौधे बड़े हों, हरियाली बढ़े।
0: बिल्कुल सही, और जब आप साथ होती है ना, तो हम बस मन गुनगुनाने लगता है और खूबसूरत से नगमे अपने आप ही जबान पर आ जाते हैं, तो एक नगमा चलते चलते अपने श्रोताओं तक पहुंचा
1: जी
0: देते
1: हाँ,
0: हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म गीत का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर के स्वर में।
1: और श्रोताओं, अब इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे अनुमति ले लें आज के कार्यक्रम से, और वादा करते हैं फिर होगी किसी रोज आपसे मुलाकात।
0: तब तक के लिए दीजिए अनुमति रिंकी और श्रद्धा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब नमस्ते लखनऊ से भी अनुमति दीजिए। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।

0: ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
3: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की।

0: इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान

0: ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा, फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करे। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सौ दशमलव 4 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और इस समय है 8:15 हो चुका है स्टूडियोज की घड़ी में और आपके प्रोग्राम नमस्ते बरेली को अब करते हैं शुरू। नमस्कार बरेली, सुबह के ठीक 8:15 हो चुके हैं जैसा कि हमने बताया और आपका पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते बरेली भी शुरू हो चुका है और साथ ही मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नीतू। उम्मीद है कि आप सभी की बेहद जो सुबह है वो खूबसूरत और ताजगी भरी होने की उम्मीद जताते हैं और आज जैसा कि 9 जून है और इस आधे घंटे के सफर में हम बात करेंगे बेहद खास अंतर्राष्ट्रीय दिन की।

और साथ ही जैसा कि बेहद खास अंतर्राष्ट्रीय दिन की हम बातचीत तो करेंगे ही, जानेंगे झुमका शहर बरेली के कुछ खास खबरें और एक नजर आज के मौसम के मिजाज पर भी। लेकिन दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और सुरीली धुन के साथ।

तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आपकी जो भी ख्वाहिश है उसे पूरी करेंगे और आपके प्रोग्राम में आप भी हमारा साथ देंगे, ये भी उम्मीद हम जताते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आज बात करते हैं दुनिया भर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिन की। तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस यानी कि इंटरनेशनल आर्चिव्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभिलेखागार क्या होते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी पांडुलिपियों और ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेजों को जहां सुरक्षित रखा जाता है उन्हें आर्काइव्स या फिर अभिलेखागार कहते हैं। और इस साल के जो थीम है वो है न्याय के लिए अभिलेखागार, अधिकार, स्मृति और भविष्य। भारत में हमारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार हमारी सामूहिक यादों का रखवाला है और आज का दिन हमें याद दिलाता है कि बिना अतीत के दस्तावेजों को संभाले हम एक बेहतर भविष्य की नींव नहीं रख सकते, इसलिए अपने इतिहास का हमें सम्मान करना चाहिए। तो चलिए इसी ज्ञान भरी बात और समझ के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम और आप सभी के लिए ये गाना।

0: के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी
1: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
0: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: अरे भाई, गर्मी सिर्फ मुझे और आपको नहीं लग रही बल्कि पूरी बरेली का यही हाल है। और ऐसे में हमारी टीम निकली शहर का हाल जानने के लिए, और जब हमने बरेली के लोगों से पूछा कि इस गर्मी में उनका क्या कुछ कहना है, तो क्या कुछ कहा उन्होंने ये भी आपको सुनाते हैं। जी, आपका नाम?
3: जी, मेरा नाम रुखसार शेख है।
2: जी, आपको देख रहे हैं काफी गर्मी से पसीने से लथपथ हो चुके हैं आप। कॉलेज जाते समय क्या हाल होता है आपका?
3: बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। और
2: तो कैसे मैनेज करती है, कपड़ों में कुछ बदलाव करती है?
3: हाँ जी, कपड़े में कॉटन के पहनती हूँ। और
2: अगर पीने की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक पीती हैं आप या फिर नेचुरल?
3: नेचुरल चीजें, नेचुरल।
2: जैसे कि
3: कोकोनट और जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, और गन्ने का जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, ये ज़्यादा बेहतर रहता है गर्मियों में।
2: जी, और कॉलेज का समय भी सुबह ही रहता होगा?
3: जी, 10 बजे का रहता है।
2: और दोपहर में छुट्टी? हाँ। तो कैसे कवर करके निकलती हैं?
3: जी, अम्ब्रेला लेकर निकलती हूँ और स्कार्फ वगैरह भी। और
2: बिल्कुल मेंटेन करती हैं? जी, इस तरह से ताकि गर्मी से बचाव हो सके। तो लोगों से भी यही अपील करेंगी आप कि इसी तरह से लोग बिल्कुल लोग भी अपने को मौसम के अनुसार
3: चले।
2: जी, शुक्रिया। हैं पार्क में और जानते हैं कि बरेली वाले इस गर्मी के मौसम में कैसे अपने आप को रखते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आउटडोर यहाँ पर एक्सरसाइज मशीनें हैं। चलिए जानते हैं, इतनी गर्मी में भी आप एक्सरसाइज कर रही हैं?
4: हाँ जी, हम लोग गर्मी से बचने के लिए थोड़ा पार्क निकलते हैं, मॉर्निंग निकलते हैं लेकिन इवनिंग में भी निकलते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती है और थोड़ा बाहर का थोड़ा इन्वायरमेंट है उसको देख के हमें अच्छा फील होता
2: जी,
4: है।
2: जी, यहाँ पर काफी ठंडक।
4: हाँ जी, काफी ठंडक महसूस होती है, थोड़ा पेड़ पौधे हैं तो अच्छा भी महसूस होता है।
2: जी बिल्कुल। अगर हम बात करें दोपहर का वक्त आप घर पे गुजारती हाँ है तो इस समय बिजली चली जाती है, तो खासतौर पर लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप प्रकृति के बीच में आना पसंद करती है, हाथ का पंखा इस्तेमाल करती है?
4: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल,
2: वो बात ही अलग है।
4: बिल्कुल, पंखे की बात तो लाइट रहती है तो दिक्कत नहीं होती है, अगर लाइट चली भी जाती है लंबे टाइम के लिए तो इन्वर्टर भी आवाज दे देता है, तो उसके बाद तो पंखे का यूज होना।
2: बिल्कुल, ये बात आपने सही की, हाथों का पंखा हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इन्वर्टर की बैटरी अगर डाउन हो जाती है उसके बाद। शुक्रिया आपका। कि बरेली के लोग किस तरह से इस धूप में अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, तो चलिए जानते हैं कि वो इस समय क्या कुछ करते हैं। जी, लू का मौसम भी चल रहा है और बरेली वासियों को सेहत ठीक रखने के लिए आप क्या सलाह देंगी?
5: जी देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप बगैर काम के जी और बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम पड़े तो ही निकलना, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
2: जी,
5: और
2: पानी की बोतल
5: भी काम नहीं कर रही इस टाइम का, पानी की बोतल से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
2: जी, साथ ही साथ आपने अगर हम कहें तो पानी की बोतल
5: और फैन, हाथ का फैन वगैरह, ये सब साथ लेकर रखें।
2: जी,
5: और
2: ज्यादा से ज्यादा धूप में ना निकलें, आप ये गुजारिश कर रही है लोगों से, 12 से 4 के बाद ही निकलें।
5: हाँ जी,
2: तो अगर हम

0: करें तो घर में क्या कुछ पेय पदार्थ बना सकते हैं?
1: देखिए ठंडा ठंडी चीजें भी बना के खा सकते हैं, जैसे कि शिकंजी वगैरह होगी और जी चिया सीड्स होगी, नींबू पानी हो गया, ये सब चीजें ले सकते हैं, क्योंकि अंदर से ठंडा बॉडी रहेगी तो तभी बाहर निकलने का भी थोड़ा सही रहेगा, वरना तो बाहर निकलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है
0: जी। और साथ ही अगर हम बात करें तो ऑयली अवॉइड करना,
1: ऑयली वो भी करना चाहिए, और ऑयली तो खाने से कोई, अभी गर्मी इतनी है तो इसमें तो जरूरत ही नहीं है खाने की, हल्का ही खाना चाहिए इस टाइम में तो। हाँ जी
0: जी, शुक्रिया,
1: थैंक यू।
0: बिल्कुल, सभी ने अपने अपनी जो प्रतिक्रिया दी गर्मी के बारे में, और सूरज का जो गुस्सा है वो सचमुच उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए। खैर, आप लोग भी पानी पीते रहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, और इस तपते मौसम में चलिए थोड़ी ठंडक घोलते हैं और सुनते हैं एक ताजगी भरा ये गाना।

0: आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और कमर्शियल ब्रेक से पहले हमने सुना गाना और हम अब बात करते हैं बरेली यानी अपने नाथ नगरी के कुछ मुख्य हलचलों और बड़ी खबरों की। ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर विकास की बात करें तो बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि BDA की ओर से शहर के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली योजना के तहत नए आवंटन और विकास कार्यों में तेजी देखने को मिल रही है और सिटी को स्मार्ट और आधुनिक बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। वहीं अगर हम चोपला पुल की बड़ी अपडेट की बात करें तो अब बात उस खबर की है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 12 मई से मरम्मत यानी एक्सपेंशन जॉइंट्स ठीक करने की शुरुआत हुई और चोपला पुल जैसा कि हम जानते हैं बंद है, शहर की लाइफलाइन भी कही

0: जाती है, उसे लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने बैठक की और एनएचएआई की टीम वहां पर लगातार कार्य कर रही है। और हैप्पी न्यूज तो ये है, गुड न्यूज, कि तय समय से पहले आने वाले 17 जून 2026 से चौपुला पुल को आम जनता के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा, यानी अगले कुछ ही दिनों में आपको जाम से स्थायी तौर पर राहत मिलने वाली है।
1: शादी कर सकते हैं
2: क्वीन विक्टोरिया की।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और वही बात करें तो सैटेलाइट तिराहा से त्रिशूल एयरपोर्ट तक सड़क चौड़ीकरण के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने इसके लिए जो निविदा है वो आमंत्रित कर दी है। साथ ही 8 लेन चौड़ी सड़क और 2 सर्विस लेन निर्माण के लिए बीडी की ओर से 115 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि 1 साल के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा और रामपुर रोड, बदायूं रोड, शाहजहांपुर रोड, बीसलपुर रोड के 4 और 6 लेन में बदलने के बाद बीडीए की ओर से सैटेलाइट तिराहा से बैरियर 2 एयरपोर्ट तक सड़क चौड़ीकरण की चल रही कवायद अब जल्दी इस आकार लेगी और हम सभी के लिए एक अच्छा विकल्प भी बनेगी रास्ते के लिए। और साथ ही अगर हम दूसरी ओर बात करें बरेली की अन्य

खबरों की तो वो ये है। दरअसल ट्रेनों में यात्रियों को इमरजेंसी में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख स्टेशन्स पर इमरजेंसी मेडिकल रूम और बॉक्स लगाए जाएंगे। जो लंबी दूरी होती है ट्रेनों में भी इमरजेंसी मेडिकल बॉक्स लगने की जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के स्टेशन्स और ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया जाएगा। इज्जतनगर मंडल के 10 प्रमुख स्टेशन्स और 22 ट्रेनों में जल्द ही इमरजेंसी बॉक्स लगाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर जिले के सभी ब्लॉक में विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। जनपदीय नोडल अधिकारी का कहना है कि 2016 में इस अभियान की शुरुआत हुई तो प्रत्येक माह की 9 तारीख गर्भवती महिलाओं की सभी जांचें ब्लॉक स्तर पर शुरू हुई और इसके बाद इस असुविधा से बचने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हर माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को मनाया जाने लगा है।

तो वहीं बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि भी सामने आ रही है। रामगंगा नगर के सेक्टर 8 में साइंस पार्क और तारामंडल के निर्माण की प्रक्रिया है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और बरेली के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ही शहर में अंतरिक्ष और विज्ञान के रहस्यों को लाइव देख सकेंगे।

वहीं मौसम के तापमान की अगर हम बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर के समय गर्म हवाएं चल सकती हैं, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि घर से बाहर निकलते समय पानी की बॉटल साथ रखें, कॉटन के कपड़े पहने और अपनी सेहत का, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।

तो आज के आधे घंटे के सफर को यहीं समेटने का वक्त हो चला है। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमारे सोशल मीडिया पेज या आकाशवाणी बरेली पर आप खतों के माध्यम से हम तक जरूर बता सकते हैं। फिलहाल हम आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली। अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली, ये आकाशवाणी बरेली है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब समय है लोकगीत का, तो सुनते हैं आभा रानी वर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

इंदु शर्मा की आवाज में आपने सुना ये लोकगीत। इस समय हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बरेली केंद्र से और आप कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: तुमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं चित्रलोक विविध भारती से। एजेंट विनोद इस फिल्म से ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

फिल्म है सिम्बा, राहत फतेह अली खान, अजीज कौर की आवाजों में ये गीत। संगीत दिया तनिष्क बागची ने।

तुम्हारी सुलु इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति और साशा तिरुपति की आवाजों में जावेद अख्तर ने इसे लिखा और तनिष्क का म्यूजिक था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर यह है फिल्म का नाम। शेखर रावजानी, समीर सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाजें, विशाल शेखर का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं चित्रलोक, इस वक्त विविध भारती से। रावता फिल्म का नाम है। अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत सुनिए। प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

0: दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।
1: तो

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और इसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

और स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। और आज आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर हाजिर है आपके अपने दोस्त नीतू। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना। लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम, आप कहां से इस गाने को सुनना चाहते हैं? तो ये है हमारे श्रोता जो कि रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। साथ ही रिंगनी दिनेश करुणा वर्मा छत्तीसगढ़ से हैं, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू निशांत कौशिकी दीपाली युवान और आर के राजा, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया क्रियांश और योगेश रजत और बेबी गरिमा, शाजीनगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता, राजमाता नगर बुलढाड़ा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति आकांक्षा और आकाश, नमन ढिंगिया अपार बागपत उत्तर प्रदेश से, यहीं से संजय ढिंगिया भी हैं, मेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से हैं, अरविंद कुमार गुड़िया भाव्या निवेश और नियति रामगढ़ कैंट से, महेंद्र मोदी ठाकुर और धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल शकुन आरुषि ओशिका आदित्य और अंजलि, इश्तियाक अहमद इदरीसी इकरार अहमद इदरीसी बहेड़ी से हैं, ये हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और डब्बू बब्बू, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी मैजबी निसार नुजहत फातिमा अब्रार इस्टार अहमद इकबाल अहमद इस्लामुद्दीन और पप्पू।

भाई अंसारी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर नीति कुशल, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकिश, नेपा नगर एमपी से हैं। और दहीगांव नांदुरा से धोंडू भातुरकर, मंगला और विवेक भारती, प्रतीक्षा कोमल, समाधान, संत नगरी शेगांव से शुभम रुद्र राउत, ये हैं दीदार रेडियो श्रोता संघ बेलगाम गेट, कासगंज से एम असरम सैफी, जुबैन शाह, सद्दाम सोनी, जाहिद और आबाद खान, साथ ही राजकमल रेडियो श्रोता आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर, सैयद नुयान, सैयद निजामुद्दीन, धोते जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते, सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद अक्सा, आयशा, उमर अंसारी, समीना, गांव कड़ी, कुटाह जिला पंचकुला हरियाणा से, और सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, खुजा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इस्ताक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अश्ताफ, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा, विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव, मुस्कान, निकट बैंक सेंटर चौनेटी बरेली से, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से है पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धनधरा, घनश्याम बाबू, गोर्धन सिक्का, हसन बाबू और इनके परिवार के सभी सदस्य। साथ ही राधा नामदेव भी हैं, कस सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर भारत कश्यप, उषा, ध्यान, संजय कश्यप, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान, ग्रामर पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी, फरियाद शकील बोइन अंसारी, तस्लीम डीजे प्रधान, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेड़ा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, महिड़ी से अंजुम जहां, कलनौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक, सिंधौली मीरगंज वारसी क्लब से हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रिहान शेख, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, और गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक, वीरपुर पोस्ट बिलसड़ अलीगंज जैंटा से विपिन कुमार, सपना, रविन्द्र शाक्य, राजेश, रमेश चंद्र, राजीव, प्रदीप, रंजीत, सिद्धार्थ, सुजाता, संगमित्रा, इनके परिवार के सदस्य, प्रतिज्ञा, प्रज्ञा, और ये है तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम और कृष्णा, कस्बा मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव ओमपुरी गोस्वामी, गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, नूलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, तन्वी, मानवी, लक्ष्मोहिनी, ऋतिक और बलवीर, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुयश, आशीष, तन्मय पूर्वा और इनके परिवार के सदस्य, गांव फानासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार। और आप सुनेंगे प्रोग्राम का पहला गाना, लेकिन उससे पहले ये कमर्शियल ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे गाना जो कि है फिल्म गुमराह से, जिसमें आवाज दी है अलका याग्निक ने, लेकिन उससे पहले ये विज्ञापन।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और ये गाना फिल्म गुमराह से अलका याग्निक की आवाज में।

0: लेकिन वो काम काम वही काम जल्दी
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली 100.4 FM। प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद, और अब आपकी पसंद के गानों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। लेकिन उससे पहले आप सभी के नामों को भी शामिल करते हैं। तो ये हैं हमारे श्रोता जो कि बागपत गांव लोहडेडा जिला से हैं, जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर भुवनेश्वरी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, और सुमन अलीगंज जिला एटा यूपी से दीपक शाकिस, ज्योति और सक्षम मुरादाबाद दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून नागपुर महाराष्ट्र से, कमल स्वानी, हाजी अफजल मलिक, संदीप मक्कर रामगढ़ कैंट झारखंड से, निप्पी स्वाने जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर।

मोहम्मद अकरम अंसारी नगरिया कला बरेली से, उन्हें जिला उज्जैन एमपी से भीरूलाल वाकतरिया, भोला प्रवीण रियांश और प्रतीक, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कुमार, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द और राहुल। ये है गंगवार रेडियो सरोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार और इनके मम्मी पापा। सेक्टर 67 मोहाली से हैं टीडी मल्होत्रा, रितिक, प्रतीक, अनिल, जैवी, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, सत्यप्रकाश, प्रजापत, मुन्ने खान, सूर्या बैंकेट हॉल बरेली से हैं, ऊपरकोट चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद साईद अब्बासी, निर्घत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजवान अबान और इनके परिवार के सदस्य। एयरपोर्ट रोड वंदनानगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशारानी, संजना आराध्या, वैष्णवी कार्तिक, देविका प्रज्ञा और इनके परिवार के सदस्य। नितिन सावन, सचिन और शक्ति, जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, गाड़ीखाना चाईबासा झारखंड से, राजधानी रांची झारखंड से अरुण जायसवाल और संजू जायसवाल, श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे धांडी नादुरा महाराष्ट्र से हैं। ये हैं करुणा, मीना अश्विनी, विपुल कामरे, आरसी कामरे जवाहरनगर दुर्ग से, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश राहुल नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, प्रहलाद और राजेंद्र, गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कम्बोज, पिंकी वंश, भुवेश कुमार कम्बोज। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव और एसके पप्पी, ये हैं बुलढाणा महाराष्ट्र से, वासुदेव बोदावड़े, अनीता रमेश गोठाड़े, साथ ही भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा और ऋतु सिंह, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती जगदीश चौहरी, ये हैं कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, मनकारा मंदिर बीडीए से बेनिन सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रथम, विजय मोहबिया, कविता मोहबिया, सोनू मोनू, शिवम कॉलोनी से हैं कमला देवी मोहबिया, अन्य अन्य ईशु रामगंज खंडवा से भी हैं, और ये हैं गैबी चुराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, सदानंद कुमार गौरव इनके परिवार के सदस्य, गुजरात गांधीनगर से ज्योत्सना हर्ष और दिलीप, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रूपेश तंगई, महेश, प्रगेश और प्रतेश इनका पूरा परिवार, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यानी विश्वकर्मा, ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, अमन खोरवाल, दीपांशु, जयराम, सचिन, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, साथ ही ये हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, गांव कावेरी अव्वल से चौधरी राजवीर, आवन्या और इनके परिवार के सदस्य, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, ये हैं धामनी गवानकर, वैशाली, सुमित गवानकर, आकार हाइट्स बहुदा नागपुर से हैं, और साथ ही झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक और इनके परिवार के सदस्य, जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, रागिनी, रिया, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका, चंद्रेश, सुनील पाठक, ग्राम लोहडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, बोर खेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मुड़त, नेहा, दीपक, मयंक, चेतन और नाहटा, पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहरकर, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रधान और तुलसी मस्कीन, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ हिंदुस्तान रेडियो मित्र से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा, सोनाली, सोनम और आशीष, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी, और सुनते हैं अब आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम दर्द दम लगा के हईशा, जी हाँ ये फिल्म का नाम है कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब बारी है अगले गाने की, लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम भी तो जरूरी हैं। तो चलिए, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:21:30 हुए हैं और आप सभी के नामों को पहले शामिल करते हैं। ये है हमारे श्रोता शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, अर्षत और खुशी, साथ ही सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पुनावेल पुणे से अजय सोनवरे, करिश्मा, अविका और विशाखा, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति,

कटरा चांदखां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद किरण दृष्टि और मानवी राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुना ने अर्चना प्रणय और हीरामणि गनगोला दातरगंज से इसरत खान शायरा बेगम रहूब खान सावरीन शहबाज सैफ खान और ईशान आजम और अरहान खान ग्राम लसूडिया नरसिंहगढ़ राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी छत्तीसगढ़ पारा धमतरी से हैं रामचंद माखीजा काफिर सविता माखीजा स्वाति माखीजा महेश कुमार कुकरेजा संध्या पूजा शरद और इनका पूरा परिवार साथी और ये हैं शिव कुमार चौहान संक्रांति रुतेश राजेश्वरी उत्कर्ष बाबा कुटी रायगढ़ से अलकनाथ मंदिर के सामने से हैं बेचूलाल गंगवार गुड्डी प्रशांत ज्ञानेंद्र इला देवी बर्फा देवी सुनील संजय अग्रवाल अश्विनी विनोद दीक्षित राज महावीर कश्यप रमेश चंद रोविन भाई और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू कुलवंती देवेंद्र मिलिंद प्रणय रुद्रांश और इनके परिवार के सदस्य हैं कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर मान गुरनूर मान हरविंदर कुलविंदर और कौरमान अमरगढ़ सादुल शहर से हैं साथ ही नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाउल मोहम्मद उमर डावर राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल हीरावाली गांव फाजलका पंजाब से सुभाष गुदारा विमला इंदु पार्वती और हिमांशु गांव चादुर विश्वास जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से किशोर वानखेड़े उषा विशाल ग्राम राजौर तहसील मुताला महाराष्ट्र से राज गवई और राजवीर गवई संतोष नामदेव सार्थक समर्थ शौर्य बघेरा दुर्ग से हैं मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं खोखरा वाली श्रीगंगानगर राजस्थान से विनोद बारासा विशाल विकास रोशनी और शगुन मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा मधु सागर उमंग आकांक्षा और माही नंदकिशोर संगीता साक्षी जयश्री अंजलि बाला साहब करवा राम निवास अग्रवाल धनंजय पीबी कुलते बीड शहर महाराष्ट्र से हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरू निशा शाबिस्ता पलक लुबना और यश मंसूरी एडवोकेट वारिस अली इस्लामुन निशा शकील अहमद शहनाज खान दानिश संजनगर ऐशबाग से भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा कपिल ईशान और पूजा परिवार और अब आप सभी की पसंद का ये गाना हम सुनते हैं और फिल्म का नाम है सखियां 2.0 जिसमें आवाज़ है मनिंदर भुट्टर और जारा खान की

और बारी अगले गाने के, लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम जो कि हैं गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से, रेवण भाबिष्टे अनीता और राहुल, माराटा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी शाहनवाज नवेद रसीद सोहेल अनम और यशव, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू तानिया और मोहित, उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी बघेल भारती बघेल लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से, ये है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी गगनदीप आरजू और गुड्डू, वनिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी हिमांश के राजपूत अनिल कैलाश पप्पू भैया मदन लाल सत्यपाल भगवान दास रवि कुमार श्रीपाल मनोज कुमार और गुड़िया चंचल कुमारी हैं, बदायूं ग्राम पारवाला बित्रोई से सोपाली सिंह महिपाल शिवम लेखराज निर्मल वर्मा और रानी जीवनलाल रजक रामजी साहू निम्मी शिवम मुकेश लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं।

और ये है हमारे श्रोता जो कि हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश वसुंधरा शेट्टी जिला सांगली से। ये है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना, हरमिंदर सिंह चावला, बानी, लोकेश, पायल, वैदही, बेबी हंसिका, अंकिता, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट और ग्राम कोलासर तालुका नांदुरा महाराष्ट्र से प्रमोद बागड़े, वर्षा बागाडे, प्रतीक और संकेत। सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना, फिल्म का नाम नदिया के पार, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़।

क्या है आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। और ये बारी अगले गाने की। ये गाना आप सुनेंगे आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में, लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, रघुवीनगर नई दिल्ली से शमशाद खान, मोहम्मद नौशाद, अशोक कुमार, पप्पू मास्टर और सिकंदर खान, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम, सदाम और अदीब, उमरी नादेड़ महाराष्ट्र से बालू अप्पा खटबले और ज्योति घटबले, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अजीम अलीम, अब्दुल अदीम शेरकोट बिजनौर से है, अरार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी और गोपी वर्मा। बेड़ी एमपी से हैं हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक और प्राची तनु तरमकर। ये हैं छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजबे, राधिका अनिष्का और तन्मय, धीरज कुमार गुप्ता, देवेंद्र कुमार गुप्ता, पंकज प्रिंस, प्रशांत कार्तिक और निर्भय कस्बा उघेती बदायूं से, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान। गंज डुंडवारा से हैं विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश और युद्ध कड़वासरा, कलाना राजस्थान से हैं, प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, भगत हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, सूरजपुर छत्तीसगढ़, सारसताल सोनगरा से, नेहरू चौक पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनीता आरती प्रसाद, सोनल सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता ओम जाधव, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता, बिल्लू सिंह चिंगड़िया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र चिंडालिया, हरियाणा लोको कॉलोनी लोहारू से है, लखन बैरागी, माधो बैरागी, विदांश बैरागी, ग्राम लेकोडा, आंजना उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हनान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, अयात मोहम्मद इंतजार, गांव भोजपुर तगा चुलकाना सहारनपुर से, राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति और चुलबुल रानी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगारा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, अलमास बानो, मोइन छोटू, मोहम्मद हसनैन पवार, सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना, जामनिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, सोन वर्षा, खानपुर चुनार, मिर्जापुर यूपी से अनीश राजभर, मनीष आशीष और आकर्ष, भावना बिंदु, गोलू कुसुम्बाई, दिव्यांश, सूरज कुमार ढाक से दुर्गेश, नागपुरे राधेश्याम, नागनपुरे से हैं वन्ना भी यहीं से हैं, मुशीर अहमद कुरैशी, हसीन अहमद कुरैशी, एटा रोड गंज डुंडवारा से, प्रथम सालूजा, प्रदीप, संगीता ये हैं A5B ब्लॉक जनकपुर नई दिल्ली से, और साथ ही ये हैं हमारे श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और साथ ही हमारे ये श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर चावला, शिव कुमार, विवी बैदही, हंसिका और अंकिता, हसनान समस, इनाया शानूर, फलकनूर, ताज मोहम्मद, अबानूर भोजीपुरा, बरेली ग्राम मजुआ गंगापुर से है, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हैं, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य, लदावली मुरादाबाद से, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा तौफीक, तैमूर और कलीम, मदरसा गेट भापुरा, मुड़ियाऊ जौनपुर से इरशाद अहमद, कामरान अरमान, नवेद अजरात, रायपुर अनेई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौफिया और परवीन आफिया, बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय, अंजना, रवि गर्ग, शिल्पा और इनके परिवार के सदस्य, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज, बेगम इमरानन, नवाजिज दानिश और अमन आफरीदी, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत मनु इनके परिवार के सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जैते और मीका विरक, सालार पहलगाम कश्मीर से परजादा मिराज और इनके परिवार के सभी सदस्य। सुनते हैं आप सभी की पसंद का गाना जो कि है फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से, जिसमें आवाज है अलका याग्निक और सोनू निगम की।

जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में आपने ये गाना सुना, फिल्म का नाम नदिया के पार। और इस समय आपने

एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी पसंद में। रावर करनाल से विनोद लखनपाल, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार और रिंकी, हरजिंदर छुंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता नथाना पंजाब से, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भरत कमल साहनी, पिंकावाला चौगराया जालंधर से हैं, रघुनी वीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, जबलपुर एमपी से अशोक सिंह, सुनीता अंकिता, गुड़िया वेदा सिंह, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान, बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानुप्रकाश उत्तम नगर दिल्ली से, मुकेश मौर्य, प्रिंस रतनमाला, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश मौर्य सिकलापुर बरेली से हैं, गागा डागे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेंद्र प्रतीक्षा, स्वप्निल रक्षिता और चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद और इनके परिवार के

सभी सदस्य सोपान ताइडे, वसंत तारो, फीस्ट पीएस नरवारकर जो कि है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, वैष्णो कॉलोनी सनावत से है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, जोहानुल हौदा, ये है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर।

और बेबी वानिका भोजपुर तगा सहारनपुर से, मोहम्मद इंतजार जावेद राणा प्रधान राहत अली और वकील अहमद उमा सिंह महेश्वरी सोनू मोनू राहुल रश्मि प्रियंका सृष्टि आरुष शौर्य दिनेश उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं। गांव चारभाटा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मिश्रा मधु सत्यार तौरीवी उदयपुर राजस्थान से बाबूबाई भारती विनय मोहन खारवन मीनाक्षी प्लोमा ईशानी सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से हैं। कैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष मल्होत्रा कोयल नानकचंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल डुगू भाविक सिक्का दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा और ये हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता निखिल और तनवी मोहम्मद मुजानिन अंसारी अबरार अल्ताफ आशिक हुसैन मुन्ना अंसारी मोहम्मद मुनाजिर लालू मिस्त्री अंसारी लाल मोहम्मद अंसारी करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं और ये है नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई हिब्जा नूरी और नत्तू चाचा अख्तर अंसारी नन्हे शाकिर करगैना जाहिर अंसारी इनके परिवार के सदस्य टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा गुजरात पाटन से धीरज वी बराबरी अनारकली बाजार जगराऊ पंजाब से सुनील पाठक कमल दीपिका गाव्या सुच्चा सिंह विनोदपुरी जयपाल और ये है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है फिल्म का नाम जवानी तो इश्क होना है सितारा कृष्ण कुमार की आवाज में।

राम, अंकुश, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल, संजीव गंगवार, कस्बा क्लूलड़िया, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। ये हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशुचुक, अश्विनी, गोविंद, टोनी दीवान, लव, राधे, भाविक ढिंगरा। 14 बार नवापारा अभ्यारण्य, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से नंद कुमार, प्रमिला और ज्योति। कवर कॉलोनी बड़वास, खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना। विजय सुरलकर, रतन गार्लैंड सुरलकर, मुताला महाराष्ट्र से। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य और मेघा। प्रदीप, साथी प्रदीप हैं हमारे सलूजा भी, और महाराज कीर्तनपुरी, गोस्वामी लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबिता, सत्यम और सुंदरम। आसिफ चौधरी, अराफत चौधरी, अदीप चौधरी, कादर चौधरी, शाही मार्केट सुहारा, जिला बिजनौर से हैं। पटियाली रोड, गंज, डुंडवारा, उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, अरिबा और हबीबा, प्रकाश बी और जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकिस्टो, रोजी पर्ल डिकिस्टो और विलिस डिकिस्टो। हैत कॉलोनी अरेरिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद असमल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से हैं पूजा रघुवंशी, रेखा, शोभा, नंदिनी, बबिता, वंदना और इनके परिवार के सदस्य। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं। भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, फाजिलका पंजाब खेड़ा से हैं। और अब आप सभी की पसंद का गाना, फिल्म का नाम है एनिमल, जिसमें आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। और अब आप सुनेंगे एनिमल फिल्म का गाना जिसमें आवाज है अरिजीत सिंह की। लेकिन उससे पहले आप सभी के नाम, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषामित और हैप्पी, दुबिया, नेवादा, जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, प्रेमपाल गंगवार, राजेंद्र, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश,

0: Chikilia, don't take her.
1: Yes, uncle.
0: Ah, of course everything's okay, Papa. Husband, wife, stupid friends.
2: और इसी के साथ आप सभी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, ये है हमारे श्रोता जावेद इनायत और यूसुफ इनायत इंग्लैंड से हैं, और साथ ही जैन मंदिर गांव कुरावली से राशिद हुसैन, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, वंदेवी आकाश महेश्वरी, विनायक, विक्रम मालवी, रचना कमलाबाई, आलोट जिला रतलाम एमपी से, मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खाली और अली रहमान, मोहम्मद रफ़ी जो कि हैं बकार पंजाब से, मोहम्मद हफाजुर रहमान, रिहाना खान बकार पंजाब से ही हैं, विजय सुरलकर, रतन गार्लैंड सुरलकर, मुताला महाराष्ट्र से, गनगुला दातागन से, इशरत खान, श्यामा रहूब खान, सावरीन शहनबाज, सैफ ईशान आजम और अरहान, हिंदराज रेडियो श्रोता संघ निवासक खुपटी महाराष्ट्र से, बंडू लोहार पीपलगढ़, माया शिवांश चंद्रकला, देवी दास, हरिभाऊ अनंत, ये हैं आशा रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत सरिता, प्रणीता सिद्धार्थ, अर्जुन अकार हाइट्स बुल्दारा नागपुर से, वैशाली सुमित गवानकर ध्वानी और परी प्रिंस एकांश गवानकर, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी सरिता और साहिल अकान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से। और आप इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद, और जो गाना आप सुन रहे थे वो फिल्म एनिमल से अरिजीत सिंह की आवाज, और अब एक बार फिर से वो गाना।
0: अब सो जाओ। गुड नाइट। मामा। चलो जल्दी।

0: और इसी के साथ आपकी पसंद यही था।
1: मन मातम और जिंदा है ये इश्क।
0: अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद आकाशवाणी बरेली से, और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम सबरंग का, तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: और सबसे पहले ये भजन सुनिए स्वाति मिश्रा की आवाज में।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डायलिसिस के बारे में भ्रांतियां और वास्तविकता। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 9 जून 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन ले। विषय है डायलिसिस के बारे में भ्रांतियां और वास्तविकता। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार 9 जून 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर 2517200। सूचना समाप्त हुई। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और प्रोग्राम का नाम है सबरंग। और चलिए अब सुनते हैं हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में ये गाना।
1: ब्याह कर ले, जिंदगी भर लड़ेंगे।
2: ब्याह

अभी आप सुन रहे थे सबरंग आकाशवाणी बरेली से, और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम झुमका गिरारे का। आप तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम झुमका गिरारे। नमस्कार बरेली, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम झुमका गिरारे में। दोस्तों आज है 9 जून और खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जब भी हमारे शहर बरेली का नाम आता है तो जहन में एक ही बात गूंजती है, झुमका गिरारे बरेली के बाजार में। लेकिन आज आपके दोस्त बाजार के शोर शराबे में नहीं, बल्कि बरेली के सबसे शांत, सबसे साफ और बेहद खूबसूरत इलाके यानी कैंट की ठंडी वादियों से सीधे आपको मुखातिब कराने के लिए लेकर आई है। अभी कुछ दिन पहले 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इसी पावन मौके पर पूरे देश में एक बेहद भावुक और अनूठा आंदोलन चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम।

कैंटकेन चौड़ी सड़कों पर चलते हुए सदियों पुराने इन विशाल बरगद और पीपल के पेड़ों को देखना मन को एक अजीब सा सुकून देता है। आज जब भी हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो मुझे प्रधानमंत्री जी का आह्वान याद आता है। उन्होंने ठीक ही तो कहा, एक पेड़ माँ के नाम, माँ जिसने हमें इस दुनिया में लेकर आई, निस्वार्थ भाव से अपनी ममता की छांव में पाला। और ये पेड़ भी तो बिल्कुल हमारी माँ जैसे ही है ना, जो खुद जेठ की तपती धूप सहते हैं लेकिन हमें ठंडी हवा, फल और जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। जब हम अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाते हैं तो हम केवल

0: धरती को हरा भरा ही नहीं रख रहे होते बल्कि अपनी माँ की ममता को इस माटी में हमेशा के लिए अमर भी कर रहे होते हैं। भारत में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह एक पेड़ माँ के नाम के बारे में बताया और ये पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया गया। जानते हैं कि यहाँ पर पार्क में किस तरह से पेड़ पौधों की रखवाली, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जो दायित्व होता है किसके कंधों पर है। जी आपका नाम?
1: मेरा सुनील मित्रा है।
0: जी आप प्रकृति के बीच में हैं और इतनी हरियाली है, किस तरह से आप मेंटेन रखते हैं इसको?
1: बहुत बढ़िया देखभाल करते हैं, पानी वगैरह सब कुछ मिलता है इनको
0: जी,
1: और देखभाल करना पड़ती है
0: जी। काफी लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं,
1: लोग आते हैं, बहुत शांति और सुकून की जगह है जी, और हरा भरा रहता है काफी बढ़िया
0: जी। लोगों को कितना सहयोग मिलता है साफ सफाई को लेकर?
1: साफ सफाई को देखना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कोई
0: लोगों को भी
1: जो हाँ लोग जाना पड़ता है, लोग फेंके ना कूड़ेदान में डालिए, आप डस्टबिन में डालिएगा भाई, यही सब कुछ समझाना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है।
0: काफी पेड़ भी पुराने हैं लंबे समय से,
1: काफी
0: ये हमारी जो एक तरीके से संपदा है प्रकृति, उसको बचाने के लिए क्या कहेंगे लोगों से?
1: लोगों से सबसे यही है प्रार्थना है कि आप लोग देखभाल करिएगा, पेड़ लगाइएगा और अच्छे से, हाँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइएगा, देख और काटे नहीं उसके देखभाल करिएगा,
0: बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोपे।
1: हाँ हाँ बच्चों की तरह है, बच्चे से आप उसको पालन करेंगे तो ये बड़ा होगा कभी।
0: शुक्रिया।

0: में उन्हें कैसा महसूस होता है? जी आपका नाम?
1: फिजा।
0: फिजा, आपका नाम ही अलग है फिजा, और इस माहौल में आपका नाम एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो क्या कुछ कहेंगी यहाँ की कैंट की इस हरियाली को लेकर?
1: यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की ग्रीनरी एंड यहाँ के पेड़।

0: पौधे भी बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा लगता है यहाँ घूमने के लिए।
1: जी, काफी हरियाली है और जो बरेली के दूसरे जो इलाके हैं उससे काफी ठंडा भी है यहाँ पर।
0: जी, यहाँ पर ठंडक है। जी, सब कुछ अच्छा है यहाँ का।
1: कुल मिलाकर कहे तो फिजा ही अलग है यहाँ की।
0: जी, यहाँ की फिजा ही अलग है।
1: जी, शुक्रिया। मौजूद है कैंट के इस खूबसूरत पार्क में, प्रकृति की गोद में, और यहाँ पर जो लोगों को सुकून इस हरी हरी घास में बैठकर मिल रहा है वो अपने कमरे के ड्राइंग रूम में मिलना तो मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर लोगों से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं प्रकृति की इस गोद में बैठकर। जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम नीरज है।
1: जी, अभी हमने पर्यावरण दिवस मनाया और एक पेड़ माँ के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की, तो आपका क्या कुछ कहना है इस विषय पर?
2: वाकई माँ की ममता और इन पौधों की हरियाली का रिश्ता सीधे हमारे दिल से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के इस मुहिम के तहत करोड़ों पौधे लगाए गए, नया रिकॉर्ड बनाया इस, और हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से भी, साथियों से भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने चाहिए।
1: जी, ये सब अपील भी की गई सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से। तो आप बरेली की जनता से क्या गुजारिश करेंगे पेड़ पौधों को लगाने के संबंध में?
2: बरेली की जनता से यही गुजारिश करेंगे कि वो कम से कम साल में एक या उससे अधिक पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि ये पौधे हमारे वातावरण के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और जिससे ये बहुत ज़्यादा बारिश में भी हेल्प करते हैं, जिससे पेड़ पौधों को और क्लाइमेट को कूल रखने में भी हेल्प करते हैं।
1: बिल्कुल, आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता बढ़ रही है, इस ऐसे में ये पेड़ पौधे ही हमें सुरक्षा दिला सकते हैं।
2: हाँ, ये वाकई आपने सही कहा, ये ग्लोबल वार्मिंग जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन इसका मेन कारण है। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं।
1: बिल्कुल जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम नीरज।
1: जी नीरज, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके विचारों को सुनकर। मुझे उम्मीद है कि जो भी श्रोता सुन रहे होंगे उन्हें अच्छा लगेगा और अपनी ज़िंदगी में भी उसे शामिल करेंगे। शुक्रिया।
2: शुक्रिया, थैंक यू।
1: वाकई माँ की ममता और इन पेड़ों की हरियाली का रिश्ता सीधा हमारे दिल से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश ने इस मुहिम के तहत करोड़ों पौधे लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सभी साथियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तभी तो कैंट के पुराने पेड़ों की छाव में लोग आते हैं, सुनते हैं प्रकृति और माँ के इस पावन रिश्तों को समर्पित ये बेहद खूबसूरत और सुरीला गाना।

0: समय हम मौजूद हैं कैंट के इस खूबसूरत से पार्क में, जहां हम देख सकते हैं कि यहां पर बड़े बड़े पेड़ जो कि आसमान को छूते नजर आ रहे हैं। चारों ओर फैली हरियाली हमें बताती है कि प्रकृति का संगत हम सबके जिंदगी के लिए कितना जरूरी है और सभी यहां पर आकर सुकून के पल बिताना पसंद करते हैं। इन हरी हरी घासों पर जब लोग नंगे पैर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो कुदरत के साथ साथ चल रहे हों। और चलिए यहाँ पर लोगों से भी जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर टाइम बिताना कैसा लगता है। जी, आपका नाम?
1: शायरा।
0: जी, यहाँ पर आप हमेशा आते हैं?
1: जी।
0: कैसा लगता है आप?
1: बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है।
0: जी, काफी टाइम स्पेंड करती हैं?
1: अच्छा भी लगता है, घर के

0: जो टेंशन होती है वो भी सारी यहाँ पर आके सही हो जाती है।
1: बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कहा, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान, हंसी भरा माहौल भी बन जाता है। जी शुक्रिया। तो कैंट के सुंदर पार्क में हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग, युवा और कुछ परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं बरेली की जनता से और जानते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है। जी आपका नाम?
2: हाँ जी, मेरा नाम सच्चिदानंद यादव है।
1: जी आप इस पार्क में हमेशा आते हैं?
2: कभी कभी आता रहता हूँ।
1: जी कैसा लगता है इस कैंट के हरियाली भरे माहौल में?
2: हरियाली अगर चारों तरफ देखने में तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि जो ये हरियाली है ये हमारे जीवन में रंग लाती हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे, ये हमारे ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत हैं जो हमें जीवन प्रदान करते हैं अच्छे जीवन जीने के लिए।
1: जी अगर हम बरेली के दूसरे इलाकों की बात करें, कैंट की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा भी है, तो
2: ठंडी हवाएं हैं, जो यहाँ का मौसम है थोड़ा ठंडा है और जगह की तुलना में।
1: जी
2: तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास हरियाली रखें और पेड़ पौधों को लगाते रहें।
1: तो आपने सुना ये बेहद ही सुरीला गाना। तो मेरे प्यारे बरेली वालों, आकाशवाणी बरेली के इस खास पेशकश से चलते चलते बस यही संदेश देना चाहूंगी कि दूसरों की नकारात्मकता और बाहरी दुनिया के उलझनों से दूर प्रकृति और माँ का प्यार ही सबसे सच्चा साथी है। इस बार जब भी आप गुनगुनाएं झुमका गिरा रे, तो अपने हाथों में एक नन्हा पौधा जरूर थामे और इसे अपने घर या फिर आंगन की छत पर सजाए। सुनते रहिए 100.4 FM पर, सुरक्षित रहिए, आप भरा रखिए। अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे, और अब आकाशवाणी लखनऊ से सुनिए FM रेनबो।

0: चुके हैं, देखते हैं वो कौन है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैम। बहुत अच्छा, अपना बताइए, आप कैसी हैं?
0: एकदम बढ़िया। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो नाम बताइए।
1: साहिबा अंसारी बोल रहे हैं, महवागंज है लखीमपुर खीरी से। इस वक्त हम बोल रहे हैं बड़ा गांव बढ़ेरा से, लखीमपुर खीरी से।
0: क्या बात है साहिबा, क्या आप मैसेज देना चाहती हैं लोगों को?
1: मैम संदेश ये देना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान भाई खेत में काम करते हैं तो हम सुबह के टाइम जल्दी काम किया करें, हम 11 बजे के बाद हम काम ना करके, क्योंकि बहुत तेज धूप हो जाती है, शाम को फिर काम कर लिया करें।
0: बिल्कुल भाई, जितने भी किसान भाई हैं उनको
1: जी
0: खासकर धूप में खड़े होके काम करना पड़ता है, बहुत
1: जी
0: सी चीज़।
1: मैम, आज मैं गांव आए हुए हैं, यहाँ ददिहाल में आए हुए हैं, यहाँ से खूब दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं, सभी भाई काम कर रहे हैं सर।
0: अरे हाँ, तो वही देखकर आपको रियलाइज़ हुआ कि ये बात कहनी चाहिए लोगों से।
1: जी
0: बिल्कुल, और अगर आसपास पेड़ की छांव होती है तो वहाँ पे बैठ के भी आराम से रह सकते हैं।
1: यहाँ पेड़ और बहुत लगे हैं, हम गांव में आए हैं तो गांव पेड़ में बहुत लगे हुए हैं।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहिबा, इतना प्यारा मैसेज देने के
1: जी
0: लिए।
1: हम कुछ नाम भी लेना चाहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सबसे पहले मैम आप, मोहम्मद आसिफ भाई, मोहम्मद फैज भाई, वकील अहमद भाई हैं,
0: जी
1: बाबू अंसारी भाई हैं, सत्यम कुमार भाई हैं, गुलफ से देखिए अप्पी हैं, समा अप्पी हैं, साजी अंसारी है, महक अंसारी है, महक अंसारी है, और उन जितने दोस्त हैं सभी लोगों को बस यही संदेश है कि धूप में काम ना करें।
0: कोई छूटा तो नहीं?
1: नहीं छूट गया, पता नहीं छूट गया तो इसके लिए सॉरी।
0: चलिए, सबके नाम आपने ले
1: गुड
0: लिए और सभी को गुड मॉर्निंग। और भाई साहिबा का कहना है
1: मॉर्निंग।
0: कि कोई धूप में काम ना करे।
1: जी मैम बिल्कुल, थैंक यू मैम फोन उठाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: भाई काला चश्मा याद आ जाता है क्योंकि धूप बहुत तेज है और काला चश्मा लेकर निकला करिए, गमछा वमछा लेकर निकला करिए, कुछ ऐसे ही मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: मैम मैं आकांक्षा देवी सोची से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, आज आकांक्षा आकांक्षा से बात करेगी।
1: यस मैम।
0: तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आकांक्षा?
1: मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतने समय गर्मी ज्यादा हो रही है, तो मतलब लोग कहीं ज्यादा धूप में निकले ना, और जो लोग जाते हैं भंडारा वगैरह इतने समय हो रहा है, तो उनको जितना खाना हो उतना ही प्रसाद वगैरह लें, ज्यादा ना लें, मतलब वेस्ट करके फेंकते हैं।
0: बिल्कुल, भंडारे का टाइम है और बहुत ज्यादा खाना लेते भी हैं और उसके बाद वेस्ट करते हैं, वेस्ट करने के बाद ऐसे वैसे कहीं भी फेंक देते हैं।
1: यस मैम।
0: बिल्कुल, आप डस्टबिन का यूज करिए, क्योंकि जिस तरह से आप अपने घर को साफ रखते हैं उस तरह से अपने शहर को भी, अपने देश को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू सो
1: धन्यवाद,
0: मच।
1: पहली बार कॉल लगा है।
0: हाँ हाँ और कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: मैम और कुछ नहीं, बस
0: बस ओके, थैंक यू सो मच आकांक्षा कॉल करने के लिए। तो भाई देखिए, भंडारे में लोग इतने लोग जाते हैं और खाना लेते हैं, वेस्ट करते हैं, वेस्ट करने के बाद उसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो ऐसा मत करिए, प्रसाद है, प्रसाद को उतना ही लीजिए जितना आपकी जरूरत है, और खाने के बाद जो दोने हैं, पत्तल हैं, जो भी आप यूज करते हैं, उनको यथास्थान, या कि डस्टबिन है, अगर आपको डस्टबिन नहीं दिखता तो आप कोई कैरी बैग है उसमें कैरी कर लीजिए, जहां पे आपको डस्टबिन दिखे वहां पर फेंक दीजिए। एक और हमारे साथ दोस्त जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
2: हेलो,
0: जी, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग मैडम जी।
0: सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: मैडम जी मैं सुखदेव कुमार प्रजापति, अबोर, जिला फाजिलका, पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
0: क्या बात है सुखदेव जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे लिसनर्स को?
2: मैसेज ये जी मैडम जी, जो पंछी है उनको पानी, ठंडा पानी डाल के रखना चाहिए जी, और दाना दूना रखो जी उनके लिए, और घर से बाहर निकलो तो सिर पे कपड़ा या चश्मा चश्मा लगा के निकलना चाहिए जी।
0: हाँ चश्मा, बिल्कुल चश्मा वगैरह लगा के और सर पे कपड़ा रख के निकलना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं वैसे पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए।
2: पक्षियों का भी ख्याल रखना चाहिए जी।
0: अच्छा आप रखते हैं दाना पानी?
2: हाँ जी, मेरे घर फालसे का पौधा लगा हो जी, बहुत बढ़िया
0: जी।
2: उसके फालसे लगे जी, चिड़िया ले लेके जा रही है, पानी रख रखा जी, पानी पी रही है और चिड़िया ले लेके जा रही है जी, और फालसा खाती है जी।
0: अच्छा फालसा, क्या बात है, बड़ी अच्छी याद दिलाई आपने, और आपने इंतजाम किए हैं, इस बात से और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी
2: जी। मैडम जी
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: जी मैडम जी।
0: तो भाई देखिए, कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस लेके लोग आते हैं और हमें उम्मीद होती है कि कुछ वैसा ही वो भी बर्ताव करते हैं, क्योंकि अगर आपके, कहते हैं ना, जहन में इतनी अच्छी बात है तो आप बेशक वैसा ही रिएक्ट करते होंगे, वैसा ही काम करते होंगे।

और रही बात आपके मेल्स की, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, मोनोसीट हमें लिख रहे हैं, गणेश भगवान ने माता पिता को की परिक्रमा करके सब कुछ जीत लिया, और हम सभी अगर माता पिता की सेवा कर लेते हैं तो भगवान को भी आशीर्वाद हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि माता पिता ही भगवान है। मोनोसेठ खालिसपुर भेल अमेठी से आप हमें मेल कर रहे हैं। बिल्कुल, माता पिता का दर्जा भगवान को ही दिया गया है, वो एकदम भगवान के समान है, तो उनकी सेवा कर लीजिए, आपकी बहुत ढेर सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ आलोक साहू जी हमें मेल कर रहे हैं, ये संदेश है कि जो सही है वही कीजिए। बहुत शॉर्ट में लिखा है इन्होंने, जो आपका दिल कहे, जो आपकी आत्मा कहे कि यहाँ पर ये चीजें सही हैं या गलत हैं, उसको आप रियलाइज कर लेते हैं। जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं ना, तो अंदर से एक बार जो आपकी अंतर आत्मा होती है वो नॉक करती है कि ये गलत है। इसी के साथ छबी राम सिंह जी हमें लिख रहे हैं, रेनबो के दीवाने, मैं छबी राम सिंह राजपूत जिला फरुखाबाद से ये हमें मेल कर रहे हैं, नियमित श्रोता है, और कह रहे हैं कि सभी लोग ध्यान से सुने, हमें सभी को रेडियो सुनना चाहिए, हम सभी को, हमारे यही मैसेज है कि आज का रेडियो हमें हर प्रकार की जानकारियां मिलती हैं आज के रेडियो से, खेती बाड़ी से जुड़ी मनोरंजक समाचार, मौसम समाचार भी मिलता है, रेनबो से हमारे दिल की धड़कन है, और हमारा यही अनुरोध है कि सभी से रेनबो को ज्वाइन करें, क्योंकि रेनबो आज का नहीं सबसे बरसों पुराना साथी है। तो भाई थैंक यू सो मच, आपका ये स्पेशल मैसेज सिर्फ रेनबो के लिए है, और हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत देर से इनका ब्लिंक कर रहा है मैसेज, मोहम्मद आसिफ जी, और कह रहे हैं कि हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं हमें प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगता है, और संदेश है कि बिजली की बचत करें, बिना मतलब बल्ब ना जलाएं, और ज्यादा देर तक फ्रिज का दरवाजा ना खुला रखें, गर्म खाना ना रखें, और ज्यादा से ज्यादा सारे सौर ऊर्जा का आप प्रयोग करिए, उस पर फोकस करें, जिससे बिजली की बचत होगी। कुछ नाम ले लीजिए, बिल्कुल आपके नाम जो आपने भेजे वो लिया जाएगा, सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा और गुलाब शाह का नाम लिया गया है। थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए, और इसी तरह से आपके मेल्स का रहेगा हमें इंतजार, लेकिन इंतजार नहीं करना होगा आपको ट्रैक्स का, तो एंजॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: बिल्कुल भीगने की उम्मीद आप कर रहे होंगे कि भाई कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम भीग सके, लेकिन ये तब होगा जब बारिश आएगी। इसका आपको इंतजार करना होगा। बहरहाल प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे, जिसमें हमारे पास एक बहुत ही प्यारा मैसेज है जिसमें संदेश दिया है महेंद्र दीपन जी ने। जी हाँ, और आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ग्राम रूण नागौर राजस्थान से आप हमें मेल कर रहे हैं और बहुत ही प्यारी सी ये जैसा कि हर बार पिक्चर बनाते हैं और हमें सेंड करते हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे किस तरह से मोबाइल में उलझे हुए हैं एक साइड में, और एक साइड में अगर उनके पास ढेर सारे खिलौने हैं, एक्टिविटीज़ हैं, किताबें हैं, और नेचर से कनेक्शन है, खेलकूद है, और फैमिली टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं, बहुत सी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उनमें क्या डेवलपमेंट होता है। महेंद्र दीपन जी, वाकई आपकी मेहनत बहुत सुंदर होती है। जब लिखा है इन्होंने, जो पिक्चर बनाई है उसमें लिखा है कि अगर बच्चे मोबाइल देखते हैं कंटिन्यू, तो जो नीली रोशनी ब्लू लाइट होती है, वो उससे आंखों की रोशनी कम होने का खतरा है, और एकाग्रता में कमी आती है, याददाश्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है, घंटों मोबाइल देखने से गर्दन, पीठ और आंखों की भी दर्द की समस्या है, नींद में कमी होती है, तनाव, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। महेंद्र दीपन जी, ये बात बच्चों के साथ तो लागू होती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बड़े भी अगर कंटिन्यू मोबाइल देखते तो सेम इफेक्ट उन पर भी आता है। और दूसरी ओर आपने बड़ी प्यारी सी तस्वीर बनाई जिसमें कुछ बच्चे खिलौने खेल रहे हैं, किताबों से दोस्ती कर रहे हैं, प्रकृति के करीब जा रहे हैं, खेलकूद व्यायाम कर रहे हैं और परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, तो इससे बच्चों का जो बचपन अनमोल है, इसे मोबाइल की कैद में मत कैद करें। और आज का संकल्प इन्होंने लिखा है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उन्हें बेहतर और स्वस्थ भविष्य दें। थैंक यू सो मच, आपके जो प्रयास होते हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि इतनी क्रिएटिविटी से आप ये हमें भेजते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें कि आप इतनी कोशिश करते हैं। शीलू मौर्या जी का हमारे पास मेल आया है। मैम, मेरा कहना है कि हम सबको पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग मोटर चालू करके अपना काम में बिजी हो जाते हैं ताकि टंकी से पानी भर जाता है और बहता रहता है। मैं गांव में रहती हूँ, वहां पे हैंडपंप से पानी आता है। मेरे यहाँ अब पानी, ससुराल में आई हूँ तो पता चला है कि यहाँ तो पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और किसी टाइम पे पानी जाता टंकी में तो बहुत मुश्किल हो जाती है जब पानी खत्म हो जाता है टंकी में। बहुत सोच समझ के पानी का उपयोग करते रहें। देखिए, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनका उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और इससे पहले कि हम थोड़ा सा और वक्त ले, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं कौन है वो हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: मैम, मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवर दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
0: बहुत बहुत स्वागत है पिंकी, कैसे हैं आप?
1: थैंक यू दीदी, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स को?
1: जी, सबसे पहले तो मंगलवार की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज बड़ा मंगलवार है।
0: बिल्कुल, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: हेलो
0: जी, जी बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है हम तक।
1: जी मैम, मेरा मैसेज ये है कि मैम, अभी गर्मियों का सीजन है और बच्चों की छुट्टी भी चल रही है, तो अपने बच्चों को अपने

0: गांव को घुमाएं और बाग बगीचे भी दिखाएं और अपने गांव की विशेषताएं भी बताएं, ताकि बच्चों को गांव में बहुत ही अच्छा लगता है और उनको खेल भी खेलना सिखाएं।
1: बिल्कुल भाई, देखिए जो समर वेकेशंस का एक दौर था, जब अगर किसी को कहीं भी जाना होता था तो बहुत ज्यादा दूर घूमने नहीं जाते थे, सिर्फ नानी का घर होता था या अपने गांव जाते थे घूमने।
0: क्योंकि गांव में बच्चे जब आते हैं ना गर्मियों की छुट्टियों में, तो उनको

0: आते हैं ना गर्मियों की छुट्टी में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और मेरे घर में मेरी दीदी की छोटी सी बिटिया है, वो भी मेरे यहाँ आई हुई है। वो गांव में रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है उसे। वो बोलती मैं गांव से कहीं नहीं जाऊंगी,
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच
0: छुट्टी
1: पिंकी,
0: रहती
1: बहुत
0: पर एक अलग ही खुशी
1: हाँ
0: रहती है।
1: हाँ बिल्कुल, एक अलग ही खुशी रहती है। और जो बच्चे आज सिर्फ शहर में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, और जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वो जब
0: क्योंकि मतलब बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो पढ़ाई की वजह से वो कहीं आ जा भी नहीं पाते हैं, तो मतलब एक गांव में जो खूब पल होता है, जो खूबसूरत एहसास होता है ना,
1: सिर्फ वहीं
0: एक
1: पे
0: साथ
1: पता चलता है।
0: बैठना, रेडियो
1: बिल्कुल
0: सुनना, बहुत अच्छा लगता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच पिंकी हमें कॉल करने के लिए।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्कार। तो ये थी हमारे साथ पिंकी, जिन्होंने बताया कि भाई देखिए, अगर आप गांव जाते हैं और समय कुछ निकाल करके, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो बच्चों को बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलता है। बस इसी तरह से हमें मेल करते रहिए, मैसेज करते रहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 11:49 हो चुका है हमारी क्लॉक में, तो बस एंजॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक।

डिसफेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप बात करने के लिए हमारे फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर से 0522 2238 845, दूसरा फोन नंबर है 0522 2238 852। और कार्यक्रम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, 11:54 हो चुका है और अगले कार्यक्रम के लिए शिखा बिल्कुल तैयारी कर रही हैं हमारे पीछे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वक्त है कि हम आपके मेल्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ले सकते हैं। रोशनी रावत हमारे पास मेल कर रही, गुड मॉर्निंग, आपको भी प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, फटाफट से आपका जो संदेश है कि मेरा संदेश ये है कि वक्त कैसा भी हो सब गुजर जाता है, धैर्य रखना चाहिए सभी लोगों को, एक वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमें मेल करने के लिए, जिला उन्नाव से आप हमें मेल कर रही हैं। और गीता सेठ जी का हमारे पास मेल आया है और कह रही हैं, आकाशवाणी ने रिश्तों को मजबूत किया है, जिस प्रकार पौधों को पानी की जरूरत होती है, हम लोगों को मनोरंजक जानकारी के लिए रेडियो आकाशवाणी की जरूरत होती है। हम घर में पकवान बनाते रहते हैं, घर के कार्य भी निपटा लेते हैं और आकाशवाणी सुना करते हैं, हम सभी आकाशवाणी के दीवाने हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार और कहते ना सपोर्ट देने के लिए। आंचल सेठ आपको भी गुड मॉर्निंग, कह रही है योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में हजारों सालों से पहले विकसित हुआ था, जिसके बाद लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल है। थैंक यू सो मच एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए। भाई इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है तो शायद उसी से कनेक्ट करते हुए आपने हमें ये मेल किया। श्यामू चौहान हमें मेल कर रहे हैं, सुबह की चाय सिर्फ एक आदत नहीं होती, ये वो छोटा सा सुकून होता है जो इंसान को कुछ देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर ले जाता है। जितने भी चाय प्रेमी हैं उनके लिए आपने लिख दिया, कभी खामोशी के साथ, कभी बारिश की आवाज के साथ और कभी किसी अपनों की यादों के साथ। असल में चाय का स्वाद चीनी या अदरक से नहीं बल्कि उस वक्त की एहसास से बनता है जिसमें इंसान उसे पी रहा होता है, और हमारी सुबह की चाय थोड़ी दुआओं जैसी होती है, धीरे धीरे दिल को सुकून देती है। क्या बात है, आज तो आपका जो पूरा मैसेज है ना वो चाय, जितने भी चाय लवर्स होंगे उनके लिए आपने कर दिया। श्यामू चौहान जी थैंक यू सो मच। और कुछ नाम ले लूं जो इन्होंने भेजे हैं, राजकरण, हरिओम, सुनील, आकाश, संदीप और सभी दोस्तों को, तमिलनाडु से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आप सभी के मेल्स के लिए वारिस अली खान जी थैंक यू सो मच, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। और कहते हैं कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यासा भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया। क्या बात है, संदेश है कि मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा में दान करने से पहले अपने आसपास के लोगों को देखें, शायद आपके दान की जरूरत इन लोगों को हो और आप इस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके मेल्स के लिए। और 11:56 आपके मेल्स और कॉल्स का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। और अगला सफर आप तय करेंगे, अगले प्रोग्राम को आप एंजॉय करेंगे शिखा के साथ, आकांक्षा को दीजिए अनुमति, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे। तो वाइंड अप हो रहा है, अगला प्रोग्राम आप शिखा के साथ एंजॉय करेंगे और यहीं पर बने रहिए ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

अगर आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है तो इसे डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुने हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11 बजे से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। सुनना न भूले हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर नेशनल

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। उन्होंने ऐतिहासिक उलगुला आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को जागृत किया और जनजातीय समुदायों को अपने अधिकारों, पहचान और गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भगवान बिरसा मुंडा को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की संभावनाओं के अनुरूप व्यापक कौशल विकास कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्योगों को समय पर प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। कौशल विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य केवल प्रशिक्षण तक सीमित न होकर युवाओं को रोजगार और आजीविका से जोड़ना होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा। जम्मू कश्मीर में होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सुचारू और सफल संचालन के लिए शीर्ष अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबान जिले का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त ने यात्री निवास, चंदरकोट में आवास, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, बिजली की उपलब्धता, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: शहर आपका, धुन आपकी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जिसमें हर दिन कुछ खास होता है हमारी सुंदर सुंदर महिलाओं के लिए, जो बना देता है उन्हें हर क्षेत्र में एक्सपर्ट। और आज है ट्यूसडे, यानी सजने सवरने और खुद को स्टाइलिश बनाने का दिन। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस करा आपने भाई कि आज हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। पर बातों का ये सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, तो चलिए एंजॉय करते हैं ये बेहतरीन सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

दोस्तों कहते हैं कपड़ों में नहीं किरदार में होता है फैशन, कपड़ों में नहीं किरदार में होता है फैशन, आत्मविश्वास से चलना यही है असली पैशन। हम महिलाओं का सेंस वो जादू है यारों, हम महिलाओं का सेंस वो जादू है यारों, जो सिंपल सूट को भी बना दे हाई फैशन। सही कहा ना, क्योंकि अब हमें उसी सेंस का यूज करना है। जी हाँ, उसी सेंस का यूज करना है खुद को स्मार्ट और स्टाइलिश दिखाने में। तो कैसे हम खुद को दिखाएं स्मार्ट और स्टाइलिश? तो आपको बता दूं कि आपको अपनाना होगा 7 आउटफिट रूल। जी हाँ भाई, आपको जब कहते हैं ना स्टाइलिश और स्मार्ट दिखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें फॉलो करने होंगे कुछ ऐसे 7 आउटफिट रूल। दोस्तों अक्सर कपड़ों से भरी अलमारी, फिर भी रोजाना एक ही सवाल, आज क्या पहनूं? इसका एक ही सॉल्यूशन हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। और वो है फैशन का नया फॉर्मूला, जिसे कहते हैं 7 आउटफिट रूल। तो भाई अभी हम जानेंगे कि 7 आउटफिट रूल होते क्या हैं, लेकिन एक गाना मेरा बड़ा मन कर रहा है कि भेज दूं आप तक। तो चलिए एक प्यारा सा गाना आ रहा है आप तक, पहले उसको एंजॉय करते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या होते हैं 7 आउटफिट रूल।

जी दोस्तों, 12:19 का वक्त और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा अपनी दोस्त शिखा के साथ। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भाई फैशन की, क्योंकि ट्यूसडे है और ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं सजने संवरने की और खुद को स्टाइलिश बनाने की। दोस्तों, आज मोस्टली वुमेन घर और ऑफिस दोनों को मैनेज करती हैं और घर के जब सारे काम निपटा कर खुद को तैयार होने की बारी आती है तो सबसे बड़ा एक सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि भाई क्या पहनूं? अलमारी कपड़ों से भरी फिर भी कुछ नहीं पहनने लायक, तो लगता है ना कि क्या करना चाहिए। तो भाई आपको फॉलो करना है एक स्मार्ट फैशन फॉर्मूला जिसकी मदद से आप बहुत ही सीमित कपड़ों से पूरे हफ्ते के लिए अलग अलग और स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं। बस थोड़ा सोच समझ कर कपड़ों को मिक्स करें और सही एक्सेसरीज के साथ जोड़ दें और अपनी पर्सनालिटी को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के सामने पेश करें तो ये आपके लिए ना बहुत इजी हो जाएगा और आप दिखेंगी एलिगेंट। तो ये जो 7 आउटफिट जो फॉर्मूला आज हम बात कर रहे हैं उसका ये पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। तो फॉलो तो आप करिए और सोचिए इसके बारे में कि हमारे वार्डरोब में कितने ढेर सारे कपड़े हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, और यूज करना भी चाहिए क्योंकि वो कपड़े जो अलमारी में भरे पड़े हैं वो हमने बड़े शौक से खरीदे थे, तो भाई अब वो टाइम आ गया है आपको उसको यूटिलाइज करने का कि कैसे हम सीमित कपड़ों के अंदर जो हमारे पास है उसी में ही अपने को एलिगेंट दिखा सकते हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए और साथ ही ये प्यारा सा ट्रैक एंजॉय करिए, बहारा बहारा। जी हाँ, चलिए एंजॉय करते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

जी दोस्तों, 12:27 का वक्त और इतनी ढेर सारी बातें हम आपसे करते हैं। तो देखिए, आपकी हेल्थ का हमें इतना ज्यादा ध्यान रहता है क्योंकि आप हमारे हैं दिल के बहुत करीब। तो आपसे कुछ पूछ लूं तो भाई, आप हमें जरा ये बताइए, कहीं आपको खाना निगलने में परेशानी तो नहीं होती, या खाते पीते समय बार बार खांसी तो नहीं आती? तो ये अगर हो रहा है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। हाँ, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते पीते समय बार बार खांसी आती है तो यह डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन, देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से।

बुधवार को। तो सुनना ना भूलें हमारे चैनल यानी एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। और हमारा फोन इन है, जो फोन नंबर है हमारा 0522-2238-845, 0522-2238-852। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

तो क्यों हुई ना काम की बात? तो इसी तरीके की काम की बात हम आपके लिए लेकर आते हैं। बस आपको रहना क्या, करना क्या होता है? आपको करना ये होता है कि जुड़ना होता है हमसे, और जुड़ के हमसे प्यार भरी बातें करनी होती हैं, मेल्स के थ्रू, कॉल्स के थ्रू। और बस आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ पे, लखनऊ की जिस पे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं शत्रुपा।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जी दोस्तों, 12:35 का वक्त और आज आपकी दोस्त शिखा है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में। और आज हम बात कर रहे हैं 7 आउटफिट रूल के बारे में। जी हाँ, जिसको हम महिलाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है। और हम महिलाओं को क्यों जरूरत है, क्योंकि भाई हमारे पास कपड़े तो बहुत होते हैं वार्डरोब में, लेकिन सच में ये एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है कि क्या पहनूं, ये एक सवाल जो रहता है ना, वो हर महिला के दिमाग में जरूर आता है। तो आपको बता दूं, ये जो 7 आउटफिट रूल की जो शुरुआत होती है ना, ये होती है एक स्मार्ट बेसिक वार्डरोब से, जिसमें आपको शामिल करना होगा ऐसे कपड़े जो आप हर मौके पर मैच कर सकें। जैसे सफेद शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, एक फॉर्मल ब्लेजर, न्यूट्रल कलर की स्कर्ट, कुछ बेसिक टॉप। तो ये सब जो चीजें हैं, जैसे सफेद शर्ट हो गई, ब्लैक ट्राउजर हो गया, फॉर्मल ब्लेजर हो गया, न्यूट्रल कलर की स्कर्ट, कुछ बेसिक टॉप्स जो हो गए, एक क्लासिक डेनिम आपके वार्डरोब में होना चाहिए और एक स्टेटमेंट कुर्ती होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें आपकी वार्डरोब में हैं, और डेफिनेटली होंगी, और अगर हैं, तो आपकी जो समस्या है ना, वो बहुत हद तक हल हो गई है। इस रूल की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि कम कपड़ों से भी आप ज्यादा तरीकों से खुद को स्टाइलिश दिखा सकती हैं।

0: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: जी 12:43 का वक्त और आज शत्रुपा प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 7 आउटफिट रूल की, जो आपको दिखाएंगे एलिगेंट और वो भी सीमित कपड़ों में। और ये बात सुनकर कितना अच्छा लगता है ना कि क्या ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि हम बहुत सीमित कपड़ों में बहुत एलिगेंट और गॉर्जियस लुक पा सकते हैं।

तो जी हाँ बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास ना, हम महिलाओं के पास इतनी क्रिएटिविटी होती है, अगर आप क्रिएटिव हैं और मिक्स एंड मैच करना जानते हैं तो भाई आप समझ लीजिए कि आप बन गए हैं लकी, क्योंकि आपको वो कला आ जाएगी जिसके लिए लोग सोचते हैं कि हमें ये कला आ जाए। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव और मिक्स एंड मैच करना सीखना होगा। जैसे अगर आप सफेद शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर और ब्लेजर पहने तो नेक्स्ट डे यानी ट्यूजडे को वही सफेद शर्ट स्कर्ट के साथ ट्राई कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने कि वही जो सफेद शर्ट आपने पहनी थी उसको आप ब्लैक ट्राउजर के साथ ट्राई कर सकती हैं और पा सकती हैं एक एलिगेंट लुक। और नेक्स्ट डे यानी वेंसडे को ब्लैक ट्राउजर, स्टेटमेंट कुर्ती और डेनिम पहन सकती हैं आप एक स्मार्ट लुक के लिए। तो भाई इस तरीके का क्रिएटिव दिमाग लगाकर आप ऑफिस में, जी हाँ ऑफिस में हर दिन एक नया लुक और फ्रेश लुक पा सकती हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए और जरा आज अपनी जो वार्डरोब है उसको पूरे बेड पे फैला दीजिए, उस पर कपड़े सारे फैला दीजिए और देखिए कि हर पूरे हफ्ते हमें कैसे कैसे मैच करना है। तो वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, लेकिन एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है आप तक, उसको एंजॉय करते हैं, फिर बातें करते हैं आपसे ढेर सारी। कहीं जाइएगा नहीं, बस सुनते रहिए 100.7 FM ब्रेन, वो धड़कन लखनऊ की।

जी 12:51 का वक्त, और आज आपने ये जाना ही कि कैसे मिक्स एंड मैच सेंस का यूज करके दिखना है सुंदर। पर एक चीज जो आपके मिक्स एंड मैच खेल में जान डाल सकती है वो है एक्सेसरीज। जी हाँ, एक्सेसरीज आपके जो क्रिएटिविटी है और मिक्स एंड मैच का जो सेंस है ना, उसमें जान डाल सकती है। तो आप हर रोज अपनी ड्रेस के हिसाब से स्टेटमेंट इयररिंग्स, स्कार्फ, बेल्ट एंड वॉच, मिनिमल ज्वेलरी और बोल्ड बैग या शूज ट्राई कर सकती हैं, जो ना आपके लुक को बिल्कुल पॉलिश कर देगा। जी हाँ, आपको लग आप बिल्कुल इतना सुंदर दिखने वाली हैं, मतलब मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि आप कैसे लगेंगी अपनी हर ड्रेस के साथ, हर पूरे वीक में जो आप ड्रेसेस पहनने वाली हो, और जो ड्रेसेस आप पहनेंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है एक्सेसरीज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जो एक्सेसरीज आउटफिट के साथ आप ट्राई करेंगी वो आपकी पर्सनालिटी को निखार कर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको कहीं हद तक वो बढ़ा देगी। तो एक चीज और है जो बताऊंगी आपको, लेकिन एक प्यारा सा गाना भेज दूं, फिर बात करते हैं कि एक और चीज क्या है जिसको हमें अपने ये जो 7 आउटफिट रूल है उसमें यूज करना है। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, अपनी दोस्त शिखा के साथ।

जी बिल्कुल, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और ये जब आप रूल जो फॉलो करेंगी ना, आउटफिट, 7 आउटफिट रूल जो आज हम लोगों ने बात करी, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा बातें करी और बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, तो जब ये 7 आउटफिट रूल जब आप ट्राई करेंगे तो सब आपसे यही कहेंगे, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जी हाँ, ये रूल ही कुछ ऐसे हैं, जब आप इसको पूरे हफ्ते ट्राई करेंगे ना तो बिल्कुल लगने वाले हैं एलिगेंट। तो चलिए एक बात, एक कुछ और चीजें हैं जो आप तक पहुंचा दें। तो श्रोताओं, एक और रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रंगों का चयन। तो आपको ऑफिस के लिए ब्राइट या ओवर डिजाइन आउटफिट से बचना होगा। कोशिश करें कि न्यूट्रल या पेस्टल शेड्स में आपके आउटफिट हों। अगर आपको ब्राइट रंग पसंद है तो कोई नहीं, आप वीकेंड या फ्राइडे आउटफिट की तरह इसे पहन सकते हैं। और दोस्तों, ये 7 आउटफिट रूल जो है ना, ये तभी काम करता है जब आप प्लानिंग से चलें। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपको प्लानिंग करना होगा। तो क्या करेंगे हम, रविवार को 15 मिनट का टाइम निकाल कर पूरे हफ्ते के लिए आउटफिट तैयार कर लें, जिससे आप हर दिन के लिए पहले से ही रेडी हो जाएं। और क्या पहनूं वाला जो प्रश्न है, ये आएगा ही नहीं। तो भाई, इतनी ढेर सारी बातें तो आपसे कर ली, और मुझे पक्का पता है कि जो 7 आउटफिट रूल जो आज हमने बात करी है, ये आप अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल अपनाएंगी। तो इसी के साथ अपनी दोस्त शिखा को दीजिए इजाजत, क्योंकि समय कह रहा है टिक टिक करती हुई कि स्टूडियो क्लॉक कह रही है कि टाइम अब फिनिश हो गया है और वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम शत्रुपा को। लेकिन आपको बने रहना है हमारे साथ और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि भाई आपका ये जो प्रोग्राम है अगला, वो भी आप एंजॉय करेंगे अपनी दोस्त शिखा के साथ। और प्रोग्राम का नाम क्या है, होठों पे तेरी बात। तो तब तक के लिए आप अपने को सवा

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम अनुरोध गीत का।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

से। कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं ये गाना, फिल्म का नाम परम सुंदरी, जिसमें आवाज सोनू निगम और कृष्ण कली की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, परिमहल कासकन से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, निलमा और इनके परिवार के सदस्य। बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक, विक्की भारद्वाज, वीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा और अजय माथुर। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विष्णु, विशाल, तिवानसी, शालिनी, आरबी खेड़ा, लाडी, जीवन सिंह और इनका पूरा परिवार। और अब आप सभी की पसंद का ये गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम परम सुंदरी, आवाज सोनू निगम और कृष्ण कली की।

अब लौट चले, ये गाना सुना आपने इस फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत। और बारी अगले गाने की, वो है फिल्म खट्टा मीठा से, आवाज है केके की। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भागर, बाबू गौरी और हसन सिक्का, मुकेश गौतम, सुनील गौतम और अमन चौंदोसी चमनपुरा उत्तर प्रदेश से, बुधनगर खंडवा से नदीम भाई बहजोई और राजू, सब्जी मंडी कस्बा उघावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर भारती, उषा ध्यान, संजय अनमोल, कश्यप करिश्मा और अंश कश्यप के अलावा मुस्कान कश्यप, राकेश दिवाकर, उर्मिला शिवा, लवी अशोकनगर, मणिनाथ बरेली उत्तर प्रदेश से, पुराना तालाब डुमराव से वल्ली उल अंसारी, आसमाना शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी, फातमा नास, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा, राजधानी रायपुर से नीलू और वंदना और बिट्टू, बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष, मनीष, अंशिका और यूनुस के अलावा सोफिया, बहेड़ी से अंजुम भाई, उन्हील जिला उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाकतड़िया, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक। और आप सुनते हैं खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना, जो कि है केके की आवाज में।

100 डेज इस फिल्म से आपने एक गाना सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे। कटरा चांदखाम मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराने शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। ये हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार, और हमारे श्रोता जो कि हैं इस गाने को सुनना चाहते हैं, दौलतबाद मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी।

और अब आप सभी के अनुरोध का अगला गाना अब आप सुनेंगे, और साथ ही इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं जो कि है फिल्म रंगीला से आशा भोसले आदित्य नारायण की आवाज में। ये हमारे श्रोता जो कि उत्तम सिंह जघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदगी कोहका भिलाई से, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू, निसार अहमद अंसारी महजबी, नुसरत फातिमा, अहमद अंसारी, इसरार इकबाल, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई, पप्पू भाई, नाज रेडियो क्लब करेली से, इश्तियाक अहमद इदरीसी।

अहमद इदरीसी और ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री और योगेश दहीगांव, नादुरा से धोडू भातुरकर, मंगला विवेक, कोमल प्रतीक्षा और समाधान भातुरकर। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, आशा भोसले आदित्य नारायण की आवाज, फिल्म का नाम रंगीला।

0: और अब आप सुनेंगे फिल्म हंसी तो फंसी, फिल्म से गाना चिन्मय श्री प्रदा की आवाज में। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। रागिनी श्रीवास्तव, मुस्कान, विनेश कुमार, निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भागर्व, गौरी और हसन सिक्का, मुकेश गौतम, सुनील अमन, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से, बुधनगर खंडवा से नदीम भाई बहजोई और राजू, कुणाल यादव, हर्ष, मुनीश, अंशिका, यूनुस, सोफिया, राजवीर, बीजना, मुरादाबाद से, भेरूलाल वाकतड़िया, भोला, प्रवीण, रियांश, प्रतीक, उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से, चिन्मय महतो, रेखा, शिवांश, कदमा, जमशेदपुर से। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, जो कि है फिल्म हंसी तो फंसी, चिन्मयी की आवाज में।
1: अरे निखिल कुमार, यहाँ कैसे आओगे?
2: बाय।

इश्क फिल्म का ये गाना आपने सुना विभा शर्मा और उदित नारायण की आवाज में, और इसमें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत। और अब बारी है अगले गाने की, फिल्म का नाम क्या कहना, अलका याग्निक, कुमार शानू की आवाज, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं सरगुजा मैनपाट से सोनिया, सोनम, रेशमा, अदीबा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सरफुद्दीन, कुमारी वली, कुमारी डब्लू, और जेल रोड मुरादाबाद से वसीम आसमा, अकहर उल्लाह और इनके परिवार के सदस्य, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोटके, नंदा और हनुमान बोटके, अनिलगंज ग्राम मोहल्ला से हसरत खान, हशमत खान, अजमत, डालमिया, नसरीन और रईश बानो, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम क्या कहना, अलका याग्निक, कुमार शानू की आवाज।

और अब आप सुनेंगे अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में ये गाना। फिल्म का नाम है फिदा। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित और हैप्पी दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय प्रीति और नवनीत पन्नीलाल सागर बेनी सिंह मासूम धनवीर मनमौजी आशीष अमर सिंह हितेश रूबी रचना एकता दिव्या ममता ओमवती भारती खनक नकुल नैन्सी सारांश मनकारा मंदिर बीजे कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से रियासत हुसैन सिद्दीकी नाजमा बेगम रियाज शमरीन रिहान माहिरा जसपुर उत्तराखंड से लक्षणपुर से रामजी साहू जीवन लाल मोपका भाटापारा से भेवेश कुमार साहू लकी और सुमित्रा महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश ठाकुर तारिणी सूरज ज्योति रियांश। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो की है फिल्म फिदा से और इसमें आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की।

ये गाना सुनेंगे आपके अपने प्रोग्राम अनुरोध गीत में। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस एकांश, वैशाली, शैलेश, सुमित, ध्वनि, बहादुरा नागपुर से हैं, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता और लाडला गवाड़कर, देवेंद्र, राकेश, निशा, प्रकाश, देवेंद्र, बड़ा बाबो सुपर साइंस से हैं, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इद्रीसी, मोहम्मद फरहान इद्रीसी, इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूरजहां डब्लू, वली उल्ला, राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का गाना सोनू निगम की आवाज, फिल्म का नाम गरम मसाला।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और आपको याद दिला दे कि 2:30 बजे आपकी बात के आकाशवाणी के प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज का जो विषय है वो ये है कि ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं, तो ये आज का विषय है और आप इस पर अपनी राय दीजिएगा हमें 2:30 बजे, और ये प्रोग्राम आप सुनेंगे आज ही शाम 4:05 पर। फिलहाल इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध की। सोनू निगम की आवाज, फिल्म का नाम गरम मसाला। इस फिल्म से आप

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे खातों पर आधारित गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। पेश कर रही थी नीतू त्रिपाठी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 107.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजे हैं और आइए अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम रस रंग का। ये पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं रसरंग। श्रोताओं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। जी हां, आज का विषय है ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे आज दोपहर 2:30 पर और इसका प्रसारण होगा शाम 4 बजे। फोन आप हमें कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0581-25-17200। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 0581-25-17-200। और आज का विषय है ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं। श्रोताओं आप हमें कॉल कीजिएगा 2:30 पर या आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर, वहां पर आप हमारे साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं। श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग। ये लोकगीत नीलम वर्मा के स्वर में आपके रेडियो सेट पर।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे आज हम 2:30 पर। आज का विषय है ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं। प्रसारण रहेगा शाम 4 बजे और हमारा फोन नंबर है 0581251720। 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रस रंग, जिसमें गीत, गजल और कव्वाली का आप आनंद ले रहे हैं। आइए सुनते हैं जहीर अहमद खान और शाहिद अहमद खान की आवाज़ में ये

श्रोताओं, 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग, जिसमें कव्वाली, गजल और लोकगीतों का आप आनंद ले रहे हैं। आइए सुनते हैं मनु और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गज़ल अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। लेकिन उससे पहले हम आपको पुनः बता दें कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे आज 2:30 पर। हमारा आज का विषय है ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं। प्रसारण का समय रहेगा शाम 4:00। हमारा फ़ोन नंबर है 0581-2517-200। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में यह गज़ल अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

रसरंग आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमला विचार एफएम पर। श्रोताओं 2:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: लगे।
1: हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं दाग फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: को झूमे हम जब चले तो।
1: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी की बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई बाहों में खिली।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलो शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है घराना फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत, आशा भोसले मुकेश की आवाज में, महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नग्न समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी बहुत सारी सखियों सहेलियों और अन्य सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार।
2: और मेरा भी अपने सभी जो भी सखियां हैं जो भी सखा हैं सभी सभी को सभी श्रोताओं को और चंचल जी आपको नमस्कार।
1: आरती नमस्कार। हमारे सभी सुनने वाले बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम का। और बहुत सारे श्रोता हैं जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं लेकिन कुछ श्रोता हैं जो नहीं जुड़े हैं
2: जी।
1: तो आज किन विषयों पर हम बात करेंगे ये बता देते हैं। तो गर्मियों का समय है और पानी का बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग अनायास ही
2: बिल्कुल
1: बहुत सारा पानी खर्च कर देते हैं। तो किस तरह से इस पानी की बचत बहुत महत्वपूर्ण है, करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, इन सब बातों पर हम
2: बिल्कुल
1: चर्चा।
2: और मौसम कोई भी हो पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और पानी के बारे में आप हमें भी बताइए आप किस तरीके से पानी की बचत करते हैं आप खुद और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं इस चीज के लिए। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत ज़ीनिया पर्सी मास्टर जी की जो की है संस्थापक है ज़ीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस की। और साथ ही हम हल्की फुल्की बातों में करेंगे बहाना ऐसा कौन सा है जो अक्सर काम कर जाता है।
1: बिल्कुल ये बात तो बड़ी कहते हैं ना कि एक रोचक भी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई बहाना उनके पास में तैयार होता है।
2: और बहुत सारे लोग बहाने तो बनाते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे बहाना बना रहे हैं। लेकिन आप कैसे कौन सा बहाना बनाते हैं जो कभी पकड़ा नहीं जाता है
1: और कौन सा ऐसा बहाना है जो अक्सर काम आता है आपके आपको सुरक्षित रखने के लिए।
2: बिल्कुल
1: बहाने क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। और मुहावरे की आज हम एक बात करते हैं तो आज हमने जो मुहावरा चुना है वो है आम के आम
2: गुठलियों के दाम। यानी वैसे भी आम का मौसम है ना आम खाए जा रहे हैं।
1: हाँ तो दोहरा जो फायदा है उसकी बात होगी लेकिन भाई अब आम के आम गुठलियों के दाम तो जानकारी होगी, मनोरंजन होगा और गीत भी होंगे।
2: बिल्कुल। और चंचल जी मैं ये कहूंगी अपने जो भी श्रोता है सखियां हैं जो भी सखा है कि आप उसमें आम के आम जो गुठलियों के दाम मुहावरा है ना खाली इसका अर्थ ही मत लिख के भेजिए क्योंकि अर्थ तो चलिए हमने समझा, आप थोड़ा सा उसके बारे में और रोचक बना के भेजिए उसको।
1: बिल्कुल सुनने से ही पता लगता है कि दोहरे फायदे की बात हो रही है तो उसका अर्थ तो सभी जानते हैं लेकिन आप कि जीवन में दोहरा फायदा किस तरह हुआ, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम
2: और आपने किसी को ऐसा दोहरा फायदा पहुंचाया हो तो वो भी बताइए।
1: तो भाई कार्यक्रम में कैसे होते हैं आम के आम गुठलियों के दाम,
2: गीत सुनने से
1: जी।

0: तो कोरा कागज यानी कि बहुत सारी चिट्ठियां पहले हमें मिला करती थी,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: कोरा
0: अब हमें
1: कागज से नहीं,
0: संदेश मिलते हैं हमारे सुनने वालों के।
1: बिल्कुल। और अभी हम जो सेगमेंट सबसे पहले लेने वाले हैं वो है हमारा सखी विशेष,
0: जी
1: यानी अपने सखी विशेष के बारे में कुछ बातें बता
0: हम
1: देते
0: बात
1: हैं।
0: करेंगे जीनिया परसी मास्टर के बारे में।
1: जी, तो जीनिया पर्सी मास्टर भारत की एक जानी मानी महिला उद्यमी हैं जो बिजनेस और फाइनेंशियल रणनीतिकार हैं। और जीनिया एक व्यावसायिक परिवार से आती हैं, उनके परिवार का लॉजिस्टिक्स और बिजनेस क्षेत्र में लंबे समय से संबंध रहा है।
0: जीनिया पर्सी ने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध गिलियोन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन से हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और रेवेन्यू मैनेजमेंट में पढ़ाई की। इसके अलावा उन्होंने लंदन में फिट्जी विलियम इंस्टीट्यूट से इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया हुआ
1: जी,
0: है।
1: और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दुबई और अन्य स्थानों पर

0: होटल इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने प्री ओपनिंग टीमों में भी काम किया, जिससे उन्हें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का व्यवहारिक अनुभव मिला और साल 2013 में उन्होंने अपना फ्रीलांस इवेंट से शुरुआत की।
1: और इससे पहले जीनिया इवेंट्स का, इसे पहले जीनिया इवेंट्स कहा जाता था, बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
0: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएं प्रदान करती है।
1: और उनका काम वी इन्वाइट यू You own event इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद ले और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
0: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
1: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल पानी। और देखो पानी का जो कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि
1: बिल्कुल
0: जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे
1: बिल्कुल। और
0: लिए।
1: जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी
0: जी
1: हमने प्रगति करी, वो सब कहाँ, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
0: जी
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए जरूरी क्या चीज है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो
0: बिल्कुल
1: ये सोचिए, ये एक हमें जागरूकता का विषय भी है
0: जी
1: कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है। जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत जरूरी है,
1: जी
0: ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही पानी जरूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं।
1: जी
0: जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहां पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है। या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम
1: बिल्कुल
0: बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा
1: बहुत बहुत
0: लगता है,
1: अच्छा लगता है।
0: लेकिन वहां पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं।
1: बिल्कुल
0: लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है उसे हम किस तरह से यूं बेकार की चीज समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल।
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहां पे अगर अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक जरूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिन जरूरी उपयोग बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना जरूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि
1: बिल्कुल
0: हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल। और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
0: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
1: जी
0: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी जरूरी है, और
1: बिल्कुल
0: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा,

0: उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
0: जी
1: ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोची कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही खत्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को जरा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज को वो करें तो उनको समझाइए, सिखाइए,
0: जी
1: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
0: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी, और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी जरूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं, इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
1: बहुत
0: हैं।
1: जरूरी है। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आंखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहां फिर प्रेम का अंकुर पनपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
0: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज्यादा से ज्यादा 4 महीने रहता है,
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता, इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत जरूरी है, लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी जरूरी है।
1: जी।

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का मायने तो बहुत ज्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है ये हमारे आने वाले लोगों को पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे जैसे करके, टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के मतलब जो उन्होंने लिखी है इस तरीके की चीजों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद 70 जो पृथ्वी का 70% पानी है वो जो 70% पानी है, और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो आप वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर
0: जी,
1: भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश
0: बहुत
1: करिए।
0: सारी महिलाओं की आदत होती है जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल
1: हाँ
0: चालू है, यहाँ
1: चल रहा है।
0: उधर काम चल रहा है उनका,
1: बिल्कुल
0: तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल
1: बिल्कुल।
0: को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये
1: और साथ ही
0: सबकी
1: हम ये
0: जिम्मेदारी
1: अगर
0: है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी थोड़ा सा पानी पिए, 2 घूंट पानी पिए और पानी बाकी
0: हाँ,
1: फेंक दिया,
0: आधा
1: क्योंकि
0: ग्लास
1: वो
0: पानी पीते
1: बिल्कुल
0: हैं और आधा
1: जबकि
0: फेंक देते
1: पीने
0: हैं।
1: लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज्यादा चलन है, तो वहां भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा जरूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने
1: बिल्कुल
0: लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरिफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का अगर पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियां धोई तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहां पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं।
1: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीजें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, है
0: क्या
1: ना।
0: बात।
1: तो
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104 FM पर। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCRT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं,
0: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
0: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है,
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है। और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
0: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
0: जी,
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
2: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा
0: जी। और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
2: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है।

0: है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह हो सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन। बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।

0: हर गोविंद भाई,
1: हाँ?
0: तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
0: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
0: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए, उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।
1: भाई साहब,
3: हाँ,
1: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
3: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
1: अच्छा अच्छा,
3: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
1: अच्छा,
3: घबराओ मत, बता दूंगा।
1: तो कितना समय और लगेगा?
3: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
0: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
1: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी

0: तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
1: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
2: पाए लागू माँ जी।
3: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
2: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
3: मेरी बेटी का कोई संवाद?
2: संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं।
3: हाँ?
2: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
3: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
2: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
3: सो तो है।
2: अरे, छुट्टी मिलेगी तो कैसे? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
3: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई। तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
3: हाँ, सो तो है। चलो अच्छा है बबुआ। हाँ? अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
3: हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
2: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
3: अरे,
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
3: जीते रहो बेटा।
2: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
2: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
2: अच्छा, राम राम।
4: राम राम
2: राम राम।

हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है,

0: अपनी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है।

जलालगढ़ है 20 कोस दूर। हाँ? अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम,
2: मैं अब हम निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learnt to live under very hot and dry conditions. True,

0: होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के पहले कॉलर कौन हैं।
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं।
0: आपका वेलकम है प्रोग्राम में, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है सर, आपकी दुआओं का सर है, सब कुछ
0: आज का हमारा जो विषय है, ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत को दाद देते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी थी? कोई ऐसी घटना हमारे श्रोताओं से भी आप शेयर करें।
1: घटना घटी थी सर कि मोटरसाइकिल से जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था, सामने से बाइक आ रही थी और मोड़ थी
0: जी।
1: तो भगवान ने किस तरह से बचाया कि मोटरसाइकिल कूद कर खंजी में गिरी, चोट बहुत आई।
0: अच्छा,
1: फिर बच गया, हम भी बचे, हमारा लड़का भी बच गया। लड़का चला रहा था, हम सब पीछे बैठे थे।
0: क्या बात,
1: आ गई थी हाथ पैरों में, लेकिन वो दिन याद आता कि भगवान ने किस तरह से बचाया।
0: जी जी, कहीं ना कहीं आपका जो हिम्मत थी, मतलब उस पर भी आप अटल रहे।
1: चार पांच दिन हुए हैं जबकि हम बैठक के सामने लेटे थे, चारपाई डाली हुई, तो हल्की हल्की बूंदे आई
0: जी।
1: चारपाई हमने उठा के डाली, तब तक बंदर ने पूरी दीवार डाल दी।
0: अच्छा, तो उसमें आपको कोई
1: भगवान करता अच्छा ही करता है, बूंदे न आती तो हम चारपाई पे लेटे गए थे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बड़ा अच्छा,
1: भगवान है किसी के।
0: अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सुनवा दीजिए, मुगले आजम में गाना है मोहब्बत की झूठी कहानी।
0: सुनवाते हैं आपको जी।

0: तो देखते हैं हमारे कौन कॉलर इस वक्त फोन लाइंस पर है। हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका स्वागत है। कौन बोल रही हैं आप?
1: जी, हम मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से करण अमंसारी बोल रहे हैं।
0: मौलागढ़ नई बस्ती, ये कहाँ पड़ता है?
1: जी सर, भौजीपुरा के पास में पड़ता है।
0: अच्छा, गांव है?
1: जी गांव हैगा।
0: कैसा है आपका गांव?
1: हमारा गांव तो सर बहुत अच्छा है।
0: अच्छा,
1: सब तरफ पेड़ हैं और दो तीन बाग भी हैं।

0: अच्छा, मतलब हरा भरा प्राकृतिक गांव है आपका, है?
1: जी हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो हमारा विषय है तरन्नुम अंसारी जी, ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत को दाद देते हैं, कोई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना जिसको याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत को दाद देते हैं, याद है आपको कुछ?
1: जी सर, हाँ हमें याद है सर।
0: क्या
1: हम बचपन में छोटे थे, लगभग ऐसे ही थे 10-11 साल के, तो
0: जी
1: हमारे गांव में बहुत बारिश हुई थी तो
0: जी
1: पानी सब तरफ भर गया, नहर भी हमारे गांव में, तो उसमें एक बच्चा डूब गया था। हम भी जैसे बच्चे ही थे, वो भी बच्चा था, तो
0: जी जी
1: हमने उसे बचाया। तो आज तक हम उस वो ही दुर्घटना याद करके अपने आप को बहुत करते हैं कि हम भी बच्चे थे और हमने उसे बचाया।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात हमारी श्रोताओं को आपने बताई तरुण अंसारी जी। वाकई में एक दूसरे की मदद करना ही हमारा ये सामाजिक दायित्व है और हमें मदद करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगी आज आप?
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा कितने दूर कितने पास, सुदीन खानवाली, और गाने के बोल रहेंगे, हमको मोहब्बत ढूंढ रही थी, नाम पता सब पूछ रही थी।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
3: सर मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सर सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ। सर
2: क्या बात है सतीश रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। आपके सर, पहली बार कॉल लगी है क्या?
3: जी सर आकाशवाणी सर बरेली में सर मैंने 2 से 3 बार पहले की कॉल मिलाया सर, फोन इन कार्यक्रम में मिलाया था, इस कार्यक्रम में सर पहली बार लगाया मैंने।
2: क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका
3: जी।
2: कैसे हैं आप?
3: जी हम तो बढ़िया सर जी, आप बताएं कि आप कैसे हैं?
2: बस हम भी अच्छे हैं। और आपके शहर का मौसम कैसा है इस वक्त?
3: सर हमारे यहाँ पे सर अभी धूप खिली हुई है सर।
2: अच्छा गर्मी पड़ रही है?
3: जी जी सर, मतलब और रात को सर सुबह सुबह हल्की हल्की से सर बारिश हुई सर 4 से 5 के बीच में।
2: जी जी क्या बात है, तो मौसम थोड़ा सुहावना हो गया होगा, है ना?
3: जी जी जी बिल्कुल सर।
2: सतीश रघुवंशी जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी थी?
3: जी सर, मैं सर मतलब बहुत पहले की बात है सर, जब मैं मतलब ज्यादा ज्यादा 17 से 18 साल की उम्र थी सर, अभी तो मैं 30-35 के आसपास हूँ
2: जी।
3: तो सर एक दोस्त के साथ सर मैं बाइक में जा रहा था और अचानक सर एक ट्रक आ गया, तो सर एकदम से ऐसा लगा कि मतलब मैं कुछ हमेशा के लिए कहीं जाने वाला हूँ, एकदम सामने आ गया सर वो एकदम से, तो मेरा दोस्त है सर बाइक को साइड में ले लिया, तो सर उस दिन से मेरे को आज भी याद है। और सर उस दिन से मैं गाड़ी इतनी सतर्कता से चलाता हूँ सर, मतलब सावधानी में ही सुरक्षा है सर।
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, कभी भी आप हाईवे पर चले तो सबसे पहले तो अगर बाइक चला रहे हैं आप तो हेलमेट का प्रयोग करें और स्पीड को अपनी कंट्रोल रखें, है ना, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे। और वाकई आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी कि आपने इतनी बड़ी दुर्घटना होने से पहले ही आपने आपको अलर्ट कर लिया और उससे अपना बचाव किया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सतीश रघुवंशी जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
3: सर आप मुझे सुना दीजिए सर, फिल्म का नाम है हम साथ साथ, एक सर टाइटल सॉन्ग सुनना है सर।
2: सुनवाते हैं आपको ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो।
2: हाँ सर, हेलो।
1: कौन आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका फोन लग गया, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: जी, कस्बा सीधा से गुड्डू इदरीसी बोल रहा है सर।
1: गुड्डू इदरीसी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो जिसको?
2: ये तो एक इंसान के सर जीवन में उतार चढ़ाव तो सर आता ही रहता है सर, उसका मुकाबला करना तो इंसान की सर होना चाहिए सर
1: जी।
2: और अभी फिलहाल में ये हमारे लड़के ने पेपर दिए थे सर, आपको लीक होगा तो उसकी हिम्मत को सर माना गया सर, आप दोबारा पे तैयारी करिए सर, मेहनत करोगे तो रंग लाएगी सर, ये याद रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है। अभी नीट का जो पेपर था, पेपर लीक हो गया था, तो उसमें जो तैयारी करी हुई थी बच्चों की, उससे बड़ा हतोत्साहित हुए थे बच्चे। वाकई में आपने बड़ा हौसले का काम किया, अपने बेटे को हिम्मत दी ताकि वो फिर से दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करके अपनी तैयारी करें। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। गुड्डू इदरीसी जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
2: राष्ट्रीय गीत सुनाते हैं
1: आपको ये गीत।

0: हेलो,
1: जी हेलो।
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपका फोन लग गया। आप कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैं शाहरुख बात कर रहा हूँ, सिगड़ी कस्बा छत्तीसगढ़ से। जी
0: क्या बात है शाहरुख जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का जो विषय है, ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं, कोई भी आपके जीवन में घटित ऐसी घटना हो जिसपे आप गौरव महसूस करते हो, श्रोताओं के साथ भी शेयर कीजिए।
1: जी सर, मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी जिंदगी में ऐसे टाइम स्टैम्प आया था। एक हादसे में मेरे बेटी की डेथ हो गई थी
0: जी
1: और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, तो मैं आज तक बखूब निभा रहा हूँ और जिम्मेदारी को देख करके चल रहा हूँ।
0: क्या बात है। और परिवार में कौन कौन है आपके?
1: जी परिवार में 3 बहन है और हम 2 भाई हैं। परिवार में बहनों की शादी कर दी मैंने
0: अच्छा,
1: और अपने आप ही जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मैं सारी।
0: क्या बात है, क्या बात है शाहरुख भाई। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और
1: जी कभी हार नहीं मानना चाहिए और अपनी हिम्मत और हौसले बुलंद रखना चाहिए, कामयाबी मिलेगी जरूर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के
1: जी
0: माध्यम से?
1: अपने मूवी का टाइटल सुनवा देना सर।
0: सुनवाते हैं शाहरुख भाई आपको ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

अपने तो अपने होते हैं। यूं जो 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने विचार साझा किए हैं। आप हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, ये कमेंट आपने हमें किया है सादुल शहर राजस्थान से। बहुत ही विस्तृत बातचीत आपने हमसे की है। आप कहते हैं कि जीवन संघर्षशील रहा है, इसमें बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो टूटे टूटे फिर निखर जाते हैं। ऐसे ही वाक्य एक बार हुआ था, माताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया था कि उम्रदराज हैं, ऑपरेशन कर पाना बहुत मुश्किल होगा, इसे आप घर पर ही सेवा करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और परमात्मा का नाम सिमरन किया और माताजी को किसी दूसरे शहर में डॉक्टर के पास लेकर चला गया। इत्तेफाक से वहां पर भी मेरा शहर का डॉक्टर मुझे सामने मिला और मुझे बोला कि माताजी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, आप घर पर ले जाओ। लेकिन मैंने जिद की और अन्य डॉक्टर के पास ले जाने की बात की तो उन्होंने अन्य डॉक्टरों से संपर्क किया और 4-5 डॉक्टरों को वही अस्पताल में बुला लिया। लेकिन सभी डॉक्टरों की एक ही राय थी कि माताजी अब अपने हाथों में नहीं है, क्योंकि इस उम्र में आप ऑपरेशन करवा रहे हो, आप घर पर जाकर उनकी सेवा करो जितने दिन हो सके। लेकिन मेरी जिद के आगे वो डॉक्टर बेबस हो गए और माताजी को एडमिट कर लिया। रात का समय था, डॉक्टर साहब ने बोला कि 4 यूनिट ओ पॉजिटिव ब्लड लेकर आओ। मैंने अपने जानकारों से संपर्क किया और रात्रि को ही 4 यूनिट की बजाय 6 यूनिट ब्लड ओ पॉजिटिव मिल गया। डॉक्टर ने माताजी को ब्लड चढ़ाया और ऑपरेशन आरंभ कर दिया और ऑपरेशन सुबह बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया और माताजी बिल्कुल

स्वस्थ होकर 10 साल तक हमारे साथ रहीं, हमें आशीर्वाद देने के लिए अपने जीवन की और उन बढ़ा ली। वो दिन आज भी मेरे जहन में है और मुझे माता जी का आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। परमात्मा जब साथ देते हैं तो छप्पर पाड़ के देते हैं, इसलिए इंसान को कभी हताश नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी ये स्टोरी है और हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता भी आपकी इस घटना से प्रेरणा लेकर हौसला कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि हौसला एक ऐसी ताकत है जो कभी कभी बहुत ज़्यादा आप विपदा में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन अगर हौसला आपके पास है तो आप उस विपदा से भी पार पा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार रेवाल जी। और ये हमारे श्रोता हैं गंगा सिंह रावत जी, आप लिखते हैं कि बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। हमारे कॉलेज के एक स्कूल टूर उधम सिंह नगर के पास टांडा फॉरेस्ट में गया था। हमारे वहाँ 10 दिन का कैंप था। एक दिन मैंने सोचा कि फॉरेस्ट एरिया की आसपास की जगह को देखा जाए और मैं बिना किसी को बताए अपने कैंप से निकल पड़ा। चलते चलते फॉरेस्ट में मैं काफ़ी दूर चला गया और मैं रास्ता भटक गया। तभी मैंने देखा आगे रास्ता बंद है और काफ़ी ऊंची ऊंची झाड़ी और घास उगी हुई है। मैं थोड़ा घबराया हुआ था तो मैंने सोचा अगर मैं डर गया तो रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मैं रास्ता नहीं ढूंढ पाऊंगा। आगे बढ़ के लगा तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई थी जो एक दूध वाले की थी। उसने कहा आगे कहाँ जा रहे हो, आगे लेफर्ड हो सकते हैं। लेफर्ड का नाम सुनते ही मैं घबरा गया लेकिन अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और वापस निकल पड़ा। थोड़ी दूर तक दूध वाले भैया ने मेरी मदद की और आखिरकार मैं अपने कैंप में वापस आ गया और वहाँ पहुँच कर मैंने सबको ये घटना बताई। मेरे टीचर्स ने मुझे डांटा मगर मेरी हिम्मत की दाद भी दी। वाकई में बहुत ही अच्छी बात आपने कही गंगा सिंह रावत जी, रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी तरह से आप अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहिए और जुड़े रहिए ऑल ऑन 100.4 FM पर आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

0: देखते हैं हमारे कौन से श्रोता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बोल रही हैं आप?
1: राधा देवी बोल रही हूँ।
0: राधा देवी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से बोल रही हूँ जी।
0: क्या बात है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल, काफी दूर है ये तो जगह।
1: हाँ जी
0: वहां पर हमारा ट्रांसमिशन आपको साफ सुनाई देता है?
1: हाँ, मैं तो सारे प्रोग्राम सुनती हूँ, आराधना से लेकर के रात को 10-10:30 बजे तक सारे प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: जी,
1: ये रेडियो का मुझे कम से कम 91 से मैंने सुन रही हूँ इसको।
0: क्या बात है।
1: हाँ, सर बधाई हो, हमारे आकाशवाणी को 90 साल हो गए। आज सारी टीम को मेरी तरफ से बधाई, नमस्कार सारी टीम को।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। राधा जी, आप उत्तराखंड से हैं, पौड़ी गढ़वाल से हैं। आज का जो हमारा इस प्रोग्राम में टॉपिक है, ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं, कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो?
1: मेरे जीवन में घटना घटी थी, मेरे बच्चा 8 महीने का बच्चा था, मेरे घर में चोर घुस के आ गया।
0: हाँ,
1: हाँ, और वो चोर रिश्तेदार कैसे बताने लगा, लेकिन मैं तो उसको जानती नहीं थी। लेकिन मैं उसको आराम से बिठाया, मैं उसको चाय पिलाई, वो मेरे लिए चाकू और हाथ में मिर्च लेके आ रखा था।
0: अच्छा,
1: हाँ, हाथ में मिर्च ले रखी थी और चाकू ले रखा था, लेकिन मैं मेरे सामने मेरा बच्चा था और बड़ा डर लग रहा था। लेकिन मैंने उसको बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा भाई तुझे ले जाना है ले जा, लेकिन मेरी जान बच उसे।
0: क्या बात है, वाकई में आपकी
1: हाँ
0: हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल
1: हाँ
0: फिल्म की कोई स्टोरी आप सुना रही हो, है ना?
1: नहीं, मेरे साथ ये घटना घटी, बल्कि अगर वो जिंदा होगा तो सुन भी रहा होगा। अभी मेरा बेटा, वही बेटा मेरा 32 साल का है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा
1: हाँ,
0: लगा राधा देवी जी आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगी आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: कोई भी सुना दीजिए सर।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

हमारे और भी श्रोताओं के कमेंट हमारे पास आए हुए हैं। विनेश कुमार श्रीवास्तव बैंक सेंटर के पास चनेडी से, एक बार हम अपने भतीजे के साथ कार से अपनी सिस्टर को छोड़ने दिल्ली जा रहे थे। मुरादाबाद के आगे एक पुल पर सामने से ट्रक आ रहा था। कार भी तेज थी और ट्रक की स्पीड भी काफ़ी थी। आमने सामने क्रॉस करने के लिए जगह बहुत कम रही होगी। हमारे ड्राइवर ने पता नहीं कैसे कम जगह से कार को क्रॉस कर लिया। हम लोगों को कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आज बच नहीं पाएंगे, भगवान की याद आ गए थे। पर शुक्र है उस भगवान का कि हम सब मौत के करीब होकर भी बच गए। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। बहुत शुक्रिया विनेश कुमार श्रीवास्तव जी, आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से अंकुश अरोड़ा और साथ में हैं आपके तिलकराज अरोड़ा। आप कहते हैं, कुछ समय पूर्व की बात है, मैं अपनी दुकान पर बैठा था। एक आदमी बहुत तेज़ी से भाग रहा था और उसके पीछे लोग भाग रहे थे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो का जोर जोर से हल्ला मचा रहे थे। मैंने आओ देखा ना ताओ उसको डंडा मार कर गिरा दिया। लोगों ने फिर पकड़ लिया। फिर पता चला कि पीछे दुकानदार को घायल करके गले से रुपए लेकर भाग रहा था। दुकानदार के रुपए भी वापस मिल गए। सभी लोगों ने कहा कि यदि मैं डंडा मार कर ना गिराता तो चोर भाग जाता और रुपए भी वापस नहीं मिलते। इस कार्य को सभी ने मेरी तारीफ की एवं मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने, बहुत ही प्यारी बात जो आपके साथ घटी घटना थी उसको आपने हमारे श्रोताओं के साथ प्रेषित किया। तिलकराज अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं, कोई याद है आपको ऐसी घटना?
1: जी, जैसे कि जैसे मेरे मोहल्ले में मेरे डैड से किसी की जैसे लड़ाई हो गई थी, तो क्या नाम है, मेरे पापा दुकान पे थे और मैं जा रही थी उनकी दुकान पे, क्या नाम है, छोटी सी थी, तो उन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि वो कहीं चले गए थे, बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि वो आ रहे हैं, उन्हें घेर लेना और जैसे क्या नाम उन्हें पकड़ लेना, किडनैप कर लेना। तो मैंने उन सबकी बातें सुन ली थी, तो मैं आई घर पे, मैंने अपने डैड को फोन किया और बताया, और मेरे डैड घर पे आ गए।
0: क्या बात है, वाकई में बड़ी दुर्घटना होने से आपने अपने डैड को बचा लिया, कि इस हौसले की हम दाद देते हैं। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: नगीना मूवी का सुनना चाहूंगी, भूले बिसरी प्रेम कहानी।
0: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आज का विषय था ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत की दाद देते हैं। 100.4 FM पर ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का, तो हम आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। शाम 7:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, विषय रहेगा समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं व समाधान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार शिल्पी के साथ, इसमें आप चर्चा सुनेंगे बड़े बूढ़ों से है घर की असली रौनक। साथ ही आपको एक भेंटवार्ता भी इसमें हम सुनवाएंगे, टीकाकरण महत्व एवं आवश्यकता, जानकारी देंगी माला सैनी। साथ ही होंगे किचन टिप्स और इनसे मिलिए। शाम 6:00 युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी माधुरी के साथ, इसमें कुछ खास है आज। मैट्रिटिम डे ऑफ बिरसा मुंडा, साथी होगा आपकी पसंद और ओबी। हेडलपाल और राकेश कुमार शर्मा के साथ आप सुनेंगे शाम 6:30 पर कार्यक्रम किसानवाड़ी, इसमें आज की बात कृषि रसायनों का संतुलित प्रयोग। साथी हेलो किसान प्रोमो, बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल नसीहत और लोकगीत। शाम 7:00 ग्राम जगत में चर्चा, भोजन में रखें पौष्टिकता का ध्यान। साथ ही होगी एक वार्ता और लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे।

और श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। अब एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, कल शाम 7:10 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला। कल शाम 7:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। विषय रहेगा डायलिसिस के बारे में भ्रांतियां और वास्तविकता। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेम मोहन झा, गुर्दा रोग विशेषज्ञ।

श्रोताओं, प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे कल दोपहर 3:30 पर। 8:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम यंग बरेली। आपकी पसंद आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत कल 1 से 2 बजे तक। कल शाम 4:00 आप सुनेंगे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे लोकगीत। 11:00 का समय रहेगा कार्यक्रम सबरंग का। रसरंग में गजल, कव्वाली और लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:00। और शाम 5:05 पर भजन संध्या।

कल शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार नूर फातिमा के साथ। चर्चा होगी ना पहुंचाएं बच्चों के आत्मविश्वास को ठेस। एक वार्ता आपको सुनवाएंगे डिजिटल साक्षरता और महिलाओं के लिए नई संभावनाएं। वार्ताकार होंगी रीना, साथी होंगे पेरेंटिंग टिप्स। इनसे मिलिए में आप सुनेंगे एक ओबी। कल शाम 6 आप सुनेंगे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आबिदा के साथ। कुछ खास है आज इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग्स अमंग सिविलाइजेशन। साथी होगा प्यार की धुन, वो भी आप सुनेंगे। साथी होगा चक्रव्यूह। कल शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत हैडलपाल और कृष्णवीर के साथ। चर्चा होगी मच्छरों से बचाव के उपाय। कृषक गोष्ठी चूल्हा चौका के साथ खेती में सही होगी। प्रतिभागी होंगे विमलेश कुमारी, सुखदेई, रेखा रानी। संचालन करेंगी क्षमा सक्सेना और साथी होंगे लोकगीत। श्रोताओं, ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हमारी इस सभा के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। और श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भजन संध्या। ये पहला भजन अनुप जलोटा के स्वर में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार शिल्पी के साथ।

नमस्कार बहनों, नारी संसार में आज मैं आपके साथ हूं शिल्पी, और मेरे साथ है आपके लिए जानकारी का खजाना, बहुत सारा मनोरंजन, जानकारी की बातें। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बहनों, बुजुर्ग शब्द दिमाग में आते ही उम्र व विचारों से परिपक्व व्यक्ति की छवि हमारे सामने आने लगती है। बुजुर्ग अनुभवों का वह खजाना है जो हमें जीवन पथ के कठिन मोड़ पर दिशा निर्देश करते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग लोगों में नाना नानी, दादा दादी, माँ, पिताजी, सास ससुर आते हैं, और बुजुर्ग घर का मुखिया होता है। इसी वजह से वो बच्चों, बहुओं, बेटों, बेटी को कोई गलत काम या बात करते हुए देखते हैं तो उन्हें अगर

0: बहनों, टीकाकरण का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। टीकाकरण का महत्व और इसकी आवश्यकता है, और इसी विषय को और आगे बढ़ा रही हैं माला सैनी जी। तो आइए जानते हैं माला सैनी के विचार। विषय है टीकाकरण का महत्व एवं आवश्यकता।
1: सखियों, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है माला सैनी जी को, जो कि महिला स्वास्थ्यकर्ता हैं। माला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने हमें महिला स्वास्थ्यकर्ता के रूप में यहाँ पर बुलाया, उसका तहे दिल से आपका आभार है।
1: और आप समय निकाल के आई, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी जी।
1: अच्छा, आप महिला स्वास्थ्यकर्ता हैं।
2: जी।
1: तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारी महिला स्वास्थ्यकर्ता जो होती हैं, उनका क्या कार्य होता है?
2: अच्छा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के निम्न ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में समान काम होते हैं, लेकिन हमारा मेन काम है टीकाकरण। टीकाकरण संबंधी सेवाएं देना, जैसे गर्भवती महिलाएं को हमारा, जैसे फर्स्ट बेबी है किसी का, तो उनका पूरी हिस्ट्री हम जानते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है उनका और कैसे कैसे उनका टीका लगाना है। तो फर्स्ट आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ का पता चलते ही पहला टीका लगता है
1: उसके। अच्छा, तो आपके पास जो सखियां आती हैं, जो गर्भवती होती हैं, तो वो कितने समय के बाद आती हैं? कितना टाइम उनका ऊपर हो गया होता है जब वो आपके पास आती हैं?
2: हमारा मेन है कि हमारे क्षेत्र में हेल्प के रूप में, एज ए हेल्प के रूप में आशा क्षेत्र में दे रखी होती हैं। जैसे उनका प्रेगनेंसी का पता चलता है तो हम उनका यूपीटी यानी कि पेशाब जांच टेस्ट से जांच करते हैं। तो उनका पहला हम रजिस्ट्रेशन करते हैं।
1: जी।
2: प्रेगनेंसी का पता चलते ही हम उनका रजिस्ट्रेशन करके उनकी पूरी हिस्ट्री जान लेते हैं। एज ए कोई हिस्ट्री में HRV तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो हम उनका एज ए सारा क्लियर करके तब उनका फर्स्ट TD देते हैं।
1: टीडी मतलब
2: टेटनेस और डिप्थीरिया, ये दोनों मिक्स का होता है पहले हमारे समय।
1: पहला टीकाकरण।
2: हाँ, पहला
1: कितने महीने पे होता है, कौन से माह में होता है?
2: प्रेगनेंसी का पता चलते ही पहला टीका लगता है,
1: मतलब लगभग मान के चलिए 3 महीने से 3 महीने के
2: बीच लगवा सकते हैं। और दूसरा टीका उसका जस्ट 28 दिन में होता है।
1: तो ये तो हो गई फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात। अगर कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, पहली बार गर्भवती हुई है तब की। अच्छा, तो ये तो पहला टीका हो गया।

0: या फिर दूसरा 28 दिन के बाद, लगभग 1 महीने के बाद
1: हाँ,
0: दूसरा
1: दो
0: टीकाकरण
1: टीक हो
0: होता है,
1: गए।
0: क्या उसके बाद भी टीकाकरण होता
1: नहीं,
0: है?
1: उसके बाद में हमारी समय समय पे महिला की जांच होती है। हमारे स्वास्थ्य CS सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे HRP डे मनाया जाता है, जो 9 तारीख, 16 तारीख, 1 तारीख और 24 तारीख, इसको 4 HRP डे होते हैं। उस पर
0: जी।
1: महिला की समय समय पे जांच होती है।
0: अच्छा, तो जो हमारी आशा कार्यकर्ता होती हैं, ये उन महिलाओं को सूचित करती हैं या महिलाओं को किस तरह से पता चलता है कि आज टीकाकरण है और हमें जाना है?
1: ये हमारे पास आशाओं की एक हेडकाउंट सर्वे होती है,
0: जी
1: सर्वे को समय समय पे अपडेट अपडेट करना पड़ता है। किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो वो भी हमें आशा डायरी में आशा अपडेट करती है उसको। कोई महिला प्रेग्नेंट है तो घर घर जाके जैसे सर्वे समय समय पे चलता है हमारा
0: हाँ,
1: अभी
0: डोर टू डोर सर्वे
1: डोर।
0: चलता है,
1: हाँ, तो
0: मतलब
1: उसमें
0: ऐसा नहीं है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या जिनके घर में बच्चा जन्मा है उनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आशाओं की है, आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है।
1: आशा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। आंगनवाड़ी के पास पोषाहार होता है तो आंगनवाड़ी के पास भी गर्भवती महिला सबसे पहले आके रजिस्ट्रेशन कराती है, उनसे भी हम ट्रैक करते हैं गर्भवती महिलाओं को।
0: तो गर्भ धारण करने के बाद के जो टीकाकरण होते हैं वो ये दो ही होते हैं,
1: हाँ,
0: है ना?
1: TD फर्स्ट और उसके जस्ट 28 दिन बाद TD सेकंड लगता
0: तो
1: है।
0: ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी का हो गया, लेकिन अगर किसी की सेकंड प्रेगनेंसी है, कोई महिला दूसरी बार गर्भवती हुई है, तो उसका टीकाकरण कब कब लगता है?
1: अगर कोई महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है, उसका बेबी मान लीजिए बेबी उसका 1.5 साल का है और
0: जी
1: वो उससे पहले ही प्रेग्नेंट हो गई,
0: जी
1: तो उसका जो बेबी फर्स्ट बेबी हुआ था तो उसको पहले ही 2 TD के लग चुके थे, तो
0: जी
1: उसको हम एज ए TD बूस्टर के रूप में एक ही टीका देंगे। अगर बेबी सेकेंड बार प्रेग्नेंसी है और बेबी उसका 3 साल कम्प्लीट हो गए, 3 साल का
0: जी
1: गैप है, तब उसको 2 टीके लगेंगे।
0: तो वो कब कब लगते हैं? जो
1: ओ
0: अगर बेबी, उसका शिशु जो है, पहला बच्चा, बड़ा बच्चा जो है, वो 3 साल कंप्लीट कर चुका है, तो और वो उसके
1: गर्भवती
0: बाद
1: होती है
0: गर्भवती होती है, तो वो टीकाकरण कब कब होता है?
1: उसका वही शेड्यूल जैसे पहले प्रेगनेंसी में लगाता है, पहले पहले टीका प्रेगनेंसी का पता चलते ही लगेगा, फिर दूसरा टीका उसके 28 दिन बाद लगेगा, और उसकी समय समय पे 9 मंथ तक जांचें होंगी कंप्लीट, फिर आशा द्वारा उसका संस्थागत प्रसव कराने पे जोर दिया जाएगा।
0: जी अच्छा, ये तो हो गई हमारे टीकाकरण की बात,
1: जी
0: जो कि गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है
1: जी जी
0: सरकार की ओर से, जिसमें आप लोग पूरी सहायता करते हैं। अच्छा, फिर जब डिलीवरी होती है, प्रसव होता है और शिशु आ जाता है, ठीक है, उसके बाद शिशु का टीकाकरण शुरू होता है?
1: हाँ, पहला तो टीका जैसे संस्थागत, हमारे यहाँ अधिकतर संस्थागत प्रसव होते हैं सरकारी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे हमारी एज ए स्टाफ नर्स दीदी हैं या ANM दीदी हैं, तो वहाँ पे BCG और हेपेटाइटिस बी का लगाते हैं और OPV की वैक्सीन भी देते हैं। वहाँ जन्म के तुरंत बाद
0: तुरंत
1: चौबीस
0: बाद
1: घंटे के अंदर ये वैक्सीन वहाँ दे दी जाती है, उसके बाद जस्ट ये अपने घर आ जाती हैं, तो फील्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जो ANM दीदी वहाँ बैठती हैं फील्ड में, तो
0: जी
1: आशा द्वारा ट्रैक बच्चा किया जाता है, तो उसके 42 से 45 दिन यानी कि 1.5 माह पर उसको पेंटा की फर्स्ट डोज, पेंटा OPV फर्स्ट हो गया और रोटा हो गया जो डायरिया से हमें बचाता है, और IPV हो गया, FIPV वो भी लगता है, और PCV जो निमोनिया के रूप में दिया जाता है, वो
0: ये
1: हमें
0: 1.5 माह के बीच,
1: डेढ़ माह की
0: 1.5 माह
1: हमारी
0: के अंतराल पे
1: जी
0: लगता
1: जी
0: है?
1: ये हमारी 1.5 माह की हो गई। जो पेंटा है जो हमारी बच्चों को 5 बीमारियों से बचाता है, जैसे पेंटा में हमारा पर्टुसिट हो गया, काली खांसी, गला घोटू, टेटनस और आपका हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 5 बीमारियां होती हैं।
0: वो जो होता है टीकाकरण, वो इन 5 बीमारियों को कवर करता है।
1: जी
0: अच्छा, ये तो हो गया शिशु जन्म लेने के 1.5 माह के अंतराल
1: उसके
0: का,
1: बाद
0: है ना?
1: जस्ट 2.5 माह पे लगता है,
0: जी
1: ढाई उसके 28 दिन बाद जब लग गया, पहले 1.5 माह पे, उसके बाद 28 दिन बाद जो टीका लगता है वो हमारा 3 डोज दी जाती है, जैसे हमारा रोटा OPV हो गया,
0: जी
1: पोलियो जिसे कहते हैं,
0: जी
1: और रोटा की हो गई डायरिया से जो बचाता है, पेंटा
0: जी
1: पेंटा की एक खुराक दी जाती है वो, फिर उसके बाद हमारे 3.5 महीने पे लगता है, ये हमारा
0: अच्छा
1: कंटिन्यू 3 महीने तक कंटिन्यू शेड्यूल चलता है। जैसे फिर था वो जो फर्स्ट डोज लगी थी 1.5 माह पे, वही पेंटा थर्ड पे लगेगा, जैसे हमारा पेंटा फर्स्ट हो, OPV फर्स्ट हो गया, रोटा फर्स्ट हो गया और IPV हो गया, PCV हो गया और पेंटा की डोज हो गई, ये हमारा 3.5 महीने तक ये बच्चे की लगती है। उसके बाद हमारा लगता है 9 मंथ पे,
0: जी
1: 9 से 12 मंथ पे जो बच्चों को लगता है, जिसमें खसरा हो गया, खसरा रूबेला का टीका दिया जाता है।
0: अच्छा, वो 9 से 12 माह के बीच, मतलब साल के अंदर ही दिया जाता है वो टीका
1: हाँ,
0: भी?
1: 1 साल के अंदर अंदर ये लगने होते
0: तो
1: हैं।
0: ये तो साल के अंदर के टीके हो गए। उसके बाद का टीकाकरण फिर वो कैसे
1: उसके
0: शेड्यूल
1: बाद
0: होता
1: हमारा
0: है?
1: 16 माह से लगता है, 16 माह से 24 माह के बीच में लगता है, जिसे बूस्टर डोज कहते हैं। खसरा सेकंड हो गया,
0: ठीक है
1: जेई सेकंड हो गया, डीपीटी बूस्टर हो गया,
0: जी।
1: जो हमारा

0: इन बीमारियों से बचाता है, काली खांसी, गला घोटू, टेटनेस, डीपीटी का,
1: जी
0: और पोलियो की खुराक दी जाती है। उसके साथ ही हमारे विटामिन ए की डोज भी दी जाती
1: अच्छा,
0: है।
1: पोलियो से याद आया, अभी आपने बताया था कि पोलियो का टीकाकरण भी होता है।
0: पोलियो का FIVB,
1: हाँ, टीका भी लगता
0: हाँ
1: है और साथ ही फिर पोलियो के ड्रॉप्स भी पिलाए जाते हैं बाद में।
0: हाँ पोलियो के ड्रॉप्स
1: वो
0: पिलाए
1: ड्रॉप
0: जाते,
1: कब तक पिलाए जाते हैं बच्चे को?
0: वो ड्रॉप हमारा 1.5 साल तक बच्चों को पोलियो के ड्रॉप देते हैं। पांच
1: अच्छा,
0: साल पे हमारे बच्चे को, जब बच्चा 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो हमें DPT लगाया जाता है बच्चे को।
1: उसके बाद जो अभी हम टीकाकरण की बात कर रहे थे कि अभी आपने जो बताया कि साल के अंदर के इतने टीके होते हैं, उसके बाद फिर हमारा 16 महीने पे होता
0: सोलह
1: है,
0: से हाँ 24 माह के
1: चौबीस
0: बीच में
1: माह तक
0: लगता
1: होता
0: है।
1: है, मतलब 2 साल तक लगता है। उसके बाद का टीकाकरण कब
0: उसके
1: होता
0: बाद
1: है?
0: बच्चा जब 5 साल का कंप्लीट हो जाता है
1: जी
0: तो उसे DPT सेकंड देते हैं, यानी कि DPT बूस्टर की सेकंड डोज दी जाती है 5 साल कंप्लीट होने पे। वो
1: जी
0: क्या नाम है, गला घोटू, काली खांसी, टेटनस, इसका उसके
1: वही
0: बाद बच्चे
1: रिपीट की जाती है फिर
0: हाँ
1: से, 5 साल
0: हाँ
1: कंप्लीट
0: डेढ़
1: होने पे
0: साल पे
1: बच्चे
0: हमारा, वो
1: की।
0: 16 महीने पे हमारा DPT फर्स्ट हो गया और 5 माह 5 साल का कंप्लीट हो गया तो DPT सेकंड हो गया। उसके बाद हमारा बच्चा जब 10 साल का कंप्लीट हो जाता है, एडोलसेंट की एज में आ जाता है, तब
1: जी
0: उसको TD दिया जाता है,
1: वो भी
0: किशोरावस्था।
1: सरकार को द्वारा ही दिया जाता है, सरकारी
0: सारी
1: ही है
0: सारी
1: ये,
0: टीकाकरण ये सरकारी है, सरकार के द्वारा निःशुल्क लगाए जाते हैं समय
1: बिल्कुल।
0: समय पे।
1: अच्छा, ये टीकाकरण तो इतने हैं। अच्छा, 10 साल के बाद भी है टीकाकरण कोई?
0: हाँ जी 10 साल के बाद भी, 16 साल पे लगता है, किशोर किशोरियों दोनों को लगता है समय समय पे। जैसे स्कूलों में अभियान चलता है तो स्कूलों में बच्चों को TD का वैक्सीनेशन दिया जाता है, DPT का भी स्कूलों में वैक्सीनेशन दिया जाता है, जब सरकार द्वारा गाइडलाइंस आती है तभी
1: अच्छा
0: निःशुल्क
1: ठीक
0: लगाए
1: है,
0: जाते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और एक चीज बताइए माला जी, कि ये टीकाकरण जो होता है गर्भवती जब महिला होती है तब से लेकर, और बच्चा जब 16 साल का होता है तब तक, तो इसकी जानकारी आप लोग कैसे रखते हैं? आप लोग ऐसा कहीं पे कुछ लिखित रूप में रखते हैं या क्या करते हैं ऐसा, मतलब कोई किताब देते हैं, क्या करते
0: नहीं
1: हैं?
0: टीकाकरण की किताब ये तो हमारी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी जाती है समय समय पे, टीकों में
1: जी
0: जैसे बदलाव हुआ है, वैक्सीन बढ़ी तो समय समय पे ट्रेनिंग दी जाती है। इसका हमारे पास चार्ट भी होता है तो उस और रिकॉर्ड भी होता है बच्चों के, जैसे हमारा कोई भी सेंटर है
1: तो वो रिकॉर्ड जो होता है कि आपने कितने टीके लगा दिए, कितने
0: वो
1: बार किए हैं,
0: सारा
1: तो ये
0: रिकॉर्ड
1: रिकॉर्ड आपके पास ही होता है या शिशु जो होता है या जो बच्चा है
0: शिशु के
1: उसकी माँ
0: पास
1: के
0: भी
1: पास
0: होता,
1: भी होता
0: शिशु की
1: है?
0: माँ के पास भी हम एक MCP कार्ड होता है, मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड जो होता है वो
1: जी
0: उनको
1: जी
0: देते हैं,
1: जी मैं
0: टीकाकरण
1: हाँ
0: कार्ड
1: जी
0: कहते
1: मैं
0: हैं
1: वही जानकारी लेना चाह रही थी
0: जी।
1: कि ऐसा कुछ होता है कि उस, मतलब आपको पता चले, कोई किताब ऐसी होती है, कोई कार्ड होता
0: हाँ
1: है
0: माँ के
1: जिससे
0: पास
1: कि
0: होता
1: आपको
0: है,
1: पता
0: जैसे
1: चलता होगा।
0: माँ ने हमारे पास लगवाया बच्चे के टीके तो उसके अगर माँ कहीं भी मेहमानी में जा रही है, कहीं भी जा रही है नैनीहाल, तो वो टीकाकरण कार्ड से वहां भी टीका लगवा सकती है।
1: मतलब ऐसा नहीं है कि जहां पे उसके अब तक के टीकाकरण हुआ है आगे के टीकाकरण भी उसी संस्थान में, वो कहीं भी करा सकते हैं?
0: हाँ टीकाकरण कार्ड है उसके द्वारा वो कहीं भी अपना टीकाकरण
1: अगर
0: लगवा
1: हमारे
0: सकती
1: पास
0: है
1: टीकाकरण कार्ड है, हम उसको लेकर जाते हैं तो कहीं पे भी करवा सकते हैं, जहां
0: जी
1: पर
0: जी
1: भी
0: हाँ।
1: सुविधा हो,
0: और
1: जहां पर
0: बच्चा
1: भी कैंप
0: बच्चे की
1: हो।
0: एज एज के हिसाब से टीकाकरण कंप्लीट हो रहा है लगवाना जरूरी है, बच्चा वहाँ उस समय वहाँ पर मौजूद नहीं है लगवा नहीं सकता, जहाँ पर है तो वहाँ वो ये सुविधा गवर्नमेंट से ले सकते
1: तो
0: हैं।
1: जैसे कि यहाँ पर निशुल्क है वैसे ही वहां पर भी
0: हर
1: निशुल्क ही
0: जगह निःशुल्क
1: रहेगा।
0: सरकार द्वारा टीकाकरण निःशुल्क दिया जाता है
1: ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं
0: जी
1: माला जी।
0: जी
1: और एक महिला स्वास्थ्यकर्ता के रूप में आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियां दी और काफी कुछ बताया। हमारी महिलाएं इस चीज को ध्यान से सुने और सुनिश्चित करें कि उनके परिवार में, उनके आसपास भी अगर कोई महिला गर्भवती है तो ये टीकाकरण होना बहुत आवश्यक है,
0: जी
1: और कोई
0: बिल्कुल
1: नवजात शिशु है तो उसको भी टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि सरकार जो है उनका भी यही उद्देश्य है कि हर बच्चा स्वस्थ हो और हर माँ भी स्वस्थ हो। माला जी,
0: जी
1: आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
2: अभी आपने जाने माला सैनी जी के विचार और विषय था टीकाकरण का महत्व एवं आवश्यकता। बहनों हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं इस विषय पर जानते हैं ज्योति जी के विचार और बात करते हैं ज्योति जी से।
3: आज बहनों हमारे साथ ज्योति जी हैं जो हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे काम करती हैं। तो ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप हमें बताएंगी कि आप हमारी महिलाओं के लिए क्या क्या काम करती हैं जिससे उनका विकास हो सके?
4: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगी जवाहरलाल नेहरू के शब्दों से। उन्होंने कहा था, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती हैं तो

0: परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। मैं भी अपने समाज में एक ऐसी छोटी सी पहल कर रही हूँ जिसमें मैं महिलाओं और लड़कियों को सिलाई शिक्षा आदि सिखाकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही हूँ।
1: तो इसके लिए क्या करती हैं आप?

0: तो इसके लिए क्या करती हैं आप, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए आप क्या क्या काम करती हैं?
1: ऐसी महिलाएं, कुछ हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जो विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है, किसी तरह की कोई योग्यता लेने में सक्षम नहीं है, मैं उनको निःशुल्क शिक्षा सिखाती हूँ, सिलाई सिखाती हूँ, कढ़ाई, उन्हें कुछ ब्यूटी से संबंधित जैसे कि पार्लर का थोड़ा सा काम सिखाती हूँ, जैसे कि आत्मनिर्भर बना सके, मेहंदी है, बाकी जो और भी संबंधित चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों में सिखाती हूँ जिससे कि वो खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर सके।
0: तो मतलब ऐसी महिलाओं को आप कैसे इकट्ठा करती हैं, या उन तक कैसे पहुँचती हैं, या वो सब आपके पास किस तरीके से पहुँच सकती हैं या पहुँचती हैं?
1: मैंने इसके लिए काम किया है, मैंने उनके लिए सेवा रखी है निःशुल्क। उस निःशुल्क सेवा में मैं उनसे एक सेवा लेती हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले एक या दो अपने मोहल्ले से बच्चों को, महिलाओं को इकट्ठा किया। मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये चीज आपके लिए निःशुल्क करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, ऐसी दो महिलाओं या दो लड़कियों को लाना होगा मेरे पास जो सक्षम नहीं है इन सब चीजों को कर पाने में, आज मतलब एक आर्थिक स्थिति से भी मजबूत नहीं है।
0: जी,
1: इस तरह से मैंने एक सीरीज बनाई है,
0: मतलब एक चेन बनती चली गई कि आपके पास सिर्फ
1: चेन बनती चली जा रही है। हाँ, मैं आपसे फीस नहीं लूंगी, लेकिन इसके बदले आपके लिए मेरे काम करना होगा, किसी दो महिलाओं को या दो लड़कियों को मेरे पास लाकर उन्हें इस मुहिम में शामिल करना होगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए।
0: तो मतलब इस तरीके से वो मल्टीपल में आपके साथ जुड़ती चली जाए, जैसे दो
1: चेन बनती जा रही है,
0: चार के बाद उन दो से कहा तो वो और दो को लाई तो छह हो गए, फिर दो लाई तो वो आठ हो गए, इस तरीके से। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको भी जो है अपना जो काम करती हैं उसमें भी सफलता मिलती चली जाएगी, और जो महिलाएं हैं जो आगे आना चाहती हैं और किसी परेशानी की वजह से नहीं आ पाती हैं, उनको भी एक मंजिल मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। और क्या करती हैं आप
1: बाकी? और महिलाओं के लिए अगर कोई गवर्नमेंट से स्कीम जुड़ी हुई होती है, एक तो हमारे समाज में थोड़ी सी कमी है, पूरा इंडिया डिजिटल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा है सरकार उन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए क्या क्या कदम बढ़ा रही है, वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से अनजान है। मैं उनकी उस चीज में मदद करती हूँ।
0: अच्छा, तो मतलब पूरी प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो जो रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं,
1: रास्ते खुले हुए हैं, बिल्कुल
0: उसको भी आप अपना सकते हैं और अपना आगे बढ़ सकते हैं।
1: हाँ, जैसे कि मैं हूँ, मैं उनको निःशुल्क सिखा तो पा रही हूँ, लेकिन मैं उनको सर्टिफाइड नहीं कर पा रही हूँ। मैं उनसे कहती हूँ आप गवर्नमेंट की स्कीम ज्वाइन कर लीजिए, PMKY है, जो महिलाओं को या फिर महिलाओं को नहीं बल्कि वो छात्रों को, हर तरह के छात्र छात्राओं को एक स्किल सिखाते हैं, वो एक डैश लगाते हैं उसमें, वो उनको शिक्षा देते हैं। तो मैंने आप सर्टिफिकेशन के लिए वो ज्वाइन कर लीजिए, आपके जो रास्ते हैं थोड़े और आसान हो जाएंगे, जब भी आप कहीं काम करने जाएंगे तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा उनको दिखाने के लिए।
0: तो इस तरीके से
1: इस मुहिम में जैसे मैं अकेली हूँ, तो ऐसे एक बहुत लंबी चैन बनती जा रही है, तो फिर मैंने इसको डिवीजन कर दिया इसका, कि जिनको मैंने सिखाया है उनके अंदर 10 लोगों को कर दिया, उसके अंदर 10 लोगों को कर दिया, इस पर चीजें और आसान हो जा रही है, क्योंकि मैं अकेले बहुत हो जा रहा है तो डील कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है।
0: तो आपने
1: एक्सपीरियंस और बना दिया है कि आप अपने मोहल्ले की 10 को इकट्ठा कर लीजिए, आप अपने मोहल्ले की इकट्ठा कर लीजिए, इस तरह से।
0: ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है जो आप महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर रही है। और कुछ बताना चाहेंगी कि क्या क्या करती हैं आप हमारी महिलाओं के लिए?
1: अभी तो मेरा कार्य इसी क्षेत्र में चल रहा है,
0: मतलब उनको पढ़ाना, उनको जो छोटी छोटी सी जो छोटे लोग आप कह सकते हैं,
1: उनकी उनको जानकारी देना। कभी कभी कुछ समाज का कुछ वर्ग ऐसा होता है जो उनका अपना मानना है कि हमारे लिए ये चीजें इतनी सही नहीं है, मैं शिक्षा की ओर नहीं जा सकती, या मैं ब्यूटी पार्लर जैसे कोर्स या सिलाई की तरफ नहीं सीखना चाहती, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं उनको एक आपके पास की ना लघु उद्योग होगी, तो मैं उनको एक छोटी छोटी जानकारी देती हूँ कि आप ये छोटी छोटी चीजें हैं जो घर से कर सकते हैं, छोटे छोटे कार काम है, जैसे कि कटोरियां बनाना है, या फिर घर बैठे कुछ इस कढ़ाई वाले कार्य काम आते हैं, आप उनसे संबंध करके उनसे ये चीजें कर सकती हैं, घर पे घर बैठ के आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं, अपने घर पर खड़ी हो सकती
0: हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं जो आप घर पर ही बैठ कर सकते हैं
1: जो छोटे पैसों से हो जाते हैं
0: आत्मनिर्भर बन

0: सकती हैं और परिवार की भी मदद कर सकती हैं, इस तरीके के काम आप उन्हें सिखाती हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है जो आप।
1: मैंने एक चीज और कोशिश कर रही हूँ मैं अभी, कि जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब आर्थिक रूप से संपन्न है,
0: जी
1: कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रही है, तो फिर मैंने वो उनके लिए ये, इसके मैंने भी काम नहीं किया है, मैं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई हूँ, कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पास पैसा है, आप पास 50 होगा,
0: मतलब खुद तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी और अपने बिजनेस,
1: आपके पास पैसा है आप उसका इस्तेमाल करिए, प्रॉफिट लीजिए, जो और महिलाएं हैं बच्चियां हैं जो करना चाहती हैं, जी इससे ये होता है ना कि एक महिला के साथ कार्य करने में बिल्कुल हिचकती नहीं है,
0: जी जी
1: वो हाँ उसका विश्वास पड़ता है
0: और उनको रोजगार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा ना, जब भाई काम करेंगी तो रोजगार तो मिलेगा ही, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है जो आप करती हैं महिलाओं के लिए, और जिसमें आप और आगे बढ़ रही हैं, जिस बात को सोच रही हैं या कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छी
1: है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको भी लाऊं, जो नहीं पढ़ा लिखा वर्ग है उसको भी लाऊं।
0: चलिए आपने आज हमारी महिलाओं को ये सारी चीजें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीपी जी।
2: बहनों खाना बनाते समय अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें तो हमारे खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। पकोड़ों को बनाते समय बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा मिला दें, इससे पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। पुरानी या बासी ब्रेड को पीसकर आप एयर टाइट कंटेनर में रख लें और बाद में इसका इस्तेमाल कटलेट बनाने में कर सकते हैं। चावल बनाते समय उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की मिला दें और इससे चावल सफ़ेद और खिले खिले दानेदार बनते हैं। किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते समय उसमें आधा चम्मच चीनी डालें। चीनी कैरमलाइजर होकर ग्रेवी को अच्छा कलर देगी और स्वाद भी बढ़ाएगी। और अगर पूड़ियों को बेलकर तलने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, इससे वो फ्राई करते समय ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। और सूजी के हलवे के लिए सूजी को भूनते समय इसमें आधा चम्मच बेसन मिला लें, इससे हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो आप बनाइए पूड़ी के साथ हलवा और दीजिए शिल्पी को इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार शिल्पी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी माधुरी के साथ।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम युवावाणी में। और आज प्रोग्राम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों आज प्रोग्राम की शुरुआत होगी आपसे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज है आपका खास सेगमेंट आपकी पसंद। तो चलिए देर न करते हुए आपको सुनवाते हैं ये सॉन्ग, जिसे चुना है और सुनने की फरमाइश की है आप सभी दोस्तों ने। ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, ऋचा, गुड़िया, सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे ने इसी गीत को पसंद किया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: दोस्तों आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, तो चलिए उनको याद करते हुए जानते हैं उनके योगदान के बारे में। साथियों बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने झारखंड में आदिवासी समाज की दिशा और दशा बदल दी। दोस्तों उन्होंने भारतीय जमींदारों और जागीरदारों को ब्रिटिश साम्राज्य के कानूनों से मुक्ति दिलाने का काम किया। इसके अलावा लोगों को शिक्षा और सहयोग का महत्व समझाया। दोस्तों बिरसा मुंडा ने सामाजिक स्तर से राजनीतिक स्तर से लोगों को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करने का प्रयास किया, और जब अंग्रेज़ों को उनसे खतरा महसूस हुआ तो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, और इसी कारण सन 1900 में आज ही के दिन यानी कि 9 जून को

साथियों इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क ने। तो आइए सुनते हैं ये सॉन्ग।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: दोस्तों, जैसा कि डेली प्रोग्राम में किसी न किसी युवा से की गई बातचीत को शामिल किया जाता है, और आज भी हमने एक GNM छात्रा से बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं।
4: आपका नाम अनुग्रह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं
5: जी? मैं एक GNM की स्टूडेंट हूँ,
6: जनरल नर्सिंग मिडवाइफी।
4: जी, तो आपने GNM कोर्स क्यों चुना है?
6: GNM कोर्स ताकि मैं जो लोगों का स्वास्थ्य है उनसे संबंधित उनका ख्याल रख पाऊँ और लोगों की सेवा कर पाऊँ।
4: इस कोर्स में किन किन विषयों को पढ़ाया जाता है?
6: जी, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है इसमें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होती है, और पीडियाट्रिक होती है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है। इन सारे विषयों से हमें जानकारी मिलती है, इंसान की मानसिक संबंधित जो स्थितियां होती हैं हम उन सब चीजों से जानकारी ले सकते हैं, उनको उनकी चीजों को समझ सकते हैं। एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है पेशेंट और नर्स के बीच, उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। और बच्चों से संबंधित जानकारियां मिलती हैं हमें, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, हर चीज के बारे में, डोज कितना देना होता है, दवाइयां कैसे देनी होती है, उनका ध्यान कैसे रखना है, डाइट से लेके हर चीज का ध्यान हमें रखना होता है इसमें।
4: जी जी, क्लिनिकल ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या क्या सीखा?
6: जी, क्लिनिकल ट्रेनिंग में हम सीखते हैं कैथ कैसे लगाते हैं पेशेंट को, सारी बेन्स विजिबल होनी चाहिए, और मेडिकेशन किस किस टाइम से करनी है, कैसे करनी है, बीपी वगैरह है, वाइटल्स हैं, वो कैसे करनी है हमको, और मेडिकेशन का जितना भी टाइमिंग होती है वो सारी हमको मेंटेनेंस करनी होती है, डाइट मेंटेनेंस करनी होती है, और जो हमारे IG होते हैं, सैंपल होते हैं, वो सारे हमको सिखाए जाते हैं इसमें।
4: जी, तो आपने किसी अस्पताल में इंटर्नशिप वगैरह की है अभी?
6: जी नहीं, अभी मेरा कोर्स सेकंड ईयर में हूँ मैं, अभी चल रहा है, इंटर्नशिप में नहीं आई हूँ।
4: कोई प्रोजेक्ट वगैरह या प्रैक्टिकल वगैरह जो आपका हुआ हो?
6: हाँ जी, प्रोजेक्ट भी बनवाए जाते हैं हमको, कम्युनिटी पोस्टिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों की मानसिक स्थिति और हम उनको मानसिक स्थिति से संबंधित जानकारी भी दे सकते हैं, और हेल्थ के बारे में भी जानकारी देते हैं, हेल्थ से उनको प्रमोट करते हैं, हेल्थ अपनी मतलब प्रिवेंट करना इलनेस से कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको हर बीमारी से संबंधित सारी जानकारी देते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के द्वारा।
4: जी जी, तो आप GNM के बाद क्या करना चाहेंगी, नौकरी, BSc नर्सिंग या फिर कुछ और?
6: GNM के बाद जी मैं PBSc करूंगी, पोस्ट BSc, जो कि इसके बाद होती है GNM के बाद, उसके बाद मैं MSc करूंगी।
4: जी जी, अच्छा, अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरह से रिएक्ट करती हैं, कैसे संभालती हैं सिचुएशन को?
6: ये अगर पहली चीज तो सबसे मेन चीज ये है, अगर हमें उस सिचुएशन को हम संभाल सकते हैं हम तभी संभालेंगे, वरना हम इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बुलाएंगे बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए।
4: जी जी, आपको क्या लगता है कि एक अच्छी नर्स के अंदर क्या गुण होने चाहिए?
6: एक अच्छी नर्स के अंदर सबसे पहली चीज होनी चाहिए सिंपलिसिटी। आप किसी भी जाति धर्म या रंग रूप को देखकर उनको जज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, पेशेंट या किसी भी इंसान को जज नहीं करना है, उनसे गलत तरीके से बिहेव नहीं करना है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए नर्स के अंदर।
4: जी, और ऐसी कोई बात जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें?
6: हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी नर्सिंग एक बहुत अच्छा अपने आप में एक बहुत अच्छा कोर्स है, जिससे हम इंसानों से जुड़ पाते हैं अच्छे तरीकों से, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना पाते हैं, और उनकी स्थितियों को संभाल पाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन जो हम नर्सिंग में सीख पाते हैं। एक अंदर से सुकून भी मिलता है कि हाँ हमारी वजह से ये इंसान कितना सही हुआ है, मतलब हमको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है जब सामने से हमें दुआएं मिलती हैं, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं।
4: जी जी, एक अच्छा और समाज सेविका का काम आप कर रही हैं, तो अच्छा ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट है और वो GNM करना चाहता है तो वो किस तरीके से जा सकता है GNM के लिए?
6: जी बिल्कुल, ऐसा है ना, पहले ऐसा था कि पहले तो हम विदाउट एग्जाम हमारी स्कूल की जो परसेंटेज थी उसके अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू देकर पास आउट करके हम GNM में एडमिशन ले रहे थे, बट एट दैट टाइम जो सीन चल रहा है उसमें हमें एक AKUT का एग्जाम है उसको क्रॉस करना है, देन हम GNM में एडमिशन ले सकते हैं।
4: जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। आपकी हॉबीज क्या क्या हैं?
6: जी मेरी हॉबीज तो वैसे तो मैं एक लेखक हूँ, मैं लिखती हूँ अपने विचारों को, लिखती हूँ कविताएं लिखती हूँ।
4: जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप कविताएं लिखती हैं, अगर आप कोई कविता जो आपने लिखी हो सुनाना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: ये मैंने अपने दोस्त की, मेरी मतलब बहुत प्रिय मित्र है जो अपने सबसे खास होती है, मैंने ये उसके लिए लिखी थी
4: जी, कि
6: तेरा साथ बड़ा सुहाना सा लगता।

0: रिश्ता बड़ा जादुई सा लगता है, आंखें नम हो जाती हैं, क्यों तेरा जिक्र लबों पर रहता है, क्यों इस दिल को तेरे सिवा कोई अपना सा ना लगता है, तेरा साथ बड़ा प्यारा सा लगता है, तेरा जिक्र नींदों में भी चल रहा है, तेरा साथ फरिश्ता तो नहीं अजूबा है, कोई खुदा का लगता है, तो साथ है जिंदगी बड़ी प्यारी सी लगती है।
1: जी बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई है, उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आई होगी।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: जीएनएम के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए, और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: अभी आपने सुनी ये बातचीत, और अब आपको जोड़ते हैं आपकी पसंद के गीत से। और इस सॉन्ग को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य, मानवी मौर्य, और इसी गीत को पसंद किया है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी दोस्तों की पसंद पर ये सॉन्ग।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: दोस्तों अब जानते हैं आज के सवाल का जवाब। साथियों, हमने आपसे पूछा था कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर है सन 1951 में। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं राम कुमार रेवाड़, सुभाष, लालगिरी गोस्वामी, जगदीश धाकड़, राजकुमार, उदयवान पाल, सुदर्शन शाह और हीरामणि वर्मा। तो ये थे हमारे सही जवाब देने वाले श्रोता। तो ये था सवाल और जवाब। और अब आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सॉन्ग की ओर, और इसे सुनने की फरमाइश की है फरीदपुर से देव राजपूत, दीपेश राजपूत और एकांश ने। इसी गीत को पसंद किया है कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, इसी गीत को हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी पसंद किया था। हमारे श्रोता हैं ग्राम ढकिया केसरपुर से एके राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश चंद राजपूत, पप्पू सत्यपाल वर्मा, भगवान दास राजपूत, रवि कुमार वर्मा, श्रीपाल यादव, मनोज कुमार सक्सेना और छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी। तो इसी गीत के साथ अपनी रेडियो दोस्त माधुरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी माधुरी के साथ 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान बाड़ी, हैडलपाल और राकेश कुमार शर्मा के साथ।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आवाम राकेश भैया राम राम।
2: राम राम राम राम। हेडलपाल भैया का हाल चाल है? बड़े खुश नजर आ रहे हो आज।
1: भैया हाल चाल तो बिल्कुल ठीक हैंगे, और बात रही खुशी की तो इस समय काम धंधो कम चल रहा है, धान की बेड़ डाल दी है, बस खेतन की तैयारी में लगे हुए।
2: अच्छी बात है भैया। देखो धान की फसल तो अगर बात करिए घर के क्षेत्र में एक मुख्य फसल के रूप में हमारे किसान भैया करते हैं। कुछ भैया हमारे डाल भी चुके हैं बेड़ और कुछ तैयारी में लगे भाई हैं।
1: बिल्कुल सही बात है भैया। धान की जो रोपाई है ना, अगेती मध्यम और पिछेती तीन तरीका से होता है, ऐसे जैसे कि गेहूं की बुवाई होती है। अब जब बताओ बात करनो तो शुरू कर दें। आज सवाल ना लाए कोई?
2: बिल्कुल भैया, सवाल बिल्कुल समय के हिसाब से हम लेके आए हैं। तो आज सवाल लेके आए हैं कि मानसून आने से पहले खेतन की मेड़बंदी करनो क्यों जरूरी है।
1: सवाल तो बड़ा चुनिंदा लेके आए हो, और जो इस समय हमारे जो किसान भैया हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं मेड़बंदी करने की। अब जैसे फायदा क्या होता है वो जो तो हमारे भैया बहन ही बता देंगे कार्यक्रम सुनने के बाद।
2: बिल्कुल भैया, और जब कार्यक्रम

0: समाप्त करने से पहले चाको जवाब बता पाएंगे, हमारे जो भैया लोग हैं उसको मिलान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे जो किसान भैया है ना, आजकल देखने में आ रही है अपने खेतों में बड़ा अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरक है उनको प्रयोग कर रहे हैं।
0: भैया बात आपने सही कही, उसको कारण क्या है, देख कुछ हमारे भैया ऐसे हैं जो कि देखा दूनी नकल उतारते हैं। अगर हमारे पड़ोसी में सुंदरलाल भैया ने अगर उनने खाद में खेतन में जो खाद डाली है तो वह हमें डालने जरूर है, तो हमारे खेत का जरूरत है या ना जरूरत है,
1: बात से ज्यादा तो डालनी है कम ना डालनी है।
0: हाँ, क्योंकि जब सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि उनके पैदावार ज्यादा हो जाए और हमारे खेत में पैदावार कम हो जाए, तो जबकि इस प्रकार की बात होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है राकेश भैया, ज्यादा से ज्यादा खाद डालन से फसल अच्छी ना हो, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है कि हम अगर अपने खेतन की पहले मिट्टी की जांच करवा लें और बाकी अनुरूप अगर रासायनिक उर्वरकों को डालेंगे तो हमारी जेब भी कम ढीली होगी और फसल भी बढ़िया होगी।
0: हेडपाल भैया बात आपने बहुत अच्छी कही, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कई बार जावाद के लिए कह चुके हैं कि हमारे जो किसान भैया हैं अपने खेतन की मिट्टी की जाँच जरूर करवाएं, क्योंकि जब वे मिट्टी की जाँच करवा लेंगे तो उनके लिए जानकारी मिल जाएगी कि हमारी जो भूमि है कौन कौन सी फसलों के हिसाब से है, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, तो वह हिसाब से खेतन में चीज डाली जाएगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और बाकी अनुरूप अगर खाद उर्वरक डालेंगे तो फसल तो भैया बढ़िया होगी, साथ ही साथ जो आज हमारे खेतन की उर्वरा शक्ति है दिन पर दिन घटत जा रही है वो भी ना घटेगी, और पर्यावरण प्रदूषण भी काफी मात्रा में हो रहा है, बहुत अधिक कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से वो भी बाऊ से भी हमारे भैया बहन बच जाएंगे।
0: देखो भैया वैसे तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भैया लोगों से जय कहना चाहते हैं कि खेतन में कोशिश जा करो कि जो रासायनिक खादें हैं उनको प्रयोग कम से कम करो,
1: और जो देसी खाद हैं हरी खाद हैं उनको उपयोग ज्यादा से ज्यादा करो।
0: बिल्कुल भैया, देखो अब तो हमारे किसान भैया बहुत जागरूक हैं, और बहुत से हमारे भैया ऐसे हैं जो कि जैविक खाद को निर्माण करते हैं, बेचते भी हैं, अपने खेत में भी डालते हैं, तो हमारे किसान भैया उसको प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, अगर वे चाहते हैं तो जैविक खाद को निर्माण भी कर सकते हैं
1: और बाकी बिक्री करके मुनाफा भी पा सकते हैं और अपने खेतन की भी पूर्ति कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, उससे हुए कहा कि हमारे खेतन की जो ताकत है वो बनी रहेगी। दूसरी चीज जो उपज होती है और हम रासायनिक चीजों को प्रयोग करते हैं तो भी उपज से हमारे शरीरों पर प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: जब हम देसी चीजों को अपनावेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक ठाक बनो रहिए
1: और हमारे जो खेत है उनमें बीमारियां भी कम लगेंगी। राकेश भैया बातें तो अपनी चलती रहेंगी, आज मालूम है दिन का है।
0: बिल्कुल भैया बात आप सही कह रहे हो, हमारे भैया लोग लाइन में लगे होंगे,
1: कोशिश कर रहे होंगे फोन लगाने की, क्योंकि आज मंगलवार को दिन है।
0: हाँ भैया, मंगलवार दिन एक विशेष कार्यक्रम जाते हेलो किसान, तो इसमें हमारे किसान भैया फोन करके उनके मन में जो शंकाएं होती हैं बाकी समाधान प्राप्त करते हैं,
1: तो शुरू करें कार्यक्रम।
0: बिल्कुल भैया, देर का बात की है, देखते हैं हमारे कौन से भैया फोन लगाए रहे हैं।
2: हेलो किसान वाणी।
1: हेलो किसान, मैं आपकी बात हो रही है, कहाँ से और कौन अन्नदाता बोल रहे हैं हमारे भाई?
2: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं सर।
1: जी आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, खेतीबाड़ी कैसी चल रही है?
2: खेतीबाड़ी सही चल रही है, मक्का पकी खा रही है, गन्ने की सिंचाई हो रही है इस समय।
1: अच्छा, और आगामी खरीफ में कौन कौन सी फसलें उगाने की तैयारी बना रखी है आपने?
2: ये धान है, उर्द है, बाजरा है
1: जी,
2: और मक्का की फसल तो तैयारी है
1: जी। तो आज आपका हेलो किसान में फोन लगा है, क्या पूछना चाहेंगे?
2: हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें खरीफ की फसल बोने से पहले खेतों की अगर तैयारी करनी चाहिए।
1: जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल रखो है, आज हम आपको बताना चाहेंगे मुन्ना सिंह जी कि सबसे पहले तो कोई भी फसल बोए हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए।
2: जी हाँ।
1: और इस समय बहुत अच्छो समय है, आगामी समय में जब तक हमारी खरीफ की फसलों की बुवाई होगी तब तक आप मिट्टी की जांच आसानी से करा सकते हैं, तो ये सबसे पहला काम है कि आप अपने खेतन की मिट्टी की जांच कराएं, और उसके अनुरूप ही जैसे ही हमारी जो संतुति आती है जांच केंद्र से उसी के अनुरूप अगर आप उर्वरकों को प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी खेती बढ़िया होगी। और राकेश भैया दूसरी बात, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को ये ध्यान रखनी है खरीफ की फसलों में कि अपने खेतों की मेड़बंदी करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल भैया, हेडलपाल भैया देखो जवाब आपने सही बताई, क्योंकि बात हुई है का अगर मेड़ हमारी मजबूत होंगी तो बरसात को पानी इतना उतना आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है, हमारे जो अन्नदाता भाई हैं वो अपने खेतों में देसी खाद भी डालते हैं, रासायनिक उर्वरक भी डालते हैं, अगर पानी निकलेगा तो समझ लो बाको जो खाद को प्रभाव है, खाद को जो रस है, खाद में जो पोषक तत्व होते हैं वे बह जाएंगे।
0: बिल्कुल भैया, और ठाकुर साहब लाइन पे हैं, ठाकुर साहब तो खैर हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, अक्सर इनके फोन आते

0: रहते हैं। तो ठाकुर साहब, और कोई मन में शंका आपके?
1: जैसे हम उन बोते हैं उसमें, जैसे 1 एकड़ में कितना हमें बीज डालना चाहिए?
2: जी देखिए, 500 ग्राम बीज 1 बीघा खेत के लिए पर्याप्त रहते, तो 500 ग्राम बीज के हिसाब से आप अपने उर्द की बुवाई करें, जिससे आपकी उर्द की फसल बढ़िया होगी। और हाँ, बीज उपचार जरूर कर लें। जो भी हमारी दलहनी फसल है जिसकी हम बुवाई करते हैं, तो पहले उसका हम बीज उपचार जरूर से जरूर कर लें। जो भी दलहनी फसल हम बुवाई करते हैं, चाहे वो मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है, मटर है, तो उसको एक राइजोबियम कल्चर आता है और उसी के नाम से मिलता है, जैसे मूंग का कल्चर, उड़द का कल्चर, चना का कल्चर, मटर का कल्चर। तो राइजोबियम कल्चर ले लें उड़द का, उससे बीज उपचार कर लें। 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचार करके तभी उड़द की बुवाई करें।
1: कितना समय लग जाएगा?
2: देखिए, उड़द की बुवाई के लिए जब आपकी अब बरसात हो जाए, और उसके बाद अभी तो समय है उड़द की बुवाई के लिए, जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हो तब आपको उड़द की बुवाई करनी है। इस समय अभी उड़द की बुवाई को समय ना है। जी, और क्या पूछना चाहेंगे?
1: बस यही जानकारी बहुत है, आपने खेती के बारे में मुझे जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद हेलो किसान में फोन करने के लिए मुन्ना सिंह जी। हेलो।
3: हेलो सर जी, नमस्ते।
2: नमस्ते, कौन अन्नदाता बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: अमृता महोली सीतापुर से,
2: थाना महोली से। क्या शुभ नाम?
3: इंद्रपाल मिश्रा
2: जी। क्या शुभ नाम है आपका?
3: इंद्रपाल मिश्रा।
2: इंद्रपाल मिश्रा जी, जी आज आपका हेलो किसान में फोन लगा हुआ है, क्या जानकारी पूछना चाहेंगे?
3: धान की नर्सरी लगाए थे अभी 15 दिन हुए
2: जी,
3: आज देखा तो कहीं कहीं बहुत पीली हो गई है
2: जी,
3: तो इसका कारण कौन सी दवाई डालें?
2: जी बहुत अच्छो आपने सवाल पूछो है इंद्रपाल जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, आप ऐसा तो नहीं है पानी धूप में लगा देते हो?
3: तो टंकी आवत है, वो है थोड़ी बेड़ रहा तो टंकी वही में पानी चलते रहा।
2: हाँ, तो सबसे पहली कमी तो आपने ये की है कि जो धान की बेड़ है राकेश भैया, हमको धूप में पानी न लगाना चाहिए, शाम के वक्त ही पानी लगाना चाहिए।
3: अच्छा,
2: दूसरी बात ये है कि अगर पानी सुबह तक बाह में भरो रह गया है तो बाय हमें सुबह निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर वहां में पानी भरो रहेगो तो हमारी बेड़ जो है पीली पड़ जाएगी और गल भी जाएगी, क्योंकि धूप में पानी गर्म हो जाता है।
3: अच्छा जी,
2: तो इस बात को ध्यान रखें, पानी आप दिन में ना भरने दें।
3: अच्छा, शाम को लगाया करें?
2: जी शाम को आप पानी लगाएं, और पानी भी रोज ना लगाएं।
3: अच्छा जी।
2: हाँ, उसमें पानी कभी निकल भी जाए और कभी उसमें लग जाए, तो इस तरीके से नमी आपको भरपूर बनाए रखनी है। कितने भी जगह में आपने पौध डाली है?
3: 10 बिस्वा है।
2: 10 बिस्वा है, उसमें 2 मुट्ठी यूरिया।
3: अच्छा,
2: पानी में घोल करके छिड़काव और कर दीजिए उसमें।
3: अच्छा,
2: तो आपकी जो धान की बेड़ है वो हरी भरी हो जाएगी।
0: बिल्कुल भैया, और जो बात बताई गई आपको कि पानी लगाते समय जब आपको विशेष ध्यान रखनी है, कि हमारे और अन्य भैया जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें कि दोपहर के समय में पानी बिल्कुल ना लगाएं। उसे खुद कहा है जो धूप पड़ती है, धूप की वजह से पानी गर्म हो जाते हैं और उससे हमारी बेड़ पीली पड़ जाती है, और कभी कभी तो जा होता है कि हमारी बेड़ मारी जाती है
2: जी।
0: तो इस बात को भैया ध्यान रखें, और मिश्रा जी आप भी इस बात को ध्यान रखो कि आगे क्योंकि पानी आपको और भी लगाने होंगे, तो दोपहर के समय में आपको पानी ना लगानी है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रपाल मिश्रा जी हेलो किसान में फोन करने के लिए। हेलो किसान।
4: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्ते, हमारे कौन अन्नदाता भाई बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
4: मैं विजयपाल यादव ललुआ लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूं सर।
2: जी विजयपाल जी, कैसे हालचाल है आपके?
4: ठीक है सर
2: जी। आज हेलो किसान में आपको फोन लगा हुआ है, क्या जानकारी लेंगे?
4: जानकारी ये लेना चाहते हैं कि धान की बेड़ बहुत ही हमने पौध डाल दी है।
2: अच्छा,
4: तो उसमें कुछ ऐसा उपाय बताए खरपतवार ना हो गए, और इसके अलावा खेत की तैयारी कैसे करें जो कि शुद्ध पैदावार बढ़िया हो जाए हमारी, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर।
2: जी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, आज लग रही है कहीं बाजार हाट जा रहे हैं और भीड़ भाड़ में है आप।
4: जी आज हम सीतापुर आए हैं तो ये भीड़ भाड़ में फंसे हुए हैं।

0: जी
1: इसीलिए।
0: हम आपको बता दें विजयपाल जी,
1: जी सर,
0: सबसे पहले तो अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें आप।
1: जी
0: अभी रोपाई में समय है, और खेतन की मेड़बंदी अच्छे तरीका से कर लें। जो भी आपके पास गोबर की सड़ी खाद है राकेश भैया, वो अपने खेत में डाल दें अंतिम जुताई पे, और गहरी जुताई कर दें जिससे मिट्टी में जो है आपकी खाद है वो मिल जाए।
1: जी सर।
0: और रही बात आपके खरपतवारों की जो धान की बेड़ में उगे हैं, उनको उखाड़ने की कोशिश करें जिससे वो पूर्णतया से उखड़ जाएं, और जो रोपाई करते समय उनके अवशेष हमारे दूसरे खेत में जहां हम रोपाई कर रहे हैं वहां ना पहुंचे।
1: जी सर।
0: हाथ से ही उनको निकालने की कोशिश करें बेड़ से। और रही बात उसकी खेत की तैयारी की, तो हमने आपको बताया कि अंतिम जुताई कल्टीवेटर हल से करें जिससे जो भी देसी खाद है या फिर जो रासायनिक उर्वरक है वो आपके खेत में अच्छी तरीका से मिल जाए, और कंधेर करके बढ़िया तरीके से अपनी रोपाई करें जब आपकी बेड़ 21 से 25 दिन की हो जाए।
1: जी जी सर।
0: तो ये आपको तैयारी करनी है इस समय।
1: जी सर।
0: जी और क्या जानना चाहेंगे?
1: और सर नहीं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, बस यही जानकारी लेना चाहते थे।
0: जी
1: उसके बाद में धान की रोपाई के बाद में कौन सी दवाई डाली जाए उसमें?
0: धान की उसके लिए तो देखिए आपके 2,4-D आती है
1: जी,
0: वो 2,4-D का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे खेत में खरपतवार ना उगे, वो भी रोपाई के तुरंत बाद।
1: अच्छा जी।
0: यानी कि 48 घंटा के अंदर अंदर जो खरपतवार की दवा है 2,4-D वो लग जानी चाहिए।
1: जी सर।
0: जिससे आपकी फसल में खरपतवार नहीं उगेंगे, और पानी की मात्रा खेत में कम ना हो, पानी में ही आपको जो 2,4-D नाम की दवा है वो लगानी है।
1: जी सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आज हेलो किसान में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद सर आपको भी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए।
0: नमस्ते राकेश भैया। इस तरीका से हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं उन्होंने जान लिए अपने फोन कॉल्स के जवाब, और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी खेती बाड़ी को बहुत अच्छे तरीका से अब वो करेंगे।
2: बिल्कुल हरिपाल भैया, हमारे साथ ही फोन करके उनके मन में जो शंकाएं होती हैं बाकी समाधान प्राप्त करते हैं, और जा कार्यक्रम के लिए हमारे अन्य भैया जो हैं सुन रहे होंगे, वे उन जानकारी को लाभ उठाएंगे। और हमें लग रही है हमारे कोई साथी फोन लगाए भी रहे हैं, देखो कौन भैया हैं।
0: कौन हमारे अन्नदाता बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
3: हम बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम पतरा कला से।
0: जी कौन से जनपद का गांव है आपको?
3: ये बरेली जनपद का है गांव।
0: अच्छा, तो बंटू जी ये बताइए क्या करते हैं?
3: खेती बाड़ी का काम करते हैं और पालते हैं।
0: जी तो खेती बाड़ी में बताइए कौन सी फसलें अब खरीफ में उगाएंगे आप?
3: मतलब कैसे तैयारी करी जाए खेत की, जिससे हमें मतलब घास उस ना हो, दलिया करके फसल हमारी तैयार हुई है।
0: जी बंटू जी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो खेत में आप धान रोपेंगे इस समय गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में उसकी जुताई कर दें, और जो भी आपके पास देसी खाद है उसको उस खेत में डाल दें और मिट्टी में मिला दें जिससे आपको जो खेत है वो तैयार हो जाएगा, और जो पहली जुताई इस समय करें गर्मी में वो गहरी जुताई करें। और दूसरी बात यह है कि उस खेत की जो मेड़े हैं वो अच्छी से आप बांध दें जिससे कि बरसात हो तो आपके खेत में पानी भर जाए, और आपके खेत को पानी जो है वो दूसरे के खेतों में ना जाए, क्योंकि आपने अपने खेत में देसी खाद डाली होगी या फिर आने वाले समय में देसी खाद डालेंगे और भी रासायनिक उर्वरक डालेंगे, तो उनको जो प्रभाव है उनकी जो मात्रा है वो दूसरे के खेत में पानी के साथ ना बहे, इसलिए आपको अपने खेतों की मेड़बंदी अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से आप अपने खेत की तैयारी करें और कंधेर बढ़िया करके लगाएं, और जैसे ही आपकी बेड़ 21 से 25 दिन की हो जाए आप रोपाई कर दें, क्योंकि फिर हमारी पैदावार गिरने लगत हैगी। ठीक है प्रजापति जी?
3: ठीक है साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपने हेलो किसान में कॉल की और आपने अपनी समस्या को समाधान पाओ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया लोगों अब आप सुन रहे कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हमारे भैया लोग फोन करके खेती संबंधी उनकी जो समस्याएं ही बाकी समाधान प्राप्त कर रहे हैं, और जहाँ कार्यक्रम की प्रस्तुति ही हमारे भैया गौरव सक्सेना जी की। और देखो हैदरपाल भैया, खेती बाड़ी में काम तो हमेशा कोई ना कोई लगे।

0: रहे थे, हमें जो जानकारी मिली ही कल लाभ हमारे तक घूमने के लिए गई है।
1: गए तो भैया आपके पड़ोसी होने को कोई फायदा ना है।
0: क्यों का हुई वो?
1: आपके घर गए हम तसला लेने को, भैंसिया ने लड़ोरी तोल ली।
0: अच्छा,
1: तो बाय चुन दे थे तसला इसलिए लेने गए कि बा में थोड़ो मसालो बन जातो, लेकिन आप तो मिले ना और तसलो ना मिलो।
0: भैया देखो, अब आप हमारे दोषी ठहरा रहे हो, बात तो खैर ना कह सकते हैं क्यों ठहरा रहे हो, लेकिन जो संचार के साधन है ये क्यों बनाई गई हैं?
1: हाँ जो तो बात सही है, लेकिन तुम समय ना हो। लेकिन राकेश भैया, भौजी ने एक शिकायत जरूर करी।
0: जब आपकी हमें बड़ी खुशी होती है कि जब जब आप जाते हो आपकी भौजी आपसे शिकायत करती हैं, जाको मतलब है आपसे प्रेम ज्यादा है उनके लिए।
1: जाके तो हम भैया ना कह सकते, लेकिन जो शिकायत करी बाको बड़ो अफसोस है। वो
0: क्या शिकायत करी हमको बताओ, पता तो चले।
1: आप जान लेते जा, लोकगीत के माध्यम से खुद समझ जाओगे आप।
0: अच्छा।

0: राकेश भैया।
1: हाँ भैया,
0: सुन ली आपने जेई शिकायत करी?
1: कोई बात नहीं, शिकायत उनने करी, खैर शिकायत उनकी जायज है, होगा। दरअसल अब हम पिछले टाइम पे गए है हरिद्वार, तो हमने पूछी हुई अपनी चलाऊंगा, तो उन्होंने कि हम ना जाइए, तो भैया हम अकेले चले गए।
0: अच्छा,
1: तो इसीलिए उन्होंने शिकायत करी होगी कि हमारे लिए लेके ना आई गई ही।
0: बात सही है, लेकिन हमारी बात सही निकली,
1: बात पाई सही निकली। अब भैया अगर चाहो तो इसके संग संग एक लोकगीत और हो जाए।
0: बिल्कुल भैया, देर का बात की
1: तो भैया लोगों के लिए सुन बात है एक प्यारो सो लोकगीत।

0: अधरी शर्मा के स्वर में अभी आपने बहुत ही मधुर लोकगीत सुनवाओ राकेश भैया।
1: और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी भैया लोगों ने लोकगीत सुनो हुए है उनको मनोरंजन जरूर हो भैया।
0: बिल्कुल। और देखो राकेश भैया, अब घड़ी टिक टिक करके शाहरुख करने लगी कि अनुमति लेने की बेला आनवारी है। कार्यक्रम के शुरू में आपने एक सवाल पूछो, हमें उम्मीद है कि हमारे भैया बहन ने बाको उत्तर सोच लो हुए।
1: हाँ भैया, तो बाको उत्तर को जरा मिलान करवाए दो। हमने सवाल जो पूछो हो, कि मानसून आने से पहले खेतन की जो मेड़बंदी है बा क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है?
0: देखो भैया, बाकी मेड़बंदी हमारे जो खेत हैं उनकी मेड़बंदी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने खेतन में जो उर्वरक डालते हैं देसी खाद, चाहे वो रासायनिक उर्वरक हो, अगर मेड़ हमारी ऊंची होगी तो बरसात में पानी भरे हो और बाको जो पोषक तत्व है वो हमारे खेत में ही रह जाएंगे, और मेड़ अगर पतली है, कटी फटी है।

0: बाकी जो पोषक तत्व हैं वे निकल जाएंगे और खाद और उर्वरक देने को कोई फायदा ना हो।
1: बिल्कुल भैया, देखो जो बात हमारे खैर किसान भैया जानते हैं, बहुत से साथी हमारे ऐसे हैं जिनने खैर हमारे पास में जवाब भी सही लिख के भेजो है। अगर बात करें नसीहत की, तो हेडलपाल भैया नसीहत के रूप में आप क्या कहना चाहोगे?
0: नसीहत के रूप में तो भैया यही कहना चाहेंगे कि अपने खेतन में जो रासायनिक खाद है उनको उपयोग कम से कम करें, यानी कि संतुलित मात्रा में ही रासायनिक उर्वरक को प्रयोग करें और जो कीटनाशक दवाएं उनको भी संतुलित प्रयोग करें।
1: और इसके साथ ही साथ हमारे भैया जो हैं मिट्टी की जांच करवा लें, क्योंकि इस समय उनके पास में मिट्टी की जांच कराने के लिए मौका है।
0: बिल्कुल, उचित समय भी चल रहा है। मिट्टी की जांच कराने के बाद ही खरीफ की फसलों की उगाई करें तो अपने खेतन से भी अधिक फायदा होगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित बनो रहेगा।
1: भैया बात आपने पर्यावरण की करी ही, तो अगर कुछ दिन पहले हमने पर्यावरण दिवस मनाओ हो, हमारे बहुत से भैया लोगों ने पेड़ पौधा लगाई है, आप क्या कहना चाहोगे? क्या पेड़ लगाए के उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई गई?
0: ना भैया, जब तक उनकी देखरेख सही तरीका से ना होगी तब तक हमारी जिम्मेदारी पूरी ना होतेगी। अब पेड़ लगाए के हमारे बहुत से भैया तो ऐसे हैं भूल गए होंगे कि कब्बा में पानी लगाना है, कब्बा में खाद लगानी है। जब हम उसमें खाद और पानी ना लगावेंगे तो बस हमें फायदा ही कहाँ मिलेगा।
1: बिल्कुल भैया, जब आपको ध्यान रखें, पेड़ लगाए हैं तो उनकी सेवा भी करें। और अगले कार्यक्रम में कुछ नई नई जानकारी के साथ में आपसे फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए अपने भैया राकेश शर्मा
0: और अपने भैया हेडलपाल सिंह के लिए अनुमति दीजिए, कीजिए स्वीकार हम दोनों की।
1: राम राम, राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे किसानवाणी, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: एक बार फिर ग्राम जगत कार्यक्रम में सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। राकेश भैया।
1: हाँ भैया,
0: हमने सुनी आजकल आप तरबूज खरबूज बहुत खा रहे हैं।
1: भैया देखो, मौसम के हिसाब से जो मौसमी फल हैं हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं उनको सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज है का कि हम जो मौसम में हमें फल उपलब्ध हो रहे हैं, बाकी गुणवत्ता बाकी कीमत से ना आंकना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: चाहे कीमत भले कम हो, लेकिन उसके जो पोषक तत्व हैं, जो हमारे शरीर के लिए उसकी विशेषताएं हैं, उनको लाभ तो हमारे मिलेगा ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भैया इस समय जो तरबूज खरबूज खाने को आनंद भी कुछ और है, और दूसरी बात ये है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना निकलते हैं तो पानी की कमी हो जाएगी, तो पानी की पूर्ति के लिए ये रसीले फल बहुत ज़रूरी हैं।
1: ऐसे में पानी की कमी बिल्कुल ना होनी चाहिए। अगर बाहर जा रहे हैं, पानी की बोतल वगैरह पास में है, पानी अपने संग में लेके चलो। उसके विकल्प के रूप में इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो खीरा है, कहीं आप बाहर जा रहे हो, बैग में अपने आप खीरा भी रख सकते हो।
0: बिल्कुल सही बात है
1: कि हम कुल मिला के हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, शरीर में ठंडक बनी रहा
0: है। सही बात है। और दूसरी बात यह है कि गर्मियों के दिनों हमें एक बात को और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पानी पिए तो ताज़ा हो, और भोजन खाएं तो ताज़ा हो, यानी कि शुद्ध पानी पिए और ताज़ा भोजन करें, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोग ना होंगे।
1: बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि अगर हम कोई बाजार से सब्जी वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं, तो जो ध्यान रखो कि हमारे भोजन में जो पौष्टिकता को ध्यान रखनी है हमारे लिए, जो पोषक तत्व से भरपूर भोजन ही हमारे लिए ग्रहण करना चाहिए,
0: जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ बनो रहेगा, साथ ही साथ हमारी जो काम करने की क्षमता है उसमें भी किसी प्रकार की कमी ना होगी। तो इन बातों को हमारे भैया बहनों को विशेष ध्यान रखने हैं अपनी पौष्टिकता पर। और राकेश भैया, आज कौन क्षेत्र भ्रमण में आए गए?
1: हाँ भैया, गए हैं। आज हम एक विद्यालय के प्रबंधक जी मिले थे।
0: अच्छा।
1: उनसे हमने बातचीत करी है बालिका शिक्षा को लेके। अगर आप कहो तो भैया सुनवा में
0: का बात है भैया, अब हम जान लें।
1: बिल्कुल साथियों, आज हमारे पास है एक विद्यालय के प्रबंधक जी, उनके पास बैठे हैं। चूंकि आज हमारा बातचीत का विषय है बालिका शिक्षा से संबंधित, तो कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। भैया जी,

0: आपको नाम क्या है?
1: मेरा नाम राम अवतार है।
0: घर के जगाँव में बैठे हुए हैं, जगाँव को क्या नाम है?
1: ग्राम भोजपुर।
0: जो भोजपुर गांव कौन से विकास खंड में आते?
1: विकास खंड आलमपुर जाफराबाद लगता है।
0: और जिला?
1: बरेली।
0: हम देख रहे हैं कि आप विद्यालय का संचालन काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, और हम बात करें इस विद्यालय की शुरुआत की, तो कितनों समय हो आपके लिए जो विद्यालय चलाते हुए?
1: विद्यालय चलाते हुए तो काफी समय हो गया, लेकिन इसकी मान्यता जो है वो 2003 में हुई थी। वैसे विद्यालय चलाते हुए मैं इसको लगभग 30 साल हो चुके हैं।
0: कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक की शिक्षा आप प्रदान कर रहे हो?
1: हम अपने विद्यालय में बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण कराते हैं।
0: कुछ अनुपात मानो जाते कि इतने बच्चन पे इतने अध्यापक होने चाहिए, तो इस प्रकार की अपने विद्यालय में क्या रूपरेखा है?
1: जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से तो रेशियो हमारा कम ही रहता है। अगर देखा जाए तो 40 बच्चों पे एक टीचर की आवश्यकता है। वैसे यहाँ 40 बच्चे हो नहीं पाते हैं। शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण होती है क्योंकि बच्चे कम ही रह पाते हैं, क्योंकि देहात क्षेत्र है।
0: अगर हम बात करें आपसे बालिका शिक्षा की, तो पहले के समय में और आज के समय में बालिकाओं की शिक्षा में क्या अंतर देखने के लिए मिलते हैं?
1: पहले जब हमने विद्यालय स्टार्ट किया था तो हम ये देखते थे कि लोग बालिकाओं के साथ भेदभाव किया करते थे। हम लोगों से बात करते थे घर पे जाके और लड़कियों को पढ़ाने की बात करते थे, तो लोग कहते थे ये क्या करेगी, ये तो चूल्हा चौका ही करेगी, इसलिए लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्हें हम समझाते थे कि ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में समानता का अधिकार है और महिलाओं को और लड़कियों को बराबर से शिक्षा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि उस समय ये चीज़ एक सामान्य सी बात थी कि लड़कियों की शिक्षा की तरफ जागरूकता का अभाव था। अगर हम बात करें आज की, तो आज बालिका शिक्षा की क्या स्थिति है?
1: तो पहले से बेहतर है।
0: किसी प्रकार का भेदभाव, जैसे लड़कन के लिए अच्छे विद्यालय में पढ़ाओ जात हुए, लड़कियों के लिए अच्छे विद्यालय में ना पढ़ाओ जात हुए, क्या ऐसी स्थिति आज देखने को मिलती है?
1: आज गांव समाज में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इतना जरूर है, अगर थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति है तो वो चाहता है कि बच्ची को भी और बच्चे को भी समानता के रूप में अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, और सही विद्यालयों में एडमिशन लोग करा रहे हैं, हो रहे हैं।
0: अच्छा, बात करें कहीं ना कहीं महिलाओं को एक निम्न दृष्टि से लोग देखते हैं कि इन्हें शिक्षा ज़्यादा अच्छी मत कराओ। जैसे पता चली कि बच्चा को तो हम काफ़ी उच्च शिक्षा प्रदान करा रहे हैं, लड़की ने जहाँ हमारी 10वीं या 12वीं करो, बाकी बाद में हम सोचते हैं कि इसके लिए हम बैठा लें, कहाँ तक उचित है इस प्रकार के विचार?
1: ये विचार गांव वालों की अपेक्षा देखा जाए तो उनके तो उचित ही नज़र आते हैं, क्योंकि लड़कियाँ जो है आगे की शिक्षा ग्रहण करने में, बाहर निकलने में थोड़ा सा उन्हें दिक्कत रहती है, इसलिए वो बिठाना बेहतर समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि 100% अगर लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो उच्च शिक्षा के लिए मुश्किल से 20% ही लड़कियाँ निकल पाती हैं, बाकी जो है इंटर करके बैठ ही जाती हैं।
0: तो हमारी बालिकाएं आज विभिन्न प्रकार के कोर्स कर रही हैं, ऐसे कोर्स कर रही हैं जिसमें हमें कंप्यूटर की, लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम डिजिटल सशक्तिकरण की बात करें, तो आज के समय में क्या लड़कियाँ कंप्यूटर वगैरह इस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण कर रही हैं?
1: जी हाँ, बिल्कुल कर रही हैं लड़कियाँ। आज क्षेत्र शिक्षा से निकल करके और आगे जैसे सरकार की योजनाएं होती हैं उसके हिसाब से कोर्स भी करना चाहती हैं, और वो कर भी रही हैं।
0: अच्छा भाई साहब, अगर बात करें आप पे कितने बच्चा हैं?
1: हम पे 4 बच्चे थे।
0: क्या क्या?
1: हम पे एक लड़का है और 3 लड़कियां थी। और
0: तो अगर हम बात करें आपकी जो बेटी रही, आपने अपनी बेटी के लिए कहाँ तक पढ़ाओ?
1: सबसे बड़ी बेटी को मैंने इंटर कराया था, उसके बाद उसे कंप्यूटर का कोर्स कराया था, और उसके बाद जो मझली लड़की थी उसे ग्रेजुएशन कराया, और जो सबसे छोटी लड़की थी उसके लिए हमने डी फार्मा कराया, जो आज मेडिकल का संचालन कर रही है।
0: अच्छा, अगर बात करें बेटा की, तो बेटा क्या कर रहे हैं?
1: जनसेवा केंद्र है उनके नाम, तो जनसेवा केंद्र चला करके समाज सेवा कर रहे हैं।
0: तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपने अपने बेटा और बेटी को एक प्रकार की डिजिटल शिक्षा दी, बेटा को भी आपने जनसेवा केंद्र खुलवाओ, विभिन्न प्रकार की जो हमारी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो जनसेवा केंद्र के माध्यम से संचालित होती हैं, आपने अपनी बेटी को डी फार्मा करवाओ। कहीं ना कहीं आपके मन में इस प्रकार के विचार तो ना आए कि हमें क्या जरूरत है डी फार्मा करवाने की, हम तो बेटी की शादी कर देंगे, वो तो अपने ससुराल में पहुंच गए, घर गृहस्थी के काम धंधा देखेगी, क्या विचार रहे आपके मन में?
1: अगर व्यक्ति शिक्षित है, शिक्षा का माहौल है घर में, और मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपनी लड़कियों को अगर जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ाऊंगा, और मैं MBBS कराना चाहता था, लेकिन मैं आर्थिक स्थिति के पिछड़ा होने के कारण आगे नहीं ले जा पाया।
0: 30 साल से आप एक ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाए रहे हैं, आपने ये भी बताई कि 30 साल पहले इस गाँव की स्थिति ज़्यादा अच्छी ना थी लड़कियों की शिक्षा को लेकर, तो काफ़ी संघर्ष करने पड़े हुए आपको इस विद्यालय को संचालन करने में। आज क्या स्थिति है इस गाँव की, अगर बात करें लड़कियों की शिक्षा को लेकर?
1: लड़कियों की शिक्षा को लेकर के आज भी स्थिति

0: बेहतर है पहले की अपेक्षा। अब हम जब भी जाते हैं किसी के यहाँ और उन्हें समझाते हैं तो उनकी समझ में आता है और वो लड़कियों को पढ़ाने को इच्छुक हो जाते हैं।
1: अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में जो माहौल है विद्यालय का, वहाँ जहाँ देखने को मिलती है जो हमारी अभिवादन की शैली है, जो संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं उसको प्रभाव कम देखने को मिलता है। आपके पढ़ाए हुए बच्चा या बच्चियाँ, उनकी हम बात करें, आज जब विद्यालय में आती होंगी आपसे या आपकी मुलाकात होती होगी, तो क्या स्थिति अभिवादन को लेके है? वे आपको अभिवादन करती हैं, पहचानती हैं?
0: यहाँ तक के आती हैं तब तो बात होती है उनसे, और आती हैं तो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करती हैं, मतलब बहुत इज्जत करती हैं, सम्मान करती हैं और एहसान भी मानती हैं कि सर जी आपने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ आकर के हमारे गांव को शिक्षा से रूबरू कराया और जगाया, वरना हम तो कभी पढ़ नहीं पाते। कुछ लड़कियाँ तो कभी कभी बाहर से फ़ोन भी आ जाते हैं कि सर जी आप कैसे हैं, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाए तो लोगों को पता लग जाए, तो लोग कॉल करके आज भी लड़कियाँ खूब पूछती हैं।
1: बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं विद्यालय के रूप में, क्योंकि कहा गया है जो व्यक्ति हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है गुरु के रूप में, तो गुरु का स्थान तो सर्वोपरि माना गया है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए, कोई पद की शोभा बढ़ाए, लेकिन उसकी सीढ़ी जो है वो विद्यालय से होकर के ही जाती है। रामतार भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छे विचार बालिका शिक्षा एवं डिजिटल सशक्तिकरण से संबंधित दिए। हमारी आपकी बातचीत को आकाशवाणी के माध्यम से जो भी भैया बहन सुन रहे होंगे, जरूर आपके द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। आपने आकाशवाणी टीम के साथ अपने अनुभव साझा करे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया बहनों, अभी आपने क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता के अंतर्गत बालिका शिक्षा के ऊपर रामतार जी के विचार सुने। आप विद्यालय प्रबंधक हैं और आपसे बातचीत कर रहे भैया राकेश कुमार।
3: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
4: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: राकेश भैया।
1: हाँ भैया।
2: अब जी बताओ, अब क्या सुनवा रहे हो अपने भैया बहनों को?
1: बहुत भैया कमेंट करते हैं हमारे पास में। भैया कमेंट के नाम तो हम आज शामिल ना करेंगे भैया लोगों के लिए, लेकिन सुनवाते हैं प्यारों से लोकगीत।
2: अच्छा, क्योंकि समय को अभाव है।
1: बिल्कुल भैया।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: संदेश से पहले हमारे भैया बहन ने जो लोग सुनो उसके लिए स्वर दो अश्वन सक्सेना ने। और अब घड़ी टिक टिक करके शाहरुख खान लागी है कि अनुमति लेने की बेल आ चुकी है। अगले कार्यक्रम में फिर बातचीत करेंगे अपने भैया बहन से। तब तक के लिए अपने भैया हेडलपाल सिंह
3: और अपने भैया राकेश शर्मा को दो अनुमति। भैया बहनों
2: राम राम, राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104 FM पर। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। राजू पुत्र मदनलाल निवासी जोगीपुरा कोतवाली बदायूं सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री आकांक्षा, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, कद 5 फीट और रंग गोरा है, 11 मजबूत जिस्म, चेहरा अंडाकार, आंख गोलाईदार, काले लंबे बाल हैं जो सलवार सूट पहने हुए हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बदायूं को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति संबंधित एक और सूचना सुनिए। नरेश पुत्र निरंजन निवासी ग्राम गुजरौला थाना फैजगंज बेहटा बदायूं सूचित करते हैं कि इनकी पुत्री कविता, जिनकी उम्र 28 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, शरीर समान, चेहरा लंबा, सिर और बाल समान हैं और जो सलवार कुर्ता पहने हुए हैं, 15/4/2026 से लापता हैं। जिस किसी व्यक्ति को मिले वो प्रभारी निरीक्षक थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम तो श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा। बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।
0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104 FM पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूत पूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि ये कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने

0: ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास 1 और जन विश्वास 2 के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास 3 के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए, एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
3: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
4: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।

0: प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। आज का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्रीटर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं व समाधान। और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
5: प्रायोजक
6: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
6: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
5: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
6: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें।
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
7: बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
6: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
5: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
6: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD।
6: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
5: गंगवार हॉस्पिटल,
6: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
8: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
9: सभी श्रोताओं को और पंडित जी आपको मेरा नमस्कार।
8: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कब डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और कब उन्हें कोई नई जानकारी मिले।

0: हालांकि विषय हमारा पुराना ही है आज भी, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि हमारे श्रोता कुछ नया जान पाएंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साहब, आज का विषय हमने एक बार पुनः रखा है, समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता। चूंकि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की बात है, तो ये भी जान लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब कि समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे किन्हें कहा जाए।
1: जी देखिए, जो नॉर्मल गर्भा पीरियड है,
0: जी गर्भकाल
1: है 37 वीक से,
0: यानी 37 सप्ताह से 42 सप्ताह का जो समय है,
1: जी वो नॉर्मल एक गर्भकाल का इंसान का है
0: जी।
1: लेकिन जो 37 सप्ताह से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं,
0: अच्छा,
1: वो प्रीमेच्योर बच्चे कहलाते हैं
0: जी। जी
1: तो प्रीमेच्योर में भी अलग अलग कैटेगरी है
0: जी,
1: जैसे कि लेट प्रीटर्म जो 37 से 32 सप्ताह के बीच में है,
0: अच्छा,
1: जो 32 सप्ताह से और पहले पैदा हो जाते हैं वो प्रीटर्म,
0: अच्छा,
1: और जो मान लीजिए 28 वीक्स या उससे पहले ही पैदा हो जाते हैं वो वेरी प्रीमेच्योर।
0: तो क्या डॉक्टर साहब ये संभव है 28 सप्ताह से पहले जो बच्चा पैदा हो रहा है वो स्वस्थ जीवन जी पाएगा?
1: देखिए, इन बच्चों को जो परेशानी है वो इस वजह से है कि ये समय से पूर्व पैदा हुए
0: जी।
1: समय से पूर्व पैदा होने में क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग है
0: जी
1: वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने विकसित हो जाने चाहिए।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो इसलिए हर अंग शरीर का अपने आप में एक कठिनाई पैदा करता है
0: जी। जी
1: जो बच्चा समय से पूर्व पैदा है, जो सर्वाइवल संभव है आज की तारीख में
0: जी, अच्छा।
1: और वो बच्चे हमारे यहाँ बच जाते हैं 25 वीक्स एंड 26 वीक्स के
0: जी, जी।
1: तो उससे कम जो और पहले के पैदा हुए बच्चे हैं उनमें अभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ जगह रिपोर्टेड है कि 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चे बच जाते
0: हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो गर्भकाल 9 महीने का कहा जाता है, 9 महीने 9 दिन 10 दिन इस तरह से, उसकी जगह आप बता रहे हैं कि 6 महीने यानी जो 26-24
1: 9 महीने 7 दिन गर्भकाल नॉर्मल माना जाता
0: है। नॉर्मल माना जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आप गर्भकाल बता रहे हैं तो 6 महीने 6.5 महीने का
1: जी जी जी जी 6.5 महीने के जो बच्चे 6 महीने के बच्चे जैसे 24-25 वीक्स के जो बच्चे पैदा होते हैं
0: जी,
1: तो उनमें एक तो सबसे ज्यादा जो कॉमन समस्या आती है कि लंग्स उतने मेच्योर नहीं होते,
0: अच्छा, फेफड़े उतने मजबूत
1: नहीं, हाँ मजबूत नहीं होते कि वो ऑक्सीजनेशन कर। जब तक बच्चा या प्रीटर्म बेबी माँ के गर्भ में
0: जी,
1: तो उसको ऑक्सीजन हुआ, बाकी सारी न्यूट्रिशनल सप्लाई हुई या जो कुछ भी उसको चाहिए वो सब माँ से मिलता है थ्रू ब्लड। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उसके लंग्स काम करना शुरू करते हैं और वो उसको ऑक्सीजन अपने आप उतनी बनानी पड़ती शरीर में कि जो उसका काम चल सके
0: जी, जी।
1: जब लंग्स इमेच्योर होते हैं खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज या नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।
0: अच्छा,
1: तो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसकी सांस तेज चलना शुरू करती है, क्योंकि बच्चा कंपनसेट करने की कोशिश करता है उस प्रीमेच्योरिटी को या लंग की उस इनसफिशिएंसी को जल्दी जल्दी सांस लेके,
0: यानी जो फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने की क्षमता है वो नेचुरली कम,
1: क्षमता तो कम है ही
0: जी,
1: जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस कम है। दूसरा, उस चीज को बच्चा पूरा करने की कोशिश करता है उससे जल्दी जल्दी टैकिपनिया करके,
0: अच्छा,
1: मतलब सांस की गति बढ़ा के
0: ऑक्सीजन की जो जरूरत है
1: रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सर्फेक्टेंट कम है, जिसको कि बोलते हैं न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एनआरडीएस या एचएमडी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, अगर प्रीमेच्योर बच्चे में वो है तो आपको सर्फेक्टेंट एक दवाई होती है या एक पदार्थ या मटेरियल है जो कि आपको उसके फेफड़ों में डालना होता है, जिससे कि वो जो उसकी कमी है उस सब्सटेंस की उसको बाहर से पूरा किया जा सके।
0: डॉक्टर साहब, क्या कुदरती तौर पर ये फेफड़े में मौजूद होता है सर्फेक्टेंट?
1: ये सर्फेक्टेंट कुदरती तौर मौजूद होता है, लेकिन जब बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो उनमें कम होता है। ये 28 वीक ऑनवर्ड्स बनना शुरू होता है अच्छे से, और जो बच्चे 30 वीक्स या 32 वीक्स के ऊपर निकल जाते हैं उनमें इतना जरूरत नहीं रहती
0: जी, जी।
1: लेकिन जो बच्चे 32 वीक्स हैं उनमें हमेशा एक डर रहता है, मतलब ये पता लग चुका है कि अगर इन मदर्स को जिनके बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय से पूर्व पैदा होंगे
0: जी,
1: उनको एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाए प्रॉपर डोजेज में
0: जी,
1: तो लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है।
0: ये जो आप बता रहे हैं दवाइयां बिटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, तो ये माँ को दी जाती है?
1: ये माँ को इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। अगर जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको ये अंदेशा होता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है, तो डेक्सामेथासोन या बिटामेथासोन इंजेक्शन 2 दिन का कोर्स है उसको करके, तो उसमें लंग्स की मेच्योरिटी बढ़ जाती है और इस बात के चांस कम हो जाते हैं कि बच्चे को एनआरडीएस यानी हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो या सर्फेक्टेंट की कम ही पड़ेगा।

0: यानी जो स्त्री विशेषज्ञ है वो ये फैसला लेती है,
1: वो फैसला लेती है अच्छा। कि अगर उनको ये रहता है कि इसमें जल्दी डिलीवरी हो सकती है तो वो माँ को ही लगाते हैं
0: अच्छा।
1: और इसके लगाने के ये तो फायदा है ही लंग्स की मेच्योरिटी, और भी फायदे हैं जैसे कि गट की मेच्योरिटी बढ़ती है और ब्रेन की भी मेच्योरिटी बढ़ती है। और ब्रेन पूरी तरह से मेच्योर नहीं होगा तो हमेशा एक डर रहेगा कि ब्रेन को इंसल्ट ना हो जाए। दूसरी चीज ब्रेन में हेमरेज होने का, जिसको बोलते हैं IVH इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वो होने का डर बहुत ज्यादा रहता है।
0: जी जी जी डॉक्टर साहब, जो आप दवाइयां बता रहे हैं स्टेरॉइड कहा जाता है, और स्टेरॉइड ये कहा जाता है कि बहुत नुकसानदायक होता
1: है। नहीं, ये तो कोर्स ही नहीं, पर्टिकुलर डोजेस दी जाती अच्छा। है वो भी सिर्फ दो दिन के लिए
0: अच्छा।
1: तो ऐसे जैसे स्टेरॉइड नुकसान करते हैं ब्लड प्रेशर में, शुगर में, लेकिन ये स्टेरॉइड बच्चे को आपको हेल्प करने जा रहे हैं। और अगर माँ को शुगर है या माँ को ब्लड प्रेशर है तब भी ये स्टेरॉइड दिया जा सकता है और देना चाहिए
0: अच्छा।
1: जिससे कि बच्चे को फायदा दे सके।
0: यानी अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ ये तय करती है कि जो गर्भवती माता है उसे स्टेरॉइड के रूप में बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन दिया जाना है तो ये उचित है
1: जी,
0: ये बच्चे के हित में।
1: अभी एक दवाई जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट
0: जी जी,
1: वो भी एक्लेम्सिया के मदर्स को पहले देते थे। अब जहाँ पे हमें सस्पेक्ट, हमें डाउट, अंदेशा रहता है कि बच्चे को ब्रेन इंसल्ट हो सकती है, बच्चे को बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, या बच्चे को बर्थ एनोक्सिया हो सकता है, ये डर है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस लेने में कोई दिक्कत करे, तो उन मदर्स को मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जाता है जिससे कि बच्चे में जब पैदाइश होती है तो उनके दिमाग को नुकसान कम होता है।
0: अच्छा, ये बर्थ एस्फिक्सिया और ये जो नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर हमारे श्रोता जानना चाहें इसका मतलब क्या होता है।
1: देखिए, बर्थ एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया का मतलब दम घुटना
0: अच्छा
1: है ना। तो बच्चा पैदा होते समय किसी कारण से अगर ठीक से सांस नहीं ले पाया, जैसे कि पैदाइश में ज्यादा टाइम लग गया
0: जी,
1: या गर्भ में वो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी कम हो गया
0: जी,
1: या बच्चे ने कई बार पॉटी पेट में कर ली, लैट्रिन पेट में कर ली तो वो सांस में ले ली, या बच्चे को ब्लड सप्लाई कम हो गई, फीटल डिस्ट्रेस होने लगा
0: जी। डॉक्टर साहब, ये वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हमारे श्रोता इस बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो कई ऐसी बातें हैं जो कि शिशु पैदा हुआ है उसे देख करके वो समझ सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। और जहां तक इलाज की बात है, एक योग्य चिकित्सक ही इन परिस्थितियों में बच्चे की जान बचा सकता है। जहां तक डॉक्टर साहब चिकित्सा की या इलाज की बात है, तो माँ के पेट में जो बच्चे को माहौल मिलता है, जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ऐसी परिस्थितियां अगर इन बच्चों को नहीं मिलेंगी जो कि 24-25 सप्ताह में पैदा हो रहे हैं, तो क्या ये बाकी इनका जो विकास होना है, शारीरिक विकास होना है या अंगों का विकास होना है, वो संभव हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो किस तरह की मशीनों की आवश्यकता होती है, उनकी क्या भूमिका होती है?
1: जी, अब पंडित जी आपको ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुदरत की बराबर इंसान तो नहीं कर सकते
0: जी।
1: जो माँ से देखभाल मिलती है एक नवजात शिशु या प्रीमेच्योर बच्चे को, वो मशीनों के द्वारा इंसान की कोशिश तो होती है, डॉक्टर्स की कोशिश होती है कि हम वैसा माहौल वो चीज दें
0: जी,
1: लेकिन नियर नॉर्मल पहुंच जाते हैं, एब्सोल्यूट तो उतना नहीं हो सकता। तो ये प्रीमेच्योर बच्चों को रखने के लिए जो हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो ऐसी मशीन है जिनमें कि हम लोग केयर करते हैं, ह्यूमिडिफाई जो आर्द्रता है उसको कंट्रोल करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं,
0: जो नमी
1: ह्यूमिडिटी, हाँ, नमी को और टेम्परेचर तापमान को, दोनों को कंट्रोल करते हैं। और इंक्यूबेटर के बाद एक और दो मशीन है जिनमें डुअल सिस्टम होता है, जो एक पर्टिकुलर कंपनी की, जिसको ओमनीवेड बोलते हैं या जिराफ बोलते हैं, उसमें आप एज ए ओपन सिस्टम भी काम कर सकते हो, मतलब उसे खोल के भी, और दूसरा उसको एज ए इंक्यूबेटर भी यूज कर लेते हैं
0: जी। आपने बताया डॉक्टर साहब कि जिराफ ओमनीवेड, ये शब्द सुना सुनाया सा हो गया हमारे श्रोताओं के लिए। जिराफ के विषय में ये कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अपने पेट में ही रख लेता है वापस, जो एक खाल सी होती है लटकती रहती है, शायद वही आशय होगा इस मशीन से भी।
1: जी जी, बिल्कुल ठीक कहा है। और उसी तरह से जैसे कि जिराफ के अंदर एक पॉकेट होती है, उसमें बच्चे को वो अपने, उसका जिराफ का बच्चा भी बहुत छोटा बच्चा होता है, बहुत प्रीमेच्योर बच्चा होता है, और उस थैली में बच्चा वो रहता है सुरक्षित, माँ उसको दूध पीता रहता है, उसका तापमान कंट्रोल रहता है और माँ उसका ध्यान रख पाती है
0: जी जी।
1: तो उसी को शायद ध्यान रखते हुए इस मशीन का इन्होंने नामकरण किया
0: जी। डॉक्टर साहब, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रयास आप बता रहे हैं कि किया जाता है, जैसा माँ के पेट में गर्भ में बच्चे को जो माहौल और जो वातावरण मिलता है वही वातावरण बच्चे को बाहर मिल पाए, ये प्रयास किया जाता है और प्रयास में सफलता भी मिलती है। एक श्रोता इसी बीच लाइन पर आ गए, डॉक्टर साहब इनकी बात सुन लेते हैं।
1: हेलो
2: हेलो
0: जी, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।

0: जी जी आकाशवाणी बरेली से आपकी बात हो रही है। डॉक्टर कुलदीप गंगवार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। जी जी जी मुन्ना लाल जी, आपकी कॉल का इंतजार रहता है हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: बड़ा रेगुलर श्रोता है ये आपके?
0: जी
1: नियमित श्रोता।
0: जी जी आज क्या प्रश्न है आपका?
2: जी
0: जी
1: जी चलिए एक सवाल। दूसरा
2: दूसरा सवाल ये सर, प्रेमेच्योर बच्चों की देखभाल के लिए किन किन मशीनों की आवश्यकता पड़ती है?
1: अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल आपका?
2: सर एक और जानकारी लेना चाह रहे हैं, प्रेमेच्योर बच्चों में जो नाइट्रिक ऑक्साइड मशीन की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है?
1: चलिए चलिए, देखिए आपके तीन सवाल आपने पूछे। तो प्रीमेच्योर बच्चा कब कहते हैं? जब बच्चे का जो जन्म है वो अगर गेस्टेशनल टाइम है या गर्भा पीरियड है वो 37 वीक से यानी 37 वीक से कम का है तो उस बच्चे को प्रीमेच्योर यानी समय से पूर्व पैदा हुआ बच्चा कहते हैं। दूसरा सवाल था इनका पांडे जी कि क्या क्या समस्याएं आती हैं,
0: मशीन कौन
1: जो मशीनें कौन सी आती हैं? वो तो है, समस्याएं इन बच्चों को इसलिए आती हैं कि इनके जितने अंग हैं वो उतने विकसित नहीं हो पाते जितने समय के साथ हो जाने चाहिए। अब जब ये विकसित नहीं हो पाते तो हर अंग अपनी दिक्कत देता है, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत आती है सांस लेने में जिसको कि HMD बोलते हैं, ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है, कई बार हैमरेज होने का डर रहता है, ऐसे आंतों में दिक्कत आती है दूध पचाने में, खासतौर से अगर माँ का दूध ना दिया जाए इन बच्चों को, ऊपर का दूध दिया जाए तो NEC यानी नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर रहता है। ऐसे इन बच्चों का तापमान नियंत्रण करने में दिक्कत आती है, तापमान नियंत्रण करने में इसलिए उन मशीनों में रखा जाता है जिसमें कि बंद जो मशीन होती है जैसे इंक्यूबेटर्स, तो जिनमें कि आप तापमान और नम जो ह्यूमिडिटी है दोनों को नमी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इनको आपको जो दवाइयां हैं बड़े लिमिटेड दवाइयां लगानी पड़ती और दूसरा बहुत स्लोली लगानी पड़ती है, तो आपको और इन्फ्यूजन पंप्स की जरूरत पड़ती है, तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक पंप्स हैं सिरिंज में। फिर इनको मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद इनको अक्सर बच्चों को जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी वगैरह की जरूरत होती है। फिर बच्चों को इनको आपका अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है तो फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत, वेंटिलेटर्स भी नियोनेटल डेडिकेटेड वेंटिलेटर, मतलब जो सिर्फ नवजात शिशु में ही इस्तेमाल होते हैं, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों में ही इस्तेमाल होते हैं, वही वेंटिलेटर्स इन बच्चों को प्रयोग में लाने चाहिए, जैसे कि बेबी लॉक वेंटिलेटर्स है, VN500 है, जिनमें कि 1 ml टाइडल वॉल्यूम आप नापते हो, क्योंकि जो बच्चा 600 ग्राम का पैदा हुआ है उसको टाइडल वॉल्यूम चाहिए आपको 2.5 ml 3 ml का, क्योंकि जो 6 ml पर kg के हिसाब से टाइडल, तो 2.5-3 ml एक्यूरेट एयर को नापना एक मशीन के लिए भी चैलेंज होता है। तो जो मशीन न्यू डेट्स में ही इस्तेमाल होती है वो मशीन की आवश्यकता होती है। फिर इन बच्चों को टेम्परेचर कंट्रोल करने स्पेशल वेंटिलेटर्स जो कि डेडिकेटेड है आपके न्यूनेटल केयर के लिए। और जहां तक आपने सवाल किया है, इनको सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कई बार आपका इकोकार्डियोग्राफी वो मशीन होना चाहिए बेड साइड, जिसमें कि इन बच्चों को अक्सर समस्या होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस की यानी PDA की, तो PDA हुआ, NEC हुआ, फिर अब बाद में इनको जरूरत पड़ती है आंखों के चेकअप के लिए या हियरिंग की जरूरत पड़ती है, हियरिंग इनकी स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि इनकी हियरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ROP होने का डर रहता है, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। इनको खून की कमी होने का डर रहता है, इसको बोलते हैं एनीमिया और प्रीमेच्योरिटी। तो ये इस तरह की समस्याएं आती हैं इनको कि डिफरेंट मशीन। जहां आपने सवाल किया INO का, INO प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये INO जो इस्तेमाल होती है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी वो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है, जो कि टर्म बेबी में खासतौर से उन बच्चों में जो जिनकी पैदाइश मुश्किल से हो, जिसको हम बोलते हैं बर्थ एनोक्सिया बर्थ एस्फिक्सिया, उन बच्चों में जरूरत पड़ती है, या उन बच्चों में जो कि फेफड़ों में गंदा पानी ले लें जिसको बोलते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। तो बर्थ एस्फिक्सिया और मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बच्चों में ये मशीन की जरूरत पड़ती है। तो परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो नवजात शिशु वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि फ्लक्चुएटिंग होता है उसका ऑक्सीजन लेवल, आप उसे टच करो या उसका सैंपल लो तो उसकी ऑक्सीजन गिरने लगती है और उसको कई बार ऑक्सीजन उसका SpO2 लेवल मेंटेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो लंग्स को ब्लड जा रहा है वो बहुत कम जाता है, लंग्स की तरफ इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लंग्स को ब्लड कम पहुंचता है तो शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती। तो ये सिलेक्टिव पल्मोनरी वैसोडायलेटर है, मतलब ये लंग्स को जो

0: ब्लड जा रहा है उन ब्लड वेसल उन धमनियों को उन नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि लंग्स को ब्लड ज्यादा जाता है और बच्चे को ऑक्सीजन बढ़ाने में आसानी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी जो अक्सर प्रीमेच्योर बच्चों में कभी जरूरत पड़ती है, वरना जाता है टर्म बेबी में और उन बच्चों में जो पैदा होने के समय जिनको मुश्किल आती है, या उन बच्चों में जो पैदा होने से पूर्व या पैदा होते समय फेफड़ों में गंदा पानी ले लेते हैं।
1: जी, और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी?
2: एक प्रश्न और है सर, जो अखबार में निकलता ना बगैर खून लिए क्लोरवीन का, तो वो सर कौन सी मशीन है जो बगैर खून लिए सीरम क्लोरवीन पे हो जाता
0: है? वो उसके लिए एक मशीन आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलोनोमीटर। आपका स्किन से या फिर ईयर लोब्यूल से आप उसको अगर रीडिंग वहां से नाप सकते हैं, उससे आपको एक पीलिया कितना ये आइडिया लगता है, लेकिन उस मशीन से ये पता नहीं लगता है कि इसमें डायरेक्ट कितना है इनडायरेक्ट कितना है। अच्छा, और तो प्रीमेच्योर बच्चों की समस्याएं ये होती है, और एक बहुत बड़ी समस्या प्रीमेच्योर बच्चों में होती है इन्फेक्शन होने की, खासतौर से सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से तरह तरह के इन्फेक्शन बड़ी जल्दी होते हैं, और कई बार इन बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है।
1: जी
0: ठीक है,
1: जानना है,
2: बहुत बहुत जानकारी आने के लिए डॉक्टर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं जो एक साधारण व्यक्ति के शायद समझ से परे हों, लेकिन आप उनके उत्तर जान लेते हैं, प्रश्न भी बता देते हैं। डॉक्टर साहब इसी बीच एक और श्रोता लाइन पर है, इनकी समस्या सुन लेते हैं।
0: जी,
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए अपना प्रश्न बताएं।
0: हेलो,
3: राजपुर कला से बोल रहे हैं साहब,
1: बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: जी, आज हम जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने रेडियो पर सुनी ही कि रेडियो हेल्पलाइन में समय से पहले पैदा भाई बच्चन के बारे में बताई जाएगी।
1: जी,
3: तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे बच्चा 8 या 7 महीना को जन्म हो जाए,
1: जी,
3: तो बाकी मतलब सही तरीका से घर पे ही जन्म हो और वो मतलब सही सांस वास सही ले रहे हो, लेकिन अच्छी तरीका से जैसे तंदुरुस्ती ना बच्चा एकदम बढ़वार पे सही होता है ना खा रही है, तो जाके लिए अब हमें क्या करने हो जो डॉक्टर साहब से थोड़ी सलाह लेना चाह रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब लाइन पर है, अगली आवाज डॉक्टर साहब की।
0: जी, ऐसा है जो आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा समय से पूर्व पैदा हो गया है, तो इसका वजन कितना कितना समय से पूर्व पैदा हुआ?
3: लगभग 8 महीना को जन्म है होगा।
0: और वजन कितना है इसका?
3: वजन तो ऐसी हो जाए मेरी ना चाहे 120 के करीब।
0: देखो, जो बच्चे 1 किलो 600 ग्राम से कम वजन के होते हैं वो अपने आप दूध पीने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को दूध आपको पिलाना पड़ेगा या तो चम्मच कटोरी से या फिर हम लोग कहते हैं एनजी फीडिंग यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से। तो तीसरा तरीका है कि इनको पलैदी से दूध पिला सकते हैं, तो माँ का दूध ही इनको पिलाना चाहिए, अगर ऊपर का दूध पिलाएंगे तो आप संकट में फंस जाएंगे। तो माँ का दूध अगर 1 किलो 1.25 किलो का बच्चा है तो इसको आप करीब कितने दिन का हो गया?
3: लगभग हो चुका है 22 दिन को।
0: 22 दिन का हो गया, तो इसको करीब 1 किलो पे 160-180 ml दूध आपको पिलाना है 24 घंटे में, तो आपको करीब 20-22 ml-23 ml दूध पिलाना है और डेली दूध बढ़ाना है। तो ये बच्चा अपने आप तो दूध पी नहीं पाएगा माँ से डायरेक्ट, तो आपको या तो दूध माँ का निकलवा के चम्मच कटोरी से पिलाना होगा या पलादी से, या आप किसी हॉस्पिटल में तो आपको एनजी डलवा के एनजी फीडिंग करा सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप एनजी इसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पढ़वा लीजिए और घर पे फीड करिए, बाकी इसके तापमान का ध्यान रखिए, इसको इन्फेक्शन ना होने पाए उसका ध्यान रखिए, और अगर 20-25 काल ले गया बच्चा तो बच्चा स्वस्थ हो जाना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, तब तो ठीक है, लेकिन जो गाँव में निप्पल ना आते वो प्लास्टिक वाली
0: ना, उससे दूध नहीं पिलाएंगे, निप्पल वाले आप दिक्कत में आ जाएंगे अगर उससे दूध पिलाएंगे तो।
3: शुरू शुरू में साहब रुई से मतलब जो है घर में गांव में प्यारो अब वो निप्पल से शुरू कर दो है, तो अब पी तो निकलो लेकिन समस्या जो आएगी वो उतनी तरीका से जैसे ना बच्चा एकदम हिच को सोच चलवाता तंदुरुस्त उस तरीका की।
0: देखिए, निप्पल से दूध पिलाएंगे तो दिक्कत ये आएगी, बच्चा निप्पल से दूध पीने में ताकत का इस्तेमाल करता है और जो अपनी ताकत वो दूध पीने में लगा देगा तो वो ताकत उसको वजन बढ़ाने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप नली से दूध पिलाएंगे या चम्मच के टूटी दूध पिलाएंगे तो उसकी वो ताकत बचेगी और वो ताकत भी उसको वजन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो आप अगर निप्पल से दूध पिलाएंगे तो कई खतरे हैं, एक तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा डर है, दूसरा उसको वजन बढ़ाने में दिक्कत आएगी।
3: अच्छा, तो साहब आपकी सलाह के अनुसार चलो दूध की बात जो होगी, लेकिन बागो सही तरीका से तंदुरुस्ती मिले जागे ले, वहां पर कहा करने पड़े हो।
0: देखिए दो तीन चीजें हैं, अगर बच्चे का

किलो आप कुछ बता रहे हैं, तो एक तो उसको एक बार डॉक्टर दिखा के एक उसको विटामिन डी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और आयरन, ये दवाइयां चलनी चाहिए। अच्छा, पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाना चाहिए। तीसरा, उसके बच्चे का तापमान हमेशा, आप अगर बच्चे को छुएं तो बच्चा आपको गर्म लगना चाहिए, अगर बच्चे के हाथ पैर आपको छूने पर ठंडे लग रहे हैं तो बच्चे को मतलब तापमान

0: छातियों के बीच में बच्चे को लगा के रखे लगातार जितना ज्यादा से ज्यादा समय, तो माँ के तापमान से बच्चे का तापमान नियंत्रित रहता है। तो और दूसरा उसका एक दूसरा फायदा है कि माँ दूध पिलाने में भी उसको दूध कम नहीं होगा कभी। तीसरा आने वाले समय में माँ उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में आसानी रहेगी।
1: अरे साहब, आप जानना चाह रहे जैसे अभी तो माँ के दूध केले और बाकी जो हलवा वगैरह आते हैं और ये मतलब भैंस को या बकरी को दूध है जो आगे चले कितने समय बाद हम पिलाना शुरू करें?
0: 6-7 महीने तक, 6 महीने तक आप कुछ नहीं देंगे, सिर्फ माँ का दूध, शहद, गुट्टी, पानी, ऊपर का दूध, बकरी का दूध, शहद या गाय भैंस का दूध, ये कुछ भी नहीं देंगे 6 महीने तक आप।
1: अच्छा, हाँ भाई, जो पड़ोस में है जैसा कह रहे कि बकरी का दूध देने करो, कोई बात ना है तो आप देंगे तो नुकसान दे तो
0: नहीं। बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए नहीं है
2: जी।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, 6 महीने तक माँ के दूध की सिफारिश की जाती है। लेकिन एक बात और भी है डॉक्टर साहब, जब अस्पताल में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत तुल्य है, और
0: अमृत तुल्य है, अमृत है
2: जी, वो अमृत ही पिलाना चाहिए।
0: और हर माँ का दूध बच्चे के हिसाब से होता है, जिस माँ का बच्चा 26 वीक का है उसका दूध उसके बच्चे के हिसाब से।
2: अच्छा, ये
0: और अगर जिसका बच्चा टर्म बेबी है, जिसका फुल टर्म बेबी है, उस माँ का दूध अलग होता है।
2: अच्छा,
0: तो ये टेलर मेड होता है, जो नवजात शिशु है उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी माँ को दूध होता है, और उतना ही होता है जितना जरूरत होती है। तो आप ऊपर का जब दूध पिलाने की कोशिश करते तो माँ का दूध कम हो जाता है, एक चीज। और इसलिए एक माँ दूसरे माँ को दूध, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसको उसी माँ का दूध चाहिए जो उसकी रियल में माँ है।
2: अच्छा,
0: या उसी उतने हफ्ते की डिलीवरी हुई है,
2: यानी जिसके गर्भ से बच्चा उत्पन्न हुआ है उसी माँ का दूध उसके।
0: हाँ, वो टेलर मेड है, जैसे आप दर्जी के पास जाते हैं तो आपके हिसाब से पैंट शर्ट बनाता है, रेडीमेड नहीं है ये, है ना
2: डॉक्टर साहब। ये और बताइएगा, कई बार महिलाएं कहती हैं जो प्रसव के उपरांत दूध नहीं आता माँ को, तो ये बात वाकई में सत्य है? विज्ञान क्या कहता है इस विषय में?
0: देखिए, ये सिर्फ इंसानों की सोच है कि और कोई प्राणी तो ये सोचता ही नहीं है
2: जी,
0: कि दूध कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सब माँ के दूध पे पूरी कुदरत चल रही है, कोई ऊपर प्रकृति ने कोई कहीं छेड़छाड़ नहीं करता। इंसान थोड़ा समझदार हो गया, वो छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, वो अपने फालतू सोचने की कोशिश करता है कि माँ को दूध नहीं हो रहा, कम हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। लेकिन माँ को दूध पर्याप्त होता है, हर माँ को, जिस माँ के 2 बच्चे होते हैं उसको, उस माँ को 2 बच्चे के हिसाब से दूध होता है
2: जी।
0: और जब बच्चे का जैसे शुरू का दूध अलग होता है तो बोलते हैं कि शुरू के 7-8 दिन जो दूध होता है वो अलग होता है
2: जी।
0: और शुरू के 2-3 दिन बिल्कुल दूध अलग होता है, जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं
2: जी।
0: और बच्चा जब 15 दिन को जाता है तो वो दूध अलग हो जाता है।
2: अच्छा,
0: तो वो हर दिन के हिसाब से दूध का क्वालिटी बदलती जाती है, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट, वो सब चेंज होते जाते हैं
2: बच्चे की आवश्यकता के अनुसार।
0: जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी माँ को दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है, उनको विकसित होना होता है
2: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि अभी भी बातें बहुत सी ऐसी हैं जो कि हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमा हमारे सामने है, फिर भी हम चाहेंगे आज के रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम
0: वो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन तुरंत मिल जाए। बच्चे अगर प्रीमेच्योर पैदा होने का अंदेशा है तो माँ को स्टेरॉइड कोर्स के हिसाब से लगना चाहिए, बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन
2: जी।
0: और बच्चा अगर प्रीमेच्योर पैदा हो गया है उसके बावजूद उसे देखभाल ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे उसे प्रॉपर उचित देखभाल मिल सके
2: जी।
0: सिर्फ नर्सरी में रख देने से किसी बच्चे की परवरिश नहीं होती, उस बच्चे को क्या दिया जा रहा है, और उसको जब हम बचा के दे रहे हैं तो उसका सर्वाइवल इंटैक्ट है या नहीं, उसको हम बच्चा अगर जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई विकलांगता नहीं होनी चाहिए, बच्चा हमारी कान सही होना चाहिए, उसकी हियरिंग सुनने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसकी देखने की क्षमता ठीक होनी चाहिए, उसका IQ सही होना चाहिए, वो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आप एक ऐसी जगह, एक ऐसे सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं हों। आप अगर ये सोच के कि नर्सरी में हमने बच्चा रख दिया, सब जगह नर्सरी एक सी है, सब जगह एक सा इलाज होता है, ये गलत एक धारणा है, इस धारणा से बचें। तो और हर बच्चे को शुरू के 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, समय से उसको टीके लगवाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, और कोई घर में अगर किसी को खांसी बुखार है वो बच्चे से दूर रहे,
2: बना के रखे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम शिक्षित हैं तो हमें शिक्षित होने का प्रमाण भी देना चाहिए
0: जी।
2: जो बातें आपने बताई हैं, अगर हमारे श्रोता ध्यान रखते हैं तो उनके नवजात शिशु एक अच्छे युवा, हम ये कहेंगे कि
0: देश के लिए एक अच्छे नागरिक।

0: के लिए अच्छे नागरिक बन करके आगे आएंगे
1: और माँ का दूध पिलाएं तो दो चार आइंस्टीन भी पैदा होंगे देश में।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की उपयोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार पांडे जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
4: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर, एचएफएनसी और ईयर वो मशीनें,
2: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
4: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेड साइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
3: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
4: गंगवार हॉस्पिटल,
3: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। विषय था समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका, शंकाएं व समाधान, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर कुलदीप गंगवार। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर, और श्रोताओं अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
6: वार्ताकार हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी, वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का है। तो आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम।

हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोतो, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं, ऐतिहासिक स्मृतियों या सांस्कृतिक धरोहरों से ही निर्मित नहीं होती, बल्कि उसकी विविध भाषाओं में भी उसकी आत्मा का निवास है। भारतीय भाषाएं हमारी सभ्यता की जीवंत धरोहर हैं, जो सदियों से ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रही है। राष्ट्रीय अस्मिता का अर्थ है राष्ट्र की वो पहचान जो उसे विशिष्ट बनाती है, और भारतीय भाषाएं इस पहचान का सबसे सशक्त आधार हैं। भारत भाषाई विविधता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कश्मीरी और अनेक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा अपने भीतर एक विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपरा और जीवन दर्शन को संजोए हुए है। यही विविधता भारत की शक्ति है, क्योंकि यह हमें अनेकता में एकता का संदेश देती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में भारतीय भाषाओं ने जनता को एक सूत्र में बांधा। महात्मा गांधी ने मातृभाषा में शिक्षा और संवाद को राष्ट्रीय विकास का आधार माना। वहीं रवींद्रनाथ ठाकुर, सुब्रमण्यम भारती और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर बुलंद किया। आज वैश्वीकरण और तकनीक युग में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं का महत्व बढ़ा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भाषाओं की उपेक्षा करें। मातृभाषा व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं की सबसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जो राष्ट्र अपनी भाषाओं का सम्मान करता है, वही अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख पाता है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि इतिहास, स्मृति और सामूहिक चेतना की वाहक भी है। ये कहा जा सकता है कि भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय पहचान की जड़ें हैं। यदि हम अपनी भाषाओं का सम्मान, संरक्षण और संवर्धन करेंगे, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता दोनों सुरक्षित रहेंगी। भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में बसती है, और इन भाषाओं की समृद्धि राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि है। आज के संक में एक वार्ता आपको सुनवाते हैं, जिसका विषय है राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं।

भारतीय भाषाएं भारतीय सांस्कृतिक विविधता में एकता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय भाषाओं में एक ही विचार तत्व की प्रधानता है जो हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहमान है। भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति चेतना राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके माध्यम से भाषा को आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भाषा को आधार बनाकर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। सांस्कृतिक विविधता को दृष्टिगत रखते हुए उसके विकास के लिए निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी विषय को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर उसमें विचलन आ जाता है, विकास की गति प्रभावित होती है। भाषा का गुण है प्रवाहमान बने रहना, और यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे संकुचन बढ़ने लगता है। जिस भाषा का साहित्य जितना समृद्ध होगा वो भाषा उतनी ही दीर्घजीवी होगी। संस्कृत भाषा का व्यवहार करने वाले कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अपने समृद्ध साहित्य के आधार पर पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। उसके विकास की गति नित्य प्रवाहमान है। संस्कृत भाषा ने दूसरी भारतीय भाषाओं का अतिक्रमण नहीं किया बल्कि उन्हें विस्तार दिया, और यही कारण है कि संस्कृत को समस्त भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। उसके शब्द किसी न किसी रूप में लगभग भारतीय भाषाओं में विद्यमान हैं। भारतीय भाषाओं के मध्य संस्कृत भाषा समन्वय का कार्य करती है। भाषा विवाद का विषय नहीं है, वो संवाद का माध्यम है। भाषा अपने साहित्य के माध्यम से अकादमिक जगत में अपना एक अलग स्थान बनाती है। आम बोलचाल में भाषा से थोड़ा ऊपर उठकर परिनिश्चित शब्दावली का उपयोग करते हुए लेखक पत्रकार अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से भाषा को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से वो निश्चित दायरे का अतिक्रमण करते हुए एक नया विस्तार प्राप्त करती है। कन्नड़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार एस एल भैरप्पा जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से कन्नड़ भाषा को समृद्ध किया, लेकिन कन्नड़ में अभिव्यक्त उनके विचार अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से साधिकार पूरे भारत में विस्तार को पा रहे हैं। अनेक भारतीय भाषाओं में शब्द पाठक के मनोमस्तिष्क से कुछ इस प्रकार से अपना स्थान बना लेते हैं कि वो अपनी चेतना के साथ स्वयं को अभिव्यक्त दे रहा होता है, तो उसे स्वयं ही यह अनुभव होता है कि वो किसी भाषा विशेष की अस्मिता से ऊपर उठकर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम है। भारत सरकार ने भाषाई अस्मिता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत बनाए रखने के लिए काशी तमिल संगमम के रूप में एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिससे भारत की दो संस्कृतियां जो कि हैं तो एक लेकिन दो भिन्न भाषाओं में अभिव्यक्ति पाती हैं उनके बीच एक बार फिर से सहज संवाद स्थापित किया जा सके। हजारों वर्षों से भारत के नागरिक भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा करते रहे हैं। प्रायः इन यात्राओं के केंद्र में धर्म होता है, और इन्हीं यात्राओं के माध्यम से भारतीय जनमानस भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने का प्रयास करता है। भारतीय भाषाओं पर विचार करते हुए ध्यान उन लोक भाषाओं की ओर भी जाता है जिनके माध्यम से कोई एक भाषा स्वयं को समृद्ध अनुभव करती है। लोक भाषाओं का अपना महत्व है। वर्तमान में हम हिंदी भाषा का जो स्वरूप देख रहे हैं, मध्यकाल की दो प्रमुख भाषाएं रही हैं जिनका साहित्य बहुत ही समृद्ध है। वर्तमान में इन पर लोक भाषाओं के रूप में विचार किया जाता है, लेकिन लोक भाषा के रूप में इन पर विचार किया जाना इन भाषाओं की गौरवशाली अतीत के कारण है। हिंदी भाषी प्रांतों में अनेक लोक भाषाओं का व्यवहार किया जाता है। इन लोक भाषाओं में निरंतर साहित्य भी लिखा जाता है। हिंदी भाषा में स्थापित अनेक साहित्यकारों ने अपनी अपनी लोक भाषाओं में भी लेखन कार्य किया जिसमें उन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। उनका ऐसा करने का उद्देश्य हिंदी भाषा की उस ताकत को रेखांकित करने का था जिसके कारण पूरे विश्व में हिंदी की तूती बोलती है। ऐसे लेखन से पता चलता है कि हिंदी भाषा समाज के भीतर कितना गहरे तक विस्तार कर पाती है। अवधी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मारवाड़ी, कन्नौजी इत्यादि से होते हुए हिंदी भाषा की समृद्ध परंपरा सभी भारतीय भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करती हैं। जब आप किसी भारतीय भाषा का व्यवहार करते

0: हैं तो आप अपनी ही संस्कृति के साथ होते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारत की ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं के माध्यम से जनमानस की चेतना को झंकृत करती है। भारत एक है, भारत की सांस्कृतिक विविधता ही भारत का सौंदर्य है।
1: राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप हिंदी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में समाप्त फरमाइए डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज में चंद गजलें। सबसे पहले पेश खिदमत है जौक का कलाम डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और आज आपको हम सुनवा रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज में चंद गजलें। अब पेशे खिदमत है फैज अहमद फैज का कलाम डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की।

आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज में चंद गजलें। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर इख्तिताम होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं यासर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में गाए गीत से। फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना।

भेड़िया फिल्म का ये गीत आपने सुना। चलिए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत और दिलनशीन गीत अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गदर।

और गदर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित

0: का विषय है, इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में

0: बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को

0: लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को

0: शुरू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहाँ पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के

0: वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के गाए इस गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म हिमालय की गोद में से। गीतकार हैं कमल जलालाबादी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गाना जलती फिल्म से है। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस टी बर्मन ने।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में है। फिल्म का नाम है दिल देके देखो। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत उषा खन्ना का।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना दिल देखे देखो फिल्म का ये गाना। आइए अब सुनते हैं तेरे घर के सामने फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीत एसडी बर्मन का, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत एसटी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेशे प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आ

0: वो जब याद आए, बहुत याद आए।
1: असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे एस एफ हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई। भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और एस एफ हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया, दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसनलाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर जरनैल सिंह फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना जिसे गाया है आशा भोसले ने।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बीआर चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित हुसैन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला जिसका संगीत खयान साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो

गीतकार थे, एक खय्याम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गाया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित भूषण लाल, पंडित भगत राम, श्री रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एन दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ असद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई, मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।
0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौड़ से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गाँव में कितनी खुशी थी?
2: मतलब छोटी थी जब उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले, और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। फिर टूर्नामेंट हुआ था, ओपन टूर्नामेंट, तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, तो दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था तो बस ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: मैन ऑफ द मैच थी।
1: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
0: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बेंगोल के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला वो आराम में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, कब मुझसे सब लोग मिले। लाइक प्राउड था कि हाँ कुछ तो सबको खुशी थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
1: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
0: जब सीनियर T20 मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी, उनका फोन आता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरे को, फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया सबको पता चल गया, गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे हैं बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग सबको पता चल गया था, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए, बड़े प्लेयर्स थे चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
1: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
0: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी, पहले तो फॉरेन प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में, तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे, तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सेट सा लगे, रन पड़ गए मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
1: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौड़ के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका था, तो हम 3-4 लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ मेरी स्टूडेंट खेल रही है और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी
2: बात है। बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है रिया यादव।
1: युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: एक तो क्या है मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है, तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले
1: जी।
2: तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक, लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर

0: इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई तो अब ये लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
0: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साईं स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट। उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए, तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
1: उस समय आपको
0: तो
1: लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
0: हाँ देखिए, उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या है जो टेक्निकली वो तैयार नहीं थी और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत, उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको, हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी, आपने
0: तो
1: सहयोग
0: उससे,
1: किया।
0: हाँ तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। और उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
1: जी हाँ,
0: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही, ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है। संघर्ष
1: जी हाँ। उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
0: के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक, जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
1: अरे वाह।
0: तो हाँ तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
0: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड, दो चीजें उसकी बहुत अलग है, हट के देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है
1: मतलब
0: बॉल
1: एक
0: में।
1: पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति,
0: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
1: तभी इतने आगे
0: बाकी
1: पहुंची हैं।
0: जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: देखिए हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
0: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौड़ जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30 से 11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
1: कितना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला।
0: हाँ थोड़ी परेशान थी थोड़ा कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे। अभी भी वर्ल्ड कप में जब भी उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर बधाई हो।
1: युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, वैसे एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं वह फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं,
2: लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हील चेयर

0: क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
1: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
0: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
1: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
0: जी,
1: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
0: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
1: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
0: जी
1: सोमजीत सिंह उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभा।
0: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
1: बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेल।
0: जैसे हमारे सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
1: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज भी है।
0: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
1: व्हीलचेयर के साथ में ही जाते हैं।
0: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
1: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
0: जी,
1: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहली ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी
1: में था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
0: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
1: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, क्योंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं अगर इसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नाम और शोहरत भी।
0: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था।
1: जी जी,
0: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
1: और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे प्लेयर रहे वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में, उन्होंने 19 बॉल में।
0: जी, बहुत बड़ी बात, और वाकई में ये जो मैच है देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे।
1: कहीं ना कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे
0: जी,
1: लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग

0: आए और खेल रहे थे,
1: जी
0: तो देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है।
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग है और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और हम आपके साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं। और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
1: अच्छा, बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
2: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे शिकायत भी बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी लगभग 16 वर्ष और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जोर दिखा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
2: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे, ये
1: पानी से दूर रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यानचंद स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा इसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
1: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
2: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए जैसा वैसा वो करता जाए तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
1: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का
2: ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी हमारे सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला दे, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
1: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
2: इसकी चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये स्विमिंग की चार स्टाइलें हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है भाई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
1: उससे में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
2: उसको बारीकी बताते हैं।
1: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
2: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी नहीं, तब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
1: परेशानी हो जाएगी। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद।

0: कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
1: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
2: शुक्रिया।
1: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
2: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ। तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
1: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
2: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहां पहुंच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
1: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
2: मुझे ऐसा लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट देके ही निकलना है यहाँ से, खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहाँ से। फिर
1: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति हैं जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
2: करी, मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CISF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ, तो यहाँ के कोचेज है। तो बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर है और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली है।
1: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियाँ देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
1: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
2: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल नहीं सकते लेकिन क्या होता आगे। हाँ, बाकी मैं लगी हूँ।
1: और इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप।
0: खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
3: खेल दर्पण।
4: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कलाकार सीमा घोष का राग कलावती में ख्याल गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि डिस्फेजिया क्या है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप गौर करें कि क्या आपको खाना निगलने में कोई परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है, तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। अब अगर इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में और ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी आकाशवाणी की FM रेनबो 100.7 MHz पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से होगा, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं की सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 MHz पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8845 और 0522-223-8852। इसे पुनः सुन लें 0522-223-8845 और 0522-223-8852 और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी के साथ।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी।

0: की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उसपे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस